ठीक उसी प्रकार जब हम जान जाते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, तब हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही ज्यादा पर्याप्त भी है। तो जागरूक का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी आसन प्राणायाम को करें तो हमें उसके प्रति पूर्ण चेतावनी रहे साथ में ही काम करना चाहिए। तो आइए हमें आपसे सबसे एक और महत्वपूर्ण बात करनी है, क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। आप सभी ने 30 दिन तक बहुत ही प्यार सम्मान हमें हर एक आसन प्राणायाम के साथ दिया। नित सवेरे 6 से 7 योग की योग पाठशाला में आकर के आपने नित्य सवेरे योग को अपनाया, आसन किए और उसके बारे में जानकारियां ली। इसी तरीके से आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे योग योगशाला में आकर के नित प्रतिदिन इसी तरीके से आप आसन प्राणायाम करते रहेंगे। हम एक नई सीरीज के साथ फिर से आएंगे, एक नए योग शिविर के साथ हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमसे अब अगर कोई त्रुटि हो गई हो किसी भी आसन को लेकर के, किसी भी प्राणायाम को लेकर के, तो आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। और आगे एक नई प्रेरणा के साथ में हम फिर से, एक नए उत्साह के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, ठीक वैसे ही हम सभी के लिए योग से जुड़े रहना एक प्राकृतिक उपचार भी है। आइए उस प्राकृतिक उपचार को और अच्छे से जानने के लिए आज हम एक औषधि की ओर चलते हैं, और वो औषधि जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति को भी ठीक करती है। सबसे पहले उस औषधि का नाम जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस औषधि का नाम है योग। योग की प्रक्रियाएं, योग की वैसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और हमने कई सीरीज में योगा की कई ऐसे तमाम प्राणायाम आसन को करते हुए बताते हुए हमने आप सभी के साथ साझा किया है। आज हम एक ऐसी बीमारी की ओर चलते हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत खतरनाक है। कहते हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर एक बहुत बड़ा धन होता है, और उसी धन को हम ताउम्र संचित करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। आज हम योग के माध्यम से जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण धन को संचित करने का उपाय क्या है। सबसे पहले हम उस डिजीज के बारे में जान लेते हैं

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे न होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़या, गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर दास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरकर कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है अभी करना है, खुद को बदलना है तो आज से ही शुरू करना है। जिंदगी की इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी भरी जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर झांकना है, क्योंकि असली शांति हमारे खुद के भीतर है, बाहर नहीं, आपके अंदर ही। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेती हूं आपसे विदा। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: बेखुदी बेखुदी बेखुदी वो वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में सिर्फ और सिर्फ रेडियो 11.6 एफएम पर। तो चलिए बताते हैं क्या है आज का थॉट ऑफ द डे, क्योंकि आज जो है डे वो थर्सडे है।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो फाइनली वो वक्त आ गया है जब आप आज थर्सडे का थॉट सुनने वाले हैं। तो चलिए भाई, आपको आज का थॉट ऑफ द डे बताते हैं कि ये आज का स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कह रहा है। सो कई चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहम होती हैं और उनको लेकर के ही थॉट्स होते हैं। शायद कई बार हम चीज़ों को बहुत इजीली समझ नहीं पा रहे होते हैं, इसीलिए हम अलग से कुछ थॉट्स को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी उन सिचुएशन के लिए बहुत बेहतर होता है। तो क्या कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे? आज का थॉट ऑफ द डे कह

है कि आलोचना तब उपयोगी होती है जब उसमें तर्क हो। आलोचना तब उपयोगी होती है जब उसमें तर्क हो। सिर्फ नकारात्मक शब्द किसी विचार को गलत साबित नहीं करते हैं। बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी अहम बात है और ये दोनों ही तरह से बहुत अप्रोप्रिएट है। हम किसी की जब आलोचना कर रहे हों या जब कोई हमारी आलोचना कर रहा हो, उन दोनों ही वक्त पर इस बात को समझा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आलोचना में तर्क होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई लॉजिक है, हमने किसी को बुरा कहा, कोई बात कही, उसकी आलोचना की, कुछ भी ऐसा हुआ, तो हमको उसका तर्क देना होगा और वो तर्क जो है वो दिखना चाहिए कि हाँ ये तर्क सही है, अप्रोप्रिएट है। नहीं, किसी को भी बुरा कह देना, किसी को भी बुरा बना देना, बोल देना यूं ही, यहाँ कोई तर्क नहीं होता है। यानी अगर तर्क नहीं है, सिर्फ नकारात्मक बातें हैं, ऐसा है वैसा है और साबित नहीं हो पाया है, तो वो फिजूल है, वो कूड़ा है, वो फेक है, कोई मतलब ही नहीं है। और इस तरह के नकारात्मक जो बातें होती हैं, जो तर्क होते हैं, यानी कुतर्क जिसे बोल सकते हैं, वो यूजुअली देखा जाता है, अक्सर लोग कर ही जाते हैं। इसलिए जब कभी आपकी आलोचना हो और उसमें आपको तर्क ना मिले, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आलोचना सही नहीं है। कोई ऐसी आलोचना जिसमें आपको बाकायदा तर्क दिया जाए और वो आपको समझ में आए, तो समझिएगा कि हाँ बेशक यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि हर कही बात पे या हर किसी बात पर हम बहुत ज़्यादा अगर यकीन करने लग गए, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर हर कोई आकर के हर चीज़ कहने लग जाए और हम उसको सीरियस लेने लग जाए, तो ज़रा सोचिए कि लाइफ कैसी हो जाएगी। मतलब कोई भरोसा नहीं, किधर जा रही है, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, हम तो बस पड़े हैं उसको सही मानने में, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इस बात को समझा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आलोचना हो रही हो और उसमें तर्क हो, तो इट मीन्स कि वो सही है। जब आलोचना हो रही हो, तर्क ना हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स हो, तो मतलब इट्स वेरी फेक। सो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेक नहीं हैं और आपके बारे में ऐसी चीज़ें फैल रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी जगह इत्मीनान से हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। डोंट वरी, चीज़ें वेरी काम डाउन चलती है। सो फिलहाल आज का मॉर्निंग थॉट कैसा लगा हमको कॉमेंट करके फटाफट से बताइए। और चलिए भाई, अपने दर्शन रावल की आवाज़ में बेखुदी सॉन्ग आपने सुनना शुरू ही किया था और मैंने कहा नहीं पहले थॉट बताता हूँ, तो चलिए इस थॉट को आपने सुन लिया है, समझ लिया है। अब आपके कैसे समझ से आ रहा है इसको आप जाहिर है बताने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद हम बहुत सारी ऐसी बातें लाए हैं जो आज थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल शो में होने वाली है और इसके और भी दिन को ख़ास बनाने वाली है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।

0: सो फिलहाल बेखुदी करते करते हम खुद ही लेकर आ गए आपको कहाँ, थॉट ऑफ द डे के बाद आपके मैसेजेस को पढ़ने के लिए। क्योंकि आप सुनते हैं फ्रिक्वेंसी से, आप सुनते हैं रेडियो गार्डन से वर्ल्ड वाइड, और साथ ही साथ पूरे जहां में आप सुन सकते हैं और सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से, जो आपको मिलता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर, यानी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर। और वहीं पर आपको उस ऐप में मिलता है चैट का ऑप्शन, आप जो कुछ लिखते हैं वो लाइव अपने मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट और नून सभी आरजेस को लाइव पहुंचा देते हैं अपनी बात। तो चलिए फिलहाल क्या कुछ लिखा है उसी चैट पर आपने और हम तक क्या कुछ आया है ये हम आपको जा रहे हैं बताने, क्योंकि आज का हमने थॉट ऑफ द डे बताया। आलोचना तब आपके इस्तेमाल की होती है जब उसमें लॉजिक हो। सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स किसी भी विचार को गलत साबित नहीं करते, तो इसलिए डोंट वरी अगर कोई लॉजिक आपको नहीं दे पाते आपकी आलोचना के बाद तो वो अनुपयोगी हैं, बेकार हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करके उसमें कोई तर्क देता है जो आपको समझ में आता है कि हाँ ये सही तर्क है, तो फिर वो आप उसको काम करने के लिए आप तैयार हैं। सो फिलहाल इन पर क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ आपकी मॉर्निंग वाली विशेस, लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए चलते हैं भाई मैसेजेस की तरफ। सबसे पहला जो मैसेज आया है सविता दुबे जी का आया है, लिखा है सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। नाजियान सारे मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। आशु जी लखनऊ से लिखती हैं, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। जीवन की फिल्म का संगीत समझ लीजिए, जब तक आपकी जीभ में लक्ष्मीकांत है तब तक आप सभी के लिए प्यारे लाल है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसके बाद लिखा है बहुत ही प्यारा सा सुविचार सर जी, थैंक यू सो मच। और साथ ही प्रीति जी का आया है बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। हमारी गीता श्रीवास्तव जी का मैसेज आ चुका है, गुड मॉर्निंग आर जी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। वैसे एक बहुत बड़ी दिक्कत वाकई रहती है, अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हम परेशान रहते हैं यार कि हमको ये कहा गया है। अच्छा, हमेशा जैसा कि थॉट भी कहता है कि यार ये पहले देखना होता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें लॉजिक कितना है, वो बात सही कितनी है आपके लिए आ रही है, क्योंकि उसको सही होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो आपके काम का ना हो तो बेकार है। यानी बुराई करना सिर्फ, तो इधर से सुनिए उधर से निकाल दीजिए, चाहे खुद की हो या दूसरे की हो। क्यों? क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है ना। अगर वो प्रूफ ना हो, अगर उसके पीछे कोई तर्क ना दिया जा सके या वो तर्क समझ ही ना आए तो बेकार है। अगर उसके पीछे तर्क है, उसको बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा फीडबैक है, तो जाहिर है फिर उस पर काम किया जा सकता है, फिर उसको समझा जा सकता है। इसलिए आज के बाद से कभी जब कोई आपकी बुराई करे तो बस एक चीज़ आप देखिएगा, अगर तर्क है और वो तर्क आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मानिएगा, उस पर अमल करिएगा। और अगर ऐसी कोई बात है जिसमें कोई तर्क ना हो, सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स हो आपके बारे में, तो आपको ऐसा बनना है कि अरे आपने देखा लेकिन आपने नहीं देखा, आपने सुना लेकिन आपने नहीं सुना। सो इसलिए लाइफ थोड़ा सा आसान होने वाली है इससे आपकी, बहुत ज़्यादा मेरी विशेज आपके साथ में। फिलहाल चलते हैं एक ज़बरदस्त सॉन्ग की तरफ। आज बातचीत में हम काफ़ी कुछ लाए हैं जो आपकी हेल्थ से, जो आपकी फिनेंशियल लाइफ से, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए बने रहिएगा पूरे शो में और सुनते और समझते रहिएगा आज की बहुत सारी बातें।

0: की गल करनी है
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात और सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वैसे आप कब कब शायराना होते हैं? कोई ख़ास ओकेजन होता है या किसी ख़ास मूड पे होते हैं? सोचिएगा तो शायद इसका आंसर आपको मिलेगा कि भाई आप आखिर कब कब शायराना होते हैं। किसी मौसम के बदल जाने पर, किसी इंसान के आ जाने पर, किसी जगह पे पहुंच जाने पर, या कुछ स्पेशल खाने के बाद भी कई लोग शायराना हो जाते हैं। अरे भैया, कई लोग तो ज्ञानी तब होते हैं जब मुंह में पान की पुड़िया रख लेते हैं और उसके बाद बताते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा चोखी और कितनी ज़्यादा बड़ी बातें बताई जा रही है। फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपके लिए भी ऐसा होता होगा, कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी होती। फ़िलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आज आपने नाश्ते में क्या किया था तो आप बताना चाहेंगे? नहीं, आज यूजुअल जो हम करते हैं क्वेश्चन उसकी तरह नहीं है। आज नाश्ते से जुड़ी कुछ ज़रूरी बात है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई जब हम जल्दी जल्दी में घर से निकल रहे होते हैं और हमको नाश्ता करना होता है तो हम सुबह चाय बिस्किट खा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चाय बिस्किट खाना कोई गलत बात नहीं है, आप जल्दी में थे, आप खा के निकल गए। लेकिन तब क्या होता है जब आपकी आदत ही ये बनने लगे कि भाई अब जल्दी जल्दी में है, जल्दी से चाय एक तरफ बन गई, दूसरी तरफ बिस्किट फाड़ा और तैयार होते होते चाय पीते रहे, बिस्किट डिबो डिबो कर खाते रहे और जल्दी जल्दी सामान पैक करके निकल गए। अगर यही रोज़ की आदत बन जाए तो शायद मसले हो सकते हैं। तो क्या मसला हो सकता है अगर आप रोज़ चाय बिस्किट खा रहे हैं? चलिए, हो सकता है ये आपकी भी आदत हो, इसलिए आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बताते हैं।
1: Now you're listening, Good Morning Kota, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, क्या होता है जब आप रोज़ रोज़ चाय बिस्किट खा रहे होते हैं? इसको जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये नाश्ता सेहत पर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, यकीन शायद ना हो, लेकिन ये सच में आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, इस बात को ज़रा समझिए। और सुबह की प्लेट ऐसी रखना होता है जिससे बॉडी को प्रोटीन भी मिले, फाइबर भी मिले, और ज़रूरी पोषण जो कुछ चाहिए बॉडी को, वो सब कुछ सुबह सुबह आपको मिलना चाहिए। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये डाइटिशियन कौसेन हफीज़ बता रही हैं। जी हाँ, क्या बताती हैं कौसेन हफीज़? बताती हैं कि बिस्किट पेट के लिए कुछ देर तक तो भर सकता है, यानी बिस्किट जो है वो पेट तो कुछ देर तक भर सकता है, लेकिन रोज़ इसे खाने से बॉडी को ज़रूरी प्रोटीन फाइबर कम ही मिल पाते हैं। सो पैकेज्ड बिस्किट में शुगर होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, अनहेल्दी फैट होता है, और सोडियम भी ज़्यादा होता है। सो नाश्ते में क्या चाहिए होता है? इसके इतर प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है भाई? हेल्दी ऑप्शन फिर क्या हो सकते हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको हेल्दी ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। मूंग दाला चीना होता है, ऑफ कोर्स कई लोग मूंग दाल का चीला बनाते हैं। इसके अलावा दलिया बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं दलिया के बारे में, कुछ मीठी दूध में खाते हैं तो कुछ हमारी तरह नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मूंगफली के साथ पोहा, आय हाय हाय हाय, जितने बड़े भी आप रेस्टोरेंट में, होटल में आप जाइए, सुबह के नाश्ते में आपको पोहा ज़रूर मिलता है, और कई घरों में पोहा रेगुलर बनता है। सो पोहा आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा क्या होता है, अंकुरित मूंग होती हैं ऑफ कोर्स, जहाँ पे हम चने को अंकुरित करके भिगो के रखते हैं, वहीं पे कई लोग जो है अंकुरित मूंग रखते हैं। भुना चना ऑफ कोर्स खाते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो ये सारे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर होते हैं। सो अंडे का इस्तेमाल करने वाले इंसान भी इसे नाश्ते में शामिल कर सकते हैं, जिनको अंडा खाना होता है। इसके अलावा डाइटिशियन के हिसाब से क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम कैसा होना चाहिए? देखिए, वैसे तो आप अपने हिसाब से खाते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है, एक अगर हम नॉर्मल बॉडी क्लॉक को फॉलो करें, एक सामान्यता बात करें, तो 7 से 8 बजे का जो टाइम होता है वो नाश्ते के लिए बढ़िया होता है, सुबह के नाश्ते के लिए। 1.5 से 2 बजे का जो टाइमिंग होता है वो लंच के लिए बढ़िया होता है, डिनर का 7 बजे तक। और हम लोग खाते क्या है, 9 से तो स्टार्टिंग होती है, या 10 बजे, या होता है 11 बजे। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और ये लेट एक दिन का नहीं होता, ये रोज़ का होता है। तो जब बीमारी पनपती है, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती, जो हम कहते हैं कि अरे अभी तो उम्र ही क्या थी, उम्र नहीं, ये गलती थी, ये लापरवाही थी जो सामने आ रही है। सो रात का खाना अक्सर हमारा बिगड़ा होता है, मॉर्निंग का लगभग मैच हो जाता है, दोपहर का तो लगभग हम सभी लोग ऐसे ही खाते हैं 1.5 से 2 बजे के आसपास, लेकिन शाम वाला जो है डिनर वो होता है 9 बजे 10 बजे 11 बजे, होना क्या है 7 बजे, लेट से लेट, यानी 7 बजे तक आप खा लीजिए, बहुत ज़्यादा है 7:30 8 आई थिंक, बहुत ज़्यादा लेट। कोशिश करना है 7 बजे के आसपास तक, इसलिए नहीं कि हम बता रहे हैं या डाइटिशियन बता रही, इसलिए बल्कि आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना जल्दी खाएंगे, इसको पचने में टाइम लगता है रात का खाना, और अगर नहीं पचेगा तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन आपके ऑर्गन्स काम करते रहेंगे, और वो अच्छी बात नहीं है, राइट? सो सभी को रेस्ट मिलना और उनका डाइजेस्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कल अगले दिन उनको फिर से सही वक्त में सही काम के लिए लगाया जा सके। इसलिए ये एक आइडियल टाइमिंग है, सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने की हमने बताया। इसके अलावा डाइटिशियन के मुताबिक अगर मीठा खाने का मन है तो चाय या नाश्ते में ज़्यादा चीनी डालने की बजाय कभी कभी खजूर या किशमिश का इस्तेमाल करें। जी हाँ, सो ध्यान आपको ये भी रखना है कि गुड़ है या शहद है या खजूर है, किशमिश भी मीठे ही होते हैं, इसलिए इसका जो सेवन है वो भी सीमित मात्रा में करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लेना है। सो चाहे गुड़ हो, चाहे शहद हो, खजूर हो, किशमिश हो, ये मीठे होते हैं, अच्छी बात है, खाने के बाद आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, मुट्ठी भर करके और पूरी खाने की तरह नहीं खाना होता, क्योंकि फिर ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हम लोग ज़्यादती करते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अच्छा, अब इसलिए हम लोग को नहीं पता चलता है क्योंकि हम लोग ने इतनी ज़्यादा चीज़ों को करने की आदत डाल ली कि वो बहुत ही छोटी सी बात लगती है, लेकिन वो होती काफ़ी बड़ी बात है।
हमें लगने न लगने से क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये हमको देखना होगा। इस बात को ज़रा समझिए कि हमको क्या लगे, ये बात की बात है। हमारी बॉडी के लिए कितनी चीज़ें किस मात्रा में ज़रूरी है ये जानना बहुत ज़्यादा, इसकी अवेयरनेस हमको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिलहाल अगर आप भी हेल्दी नाश्ता करते हैं तो चलिए बता दीजिए, और अगर अभी तक आप भी जल्दबाजी में बिस्किट चाय का इस्तेमाल कर रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को आप समझिए कि अगर रोज़ आप इसको हैबिचुअल इसके हो जाएंगे कि आपकी आदत ही बन जाएगी, तो ये फिर आप अपने लिए एक बहुत बड़ी बीमारी को बाकायदा कार्ड लिख करके हैंड रिटन राइटिंग में नोट्स दे रहे हैं कि भैया आओ और मुझे हो जाओ, इससे बचना होगा। और अगर आप भी हेल्दी नाश्ता अपना रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप हेल्दी नाश्ते के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, और आपको हेल्दी नाश्ता लेने में क्या क्या अच्छा लगता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। शायद हम लोगों को और भी पढ़ने के बाद ऑप्शंस मिल जाए कि हाँ नाश्ते में तो ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं। राइट, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: फिलहाल जो लोग आपके दिल्ली में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है और काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ दिल्ली में कि भाई हम आपको सतर्क रहने या आपके रिलेटिव आपके फैमिली मेम्बर्स को अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं। आइए बताते हैं क्या है ऐसी बात जिसमें अब दिल्ली वासियों को थोड़ा ज़्यादा ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो दिल्ली में फिलहाल एक दिन में H1N1 के 114 नए मामले आए हैं और मैं बात कर रहा हूँ बीमारी की। सो बात आती है क्या मास्क पहनना ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको इसके लक्षण बता देते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे होना है। क्योंकि दिल्ली में इन्फ्लुएंज़ा के कुल 2,602 H1N1 के 1,777 मामले सामने आए हैं। सो ये क्या हमारे लिए नया ख़तरा है या कोई मौसमी फ्लू है, इस बात को जानना ज़रूरी है। सो देखिए, घबराने की बात नहीं है। ICMR के मुताबिक ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये सिर्फ मौसमी फ्लू का असर है, यानी जो मौसम बदला है उस फ्लू का असर है। तो फिर करना क्या चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात को जानना होगा कि H1N1 क्या है, इन्फ्लुएंजा इससे क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव क्या है। सो पहली बात जो आपको कुछ जहन में रखनी है, जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो है भीड़ भाड़ वाली मेट्रो और बसेस में आपको मास्क पहनना होगा, आपको बाज़ारों में मास्क पहनना होगा, कम हवादार दफ्तरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन अच्छा नहीं है हवा का, हॉस्पिटल्स में स्पेशली, या बंद जो भी आयोजन किए जाते हैं, जो बंद जगहों पे, वहाँ पर भी फ्लू फैलता है। क्योंकि अगर किसी एक शख्स को है तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथे, ये ट्रांसमिशन चलता रहता है। इसलिए मास्क आपको इन जगहों पे ज़रूर पहनना है। कहाँ कहाँ? भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, मेट्रो बसेस में, बाज़ारों में, कम हवादार वाले जो भी ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या ऐसे इवेंट्स जो बंद जगहों पर हो रहे हैं, वहाँ पे आप मास्क पहने। इसका अगर लक्षण की हम बात करें तो बुखार है, खांसी है, गले में खराश है, नाक या तो बहती रहती है या तो बंद हो जाती है, सिर दर्द है, बदन दर्द है और थकान है, ये सब जो है इसके लक्षण में आते हैं। गंभीर संकेत क्या है? सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन घटने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है, भ्रम सा महसूस होता है, तेज़ बुखार होता है, तबीयत दोबारा बिगड़ना शुरू हो जाती है, ये इसके गंभीर संकेत हैं। सो ज़्यादा जोखिम किन लोगों को है? बुज़ुर्ग लोगों को, जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, 60+ हैं, या गर्भवती महिलाएं, या फिर जो छोटे बच्चे, और ऐसे शख्स जो किसी गंभीर बीमारी या कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीज़ हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको ज़्यादा इसका असर होने वाला है। सो एंटीबायोटिक्स भी इस पर बेअसर है। जी हाँ, चूँकि यूजुअली आप देखते हैं एंटीबायोटिक्स लगाते हैं डॉक्टर्स जब आप बुखार के लिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं, इसमें कोई असर नहीं करती है, क्योंकि ये वायरल संक्रमण है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स एंटीवायरल दवाएँ देते हैं अगर उनको लगता है ज़रूरी है। सो आप ख़ुद का बचाव कैसे कर सकते हैं? मास्क लगा सकते हैं, हाथ को प्रॉपर धो सकते हैं, छींकते खांसते वक्त मुंह ढक सकते हैं, बीमार होने पर घर पर रहने, बाहर ना निकले, कमरे हवादार रखें अपने जहाँ पे हवा आती रहे, और पानी पिए। पानी पीना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सतर्क रहना है लेकिन घबराना नहीं है। सो ज़्यादातर जो मामले हैं वो अपने आप ठीक होते हैं, लेकिन लक्षण बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर को आपको दिखाना होता है। सो ये H1N1 इन्फ्लुएंजा के फ्लू के बारे में बताया, जो कि दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से मामले आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ दिल्ली, जहाँ पे भी हैं आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि इस तरह से कुछ मामले सामने ज़रूर आते रहेंगे, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है और इस तरह से आप जो हैं ऐसी चीज़ों से बच सकेंगे। तो चलिए, अच्छी बात है, इस बात का ख्याल रखिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5, सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, तो भाई इसी बीच में आइए, वक्त हो गया है आपको ले चलने का, ये बताने का कि भाई फिलहाल प्याज ढुलाई के लिए दौड़ रही है कांदा एक्सप्रेस। अब आप सोचेंगे बहुत सारी एक्सप्रेस सुनी थी, राजधानी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस और न जाने किन किन शहरों के नाम के आगे एक्सप्रेस, बट ये कांदा एक्सप्रेस क्या है? कुछ प्याज से जुड़ा मामला लगता है। चलिए बताते हैं पूरी बात क्या है आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल आपको हम बता दें कि नासिक से देश के 5 बड़े शहरों तक भेजा जा रहा है प्याज, और इसी के लिए मैंने बताया कि हाँ, प्याज ढुलाई के लिए दौड़ रही है कांदा एक्सप्रेस। सो फिलहाल क्या है, चूँकि देखिए हाल के ही हफ्तों में प्याज की कीमतों में लगातार जो है वो तेज़ बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा दाम बढ़े हुए हैं प्याज के, और फिलहाल गवर्नमेंट ने इसे बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू किया है। बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास रखे आपात या फिर रणनीतिक भंडार को कहते हैं। सप्लाई बढ़ाने की ये कोशिश कीमतों पर काबू पाने के लिए फ़िलहाल की जाती है, ऐसा इसका इस्तेमाल होता है। सो कांदा एक्सप्रेस क्या है, पहले तो इस बात को समझते हैं। देखिए, नासिक से 5 बड़े शहरों तक प्याज पहुंचाने की विशेष रेल सेवा शुरू की गई है। 5 शहर में कौन कौन से हैं? ऑफ कोर्स सबसे पहले राजधानी दिल्ली, फिर चेन्नई, कोच्चि, मदुरई और गुवाहाटी। सो प्याज बड़ी मात्रा में प्रमुख मंडियों में उतारा जाएगा। मकसद क्या है, जहां कीमतें ज़्यादा हैं वहां तेज़ी से सप्लाई बढ़ाना ताकि बढ़ी कीमतें काबू में आ सके। सो फिलहाल गवर्नमेंट के मुताबिक देश में प्याज की कमी नहीं है। 2025-26 में जो प्रोडक्शन है वो करीब 307 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल उत्पादन तकरीबन 308 लाख टन था, यानी कि फिलहाल कीमतों को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। सो ये है कांदा एक्सप्रेस, जिसके बारे में हमने बताया कि भाई ये नासिक से निकल करके देश के 5 बड़े शहरों में भेजा जा रहा है, जिनमें हमने आपको नाम भी बताया, दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, मदुरई, गुवाहाटी, यानी ऐसे ऐसे शहरों में जहां के आसपास के इलाकों मंडियों तक फिर वहां से पहुंचाया जा सके, और जिससे जहां पे दाम बढ़े हुए हैं तो अगर प्याज पहुंचेगी तो वहां दाम घटने की उम्मीद लगाई जा रही। फिलहाल लगातार काफ़ी दिन से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और लगातार दूसरी तरफ जो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो चीनी एक्सप्रेस, यानी कि चीनी के दामों में, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल मार्केट में 30% तक के दाम सारी मिठाइयों के बढ़ गए, और 10 वाली चाय फ़िलहाल 15 की हो गई है। फिलहाल आप अपडेटेड रहिए अपने 89.6 FM के मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: रानी, देखो वक्त कितनी तेजी से बीतता चला जाता है।
1: सच
0: बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब देखो जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी उम्र 20 साल थी और तुम्हारी 16।
1: सच आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
0: और आज मैं 45 साल का हो गया हूँ लेकिन तुम केवल 22 साल की हो।
2: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

सुनो भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी, तो भैया हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा था और फिलहाल प्रीति जी ने उसका आंसर दे दिया है कि कल ही खाए हैं नाश्ते में पोहा और मूंग चना पीनट मेथी मिक्स नाश्ता किया आज का। अगर ऐसा आप हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं तो लिटरली बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए और ये काफ़ी आपको भाने वाला है। सो बी रेडी कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सुजीत का वेलकम करते हैं। नगेश्वर ने लिखा है, मेरे हिसाब से प्याज 80 किलो होना चाहिए ताकि किसानों को फ़ायदा हो। वैसे किसानों को तब फ़ायदा होता है जब बिचौलिए हटते हैं। 80 के अगर 180 रुपए भी रखेंगे तो वो बात नहीं आएगी, जब तक कि सिस्टमैटिक जो पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है किसानों को मिलने चाहिए। उसके लिए बिचौलियों को हटा करके एक ऐसी मार्केट डेवलप किया जाए जिसकी कई बानगी छोटी छोटी बाज़ार में और कई किसान कर भी रहे हैं कि वो डायरेक्ट जो है मार्केट तक पहुंच रहे हैं। और ये सिस्टम जितना बेहतरीन जितना आसान बनाया जाएगा उतना किसानों को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। एंड यस, इरफान शाह का भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। फ़िलहाल आइए बढ़ते हैं भाई अगले गाने की तरफ, वापस से आते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपसे हमें कहने हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में, सो इसलिए आप बने रहिए और इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार हाजिर हो रहे हैं आपके अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और फिलहाल आरजे अदनान वापस से आ गए हैं। तो आने के बाद, चूंकि आजकल हम पेंटिंग पे काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं कि आज के वक्त में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बच्चे कर रहे हैं टीन एज में आकर के, आखिर क्यों कर रहे हैं। हम बात तो सीधे जनरेशन की करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई इनको बचपन से हमने खुद कैसे ट्रीट किया है और ट्रीट करने का सही तरीका क्या है। शायद जो गलतियां हमारे साथ हुई हों वो हम आने वाली पीढ़ी के साथ ना करें। यानी सही पेरेंटिंग की जानकारी होना बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए और साथ ही आने वाली जनरेशन के लिए। तो आइए कुछ ऐसी बातों को बताने वाले हैं जिसमें छोटे से जो नन्हे से मासूम से बच्चे होते हैं वो उनका दिल तोड़ देती है, और अक्सर ये बातें पेरेंट्स को पता भी नहीं होती। सो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों का दिल तोड़ देती है लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं होती, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

भाई पेरेंट्स चाहे हमारे हों जो हम लोगों को मार मार के ठीक कर देते हों बिल्कुल पुराने टीवी की तरह ठोक ठोक के, या फिर आज के पेरेंट्स हो जो ज़रा सी चोट लगने पे बच्चों को लेकर के बड़े ही कंसर्न होते हैं। पेरेंट्स कोई भी हो बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही कुछ ऐसी गलतियां होती है जब नन्हे से मासूम से बच्चों का दिल टूट जाता है और घर वालों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमने उनका दिल तोड़ दिया है और वो बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें? देखिए पहली चीज़ तो मुझे लगता है जो ध्यान रखने योग्य बात है, जब आप उनकी बात सुनने के लिए बहुत बिजी होते हैं, आपको लगता है बस छोटी सी बात है लेकिन उनके लिए उनकी पूरी दुनिया होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर छोटा सा बच्चा आपके घर का आपके पास आया और कुछ कहना चाह रहा है और आप बहुत बिजी हैं काम में, आप फ़ोन पे हैं, आप कोई किचन का काम कर रही हैं, आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप कहीं जाने वाले हैं, आपके लिए बहुत छोटी सी बात है कि बच्चा बस आया और आपको हल्के से अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से पकड़ के कुछ कह रहा है और आपके लिए है कि हाँ सुन लेंगे, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया होती है, उसका इमोशन होता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसको उससे ज़्यादा नहीं पता है, उसके लिए वही दुनिया उसकी। हम दिल तोड़ देते हैं अगर उस वक्त हम ज़्यादा बिजी होने का कह करके और निकल जाते हैं। दूसरी गलती कहाँ होती है? दूसरी गलती होती है जब हम उनकी तुलना, उनका कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं। वो देखो कितना स्मार्ट बच्चा है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और ये जो कंपैरिजन है ये मोटिवेशन नहीं देती बल्कि धीरे धीरे बच्चों को लगता है कि वो मुकम्मल नहीं है, वो सही नहीं है, वो अधूरे हैं, उनमें कमी है, और ये चीज़ उनको लाइफ टाइम में ऐसा बना ही देती है। हालांकि किसी बच्चे में कोई कमी होती ही नहीं है, कोई बच्चा ऐसा होता ही नहीं है कि उसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार ना हो, लेकिन हम ऐसा कह करके हम उल्टा अपने बच्चे की ज़िंदगी ही बर्बाद कर देते हैं उसको कंपेयर करके दूसरों बच्चों के साथ। किसी भी बच्चे के साथ नहीं करना है, इवन एक ही घर में दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है और वो बहुत छोटा बच्चा है, अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करा। तीसरा क्या है, जब डांटना होता है तो तारीफ से ज़्यादा हो जाता है। बच्चे सिर्फ शब्द नहीं सुनते हैं, पहली बात इस बात को समझिए, वो अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं उन्हीं शब्दों से। तुम हमेशा गलत करते हो, ये सेंटेंस उनके अंदर लंबे वक्त तक रह सकता है कि तुम हमेशा गलत कर सकते हो, तुम बेकार इंसान हो, तुम बकवास हो। ऐसा अगर हमने कह दिया बच्चों को तो वो उसकी फीलिंग को समझते हैं और उनको लगता है कि वो बकवास ही हैं और वो नहीं कर सकते, तो जो वो करना भी चाहते हैं या वो कर सकते हैं या वो कर रहे होते उसको भी फिर नहीं कर पाते हैं। और ऐसा अपने वजह से नहीं, ऐसा हम लोगों के कहने की वजह से ऐसा होता है, यानी गलती हमारी होती है। सो जब आप किए हुए छोटे छोटे प्रॉमिस भी तोड़ देते हैं कि कल खेलेंगे, अभी मैं आता हूँ, शायद आपको छोटी बात लगे लेकिन बच्चों के लिए ट्रस्ट छोटे छोटे मोमेंट से ही बनता है। अगर हम बच्चे से वादा करते हैं कि बेटा अभी करेंगे और हम ऐसा कह के उसको बहला रहे और फिर कह कि नहीं आज नहीं कर पाएंगे, कसम से बता रहे बच्चे का दिल टूट जाता है, इतना ज़्यादा हर्ट होता है बच्चा कि आप यकीन नहीं कर पाता। छोटे छोटे मोमेंट्स से ही वो सीखता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, वो ट्रस्ट वहीं से टूटना ख़राब हो जाता है। और हमको लगता है कि हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है कि हमने वादा किया और इस वक्त वक्त नहीं, अब हम नहीं कर पाएंगे, और उस बच्चे को बहला दिया। बच्चा कह तो नहीं पाता है, बैठ जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उसका कितना बड़ा दिल तोड़ देते हैं। इसके अलावा जब आप फिज़िकली साथ होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते हैं, बच्चे नोटिस करते हैं जब आपकी आंखें फ़ोन पर होती है और आप अटेंशन कहीं और देते हैं। उन्हें परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, बस कुछ मिनट्स की रियल कनेक्शन चाहिए। बच्चे हर वक्त नहीं चाहते कि 24 घंटे उनके माँ बाप उनके पास रहें या उनके घर वाले, वो बस चाहते हैं कि जितनी देर आप उनको देते हैं उन्हीं को देखें, उन्हीं को समझें, क्योंकि वो आपकी आँखों को देखते हैं, आपकी अटेंशन को समझते हैं और हमसे कहीं ज़्यादा, आपसे कहीं ज़्यादा वो चीज़ों को फील कर पाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ से कहीं ना कहीं पाक साफ होते हैं, वो बहुत नन्हे होते हैं, मासूम होते हैं, इसलिए उनको सब पता चल जाता है। और लास्ट चीज़ जो है, जब प्यार कंडीशंस के साथ मिलने लगे, अगर अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हें दूंगा, अगर ऐसा बिहेव किया तुमने इस तरह से किया तो तुम्हें दूंगा दूंगी, धीरे धीरे बच्चा सोचने लगता है कि उसे प्यार जो है वो कमाना पड़ता है। सो बच्चों को डिसिप्लिन चाहिए लेकिन साथ में ये फीलिंग्स भी कि गलती होने पर
मैं भी लव्ड हूँ, यानी गलती हो जाएगी तो भी मुझे प्यार किया जाएगा, माना जाएगा, ऐसा नहीं कि फिर मुझे नकार दिया जाएगा। तो बच्चे के अंदर फिर उसको ये लगेगा कि बस सिर्फ इनकी तारीफ़ कराने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। तो बच्चों की पर्सनैलिटी को हम ही डिस्ट्रॉय करते हैं। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से अगर पेरेंटिंग में इन सभी बातों का ख्याल रखा जाए तो ज़ाहिर है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, जिस पीढ़ी को हम कहेंगे कि हाँ सच में अपने फैसले ले सकती है, अपने इमोशन ले सकती है और हमको भी संभाल सकती है। वो पीढ़ी ऐसे ही बनेगी क्योंकि हम उनको समझेंगे, हम उनको उनके बचपन की चीज़ों को दे पाएंगे, तो फिर वो अपनी एज में, अपने करने की उम्र में वो चीज़ों को बेहतर समझेंगे और बेहतर डिसीजन लेंगे। यही कहना है। और जाते जाते पेरेंटिंग से जुड़ी कुछ बातें ये ज़रूरी थी जो कि आप तक कहनी थी। एंड थैंक यू सो मच जो लोग जुड़े हैं इस प्रोग्राम से, एंजॉय कर रहे 89.6 FM का मॉर्निंग शो। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बने रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की तड़कन पर। और प्रोग्राम कैसे लगा बता सकते हैं।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और

0: टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे बाप रे बाप, ये देखो कैसा मौसम हो गया है। धूप तो निकल ही नहीं रही है बिल्कुल, धुंध सा छाया है और गांव भी निकलना है। क्या करूं, ये किरण दी कहाँ रह गई? सब मुझे ही तैयार रहने को कहते हैं, तैयार रहो, और खुद को कोई टाइम का पता ही नहीं है।
6: अरे समता, राधे राधे, क्या बात है, क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो, किस पर गुस्सा निकाल रही हो? मैं यहीं बस बाहर रमेश भाई, अरे वही अपने ड्राइवर साहब, उन्हीं को कुछ समझा रही थी।
7: अरे किरण दी, आपको देर हो गई, और समता दी कब से तैयार बैठी है गांव चलने के लिए?
5: चलिए किरण दी, नहीं तो उधर से लौटने में देर हो जाएगी, और अब तो थोड़ी ठंड भी पड़ने लगी है।
6: हाँ हाँ, चलो सब निकलो, रमेश भाई हार्न भी बजा रहे हैं, चलो सब, जया समता निकलो, जल्दी करो।

0: चलो पहुंच गए गांव, पर समता दी गांव में भी कोहरा सा लग रहा है और ठंडी भी बढ़ रही है। सॉल वगैरह लाई हैं?
1: अरे भाई, दिवाली के बाद ठंड आ ही जाती है और ये धुंध पटाखों की वजह से भी है। चलो गांव आ गया है, गाड़ी से उतरो।
2: वो देखो कम्मो बुआ धूप में बैठी गन्ना खा रही है।
1: अरे समता, गन्ना खाया नहीं जाता बहना, चूसा जाता है।
2: अरे हाँ भाई, वही तो।
3: अरे मुंह जैसे, हरे मुंह जैसे टेढ़ावा भाटा।

0: अम्मो बुआ राम राम।
1: राम राम बहनी, कहो हाल। बड़े दिन बाद आयो। और सब बहनी लोग नहीं आई है?
0: नहीं बुआ, सभी आई हैं। वह देखो आवत ही सभे।
1: दुल्हन, ओ दुल्हन, कहाँ हो? आवो देखो के आवा है।
2: आई थे अम्मा, बस रोटिया बनाई थे, बन गा है आई थे।
3: राम राम बुआ जी। बुआ आपको कितनी सर्दी लगी है और खांसी भी बहुत आ रही है, और देखो बुखार तो नहीं है। जया देखो जरा थर्मामीटर निकालो, देखो कम्मू बुआ को बुखार तो नहीं है।
0: जी दीदी देखती हूँ। लीजिए बुआ जी, ये अपनी जुबान के नीचे रखिए।
1: अरे बहनी ये का होए, करंट वरंट तो ना मार दी दादा?
0: नहीं बुआ, ये बुखार यानी टेम्परेचर नापने की मशीन है, इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना बुखार है।

0: क्या हुआ जया, फीवर है क्या बुआ जी को?
1: हाँ दी, फीवर है, टेम्परेचर 102 है।
0: ओहो, तभी मैं कहूँ कि बुआ इतनी सुस्त क्यों दिख रही हैं। और बुआ जी, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया होगा आपने? चलिए मैं कुछ आयुर्वेदिक उपचार आपको बताती हूँ।
2: तुलसी भौजी जाइए आप और सब लोगों को बुला लाइए, किरण दी के पास बहुत सारे नुस्खे हैं।
3: लो बहन जी, सबका भला इलावा है, आओ सभे बैठो, सुनो बहन जी का बतावा थी।
4: दुल्हन तनी जावित्री बहनी, शारदा बहनी, मुन्नी, रामलखन, जाओ सबका बलाए लाओ।
3: अच्छा अम्मा, बलाए लाई थे।
0: सब लोग आ गए? चलिए मैं आपको सर्दी जुकाम बुखार और ठंड से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताती हूँ।
4: हाँ हाँ, बतावा जाए बहनी।
2: रुको रुको, मैं भी आ जाऊँ। मैं तो राम आधार काका के पास बैठी थी, उनका हालचाल ले रही थी।

0: सुनिए, सब लोग सुनिए, छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास मत दौड़िए। काकी, आपके किचन यानी रसोई घर में घरेलू दवाइयाँ हैं। सर्दी जुकाम होने पर शहद और अदरक का रस मिलाकर सुबह शाम लिया करिए, और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये तीनों आपस में मिलाकर पीस लीजिए और शहद के साथ इस चूर्ण को सुबह शाम लें।
1: और दी, आप खांसी के लिए कुछ हल्दी वगैरह बता रही थी, वो बताइए ना।
0: हाँ हाँ, बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। रामधार काका, आपको काफी पुरानी खांसी है। जब मैं पहले आई थी तब भी आपको खांसी आ रही थी और आज भी आ रही है ना?
2: हो सासू लड़ूं,

0: खांसी के लिए कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, 4 चम्मच पिसी हल्दी को आधे से भी कम चम्मच घी लेकर कढ़ाई में तब तक भूने जब तक वो हल्दी लाल ना हो जाए। फिर उसे ठंडा करें, किसी डिब्बे में भर के रख लें। फिर रात में सोते समय आधी चम्मच हल्दी और शहद के साथ इसको मिला लें। कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, एक ही खुराक में आराम हो जाएगा।
1: वाह दीदी, बहुत नीक बतावागा। कुल चीज हमरे सबके घरे ही बाटे।
2: अरे हमरे चौकवा में सब कुछ बा, बस हमरे सबके जानकारी नाही है। बहन जी बहुत नीक बतावागा। अब सबे सुन लेओ, जोन दिन भर नकुना सुरकत हो और सबके खोखी आवत है, दीदी के कहनवा मानो।
1: बहनी सुना है आप लोग बहुत नेक गौ नहीं गावा जात है, तो हम में सबका भी एक दुई भजन बताए दीन जाए।
3: किरण दी सुना दीजिए ना काकी को एक भजन।
0: ओके सुनाती हूँ बाबा।

0: वाह बहन जी, बहुत नीक गावा जात है आप लोग, हमें सबका बहुत नीक लाग।
1: चलिए दी, शाम हो गई है, अब चला जाए नहीं तो ठंडक बढ़ जाएगी। और आप लोग अब सावधान हो जाइए, मौसम बदल रहा है। जो किरण दी ने घरेलू नुस्खे बताए हैं उसको अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कितना लाभ मिलता है आप लोगों को।
2: चलिए चलिए चलते हैं, एक और भजन सुना देती हूँ श्री कृष्ण जी का। सभी को राम राम, फिर मिलते हैं।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

इसी बहुत प्यारे से सॉन्ग के साथ वेलकम वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम आप सभी का बहुत बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और टाइम हो गया है ज्ञान असली लाइव का और आ गई हूँ मैं यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई जो भी हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत बहुत वेलकम है ज्ञान असली लाइव में। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी

कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हुई हों, बट कहते हैं ना कि प्यार का जो एक प्यार होता है उसका कहीं ना कहीं कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। सो आज उसी प्यार को, उसी रिश्ते को दिल से बयां करेंगे और मैं लेकर के आई हूँ आज कुछ लाइंस आप सभी के लिए जो कि मैजिकल हैं। बिल्कुल, ये लाइंस मैजिकल इसलिए हैं क्योंकि इन लाइंस के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि जो रिश्ता होता है भाई बहन का वो प्यार से कितना भरा हुआ होता है और कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो होता है वो दिल का दिल से जुड़ा होता है, दिल से जुड़ा होता है, प्यार से जुड़ा होता है, अपनों से जुड़ा होता है। और कहीं ना कहीं बचपन की जितनी भी हम कह लें मस्तियाँ साथ में की हों, एक दूसरे की हिस्से की डांट खाई हो, अपनी थाली चाहे कितनी भी भरी हुई क्यों ना हो, बट हम ये कहने से नहीं चूकते थे कि अरे देखो मम्मी ने खीर तुम्हें ज़्यादा दी है ना मुझे कम दी है, मम्मी तुम्हें ज़्यादा प्यार करती हैं मुझे कम प्यार करती हैं, या कई बार इन्हीं बातों पर झगड़ा हो जाता था कि मम्मी किसे ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा किसे कम प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब इसीलिए होता है क्योंकि प्यार होता है। तो आइए लाइंस के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिश्ता है क्या। रेशम का एक छोटा धागा, रेशम का एक छोटा धागा जिसमें बसा है स्नेह अगाध, बहन बांधती भाई को राखी, बहन बांधती भाई को राखी, देती सदा सुखी रहने का आशीर्वाद। बचपन की वो खट्टी मीठी यादें, वो लड़ना झगड़ना और रूठ जाना, फिर एक चॉकलेट के बहाने एक दूसरे को हंसकर मनाना, दूरी चाहे कितनी भी हो, दूरी चाहे कितनी भी हो या पर्व दिलों को जोड़ता है, दूरी चाहे जितनी भी हो ये पर्व दिलों को जोड़ता है, भाई का वो रक्षा करने का वादा हर मुश्किल का रुख मोड़ता है। प्यार का यह पावन बंधन सदा महकता रहे ऐसे ही, प्यार का ये पावन बंधन सदा महकता रहे ऐसे ही, बना रहे या अटूट भरोसा, बना रहे या अटूट भरोसा, चंदा और चकोर का जैसे, चंदा और चकोर के जैसे ही, बना रहे ये अटूट भरोसा चंदा और चकोर के जैसे ही। बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी तरह ये भरोसा बना होना चाहिए, ये प्यार बना होना चाहिए। और आज इन लाइंस के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता होता है कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा होता है, और ये आप तब महसूस कर पाएंगे जब आप बड़े भाई होंगे या आपकी छोटी बहन होगी, तो हम और प्यार से इस रिश्ते को महसूस कर पाते हैं कि जब बहन होती है और छोटी बहन जिद करती है कि नहीं नहीं भैया मुझे वही चाहिए, और आप तुरंत कहते हो हाँ ठीक है बेटा चलो हम दिला के लाते हैं, या आपका छोटा भाई हो आप बड़ी बहन हो, ऐसा नहीं है कि अगर छोटे बड़े नहीं होते हैं तो, मतलब एक प्यार होता है, एक केयर होती है। बड़ी बहन बिल्कुल माँ की तरह केयर करती है, बड़े भाई का सपोर्ट कहीं ना कहीं एक पिता की तरह होता है, बहुत प्यारा होता है। और जिनके भी लाइफ में कहीं ना कहीं ये रिश्ता होता है उन्हें लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं एक जुड़ा हुआ एक प्यार, एक बहुत ही इमोशनल जो शायद हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, पर फिर भी हमने कोशिश की है इसे बयां करने की, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो आइए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं इन्जॉय करते हैं, बस यूँ गए और यूँ आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

अब सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइफ, और जिसमें कि आज हम राखी तो वैसे रक्षाबंधन कल है पर आज ही हम थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि सेलिब्रेशन की कर रहे हैं शुरुआत। और अभी अभी हमने आपको सुनाई बहुत ही प्यारी प्यारी पोएट्री, लेकिन क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी कथाएं भी हैं, यानी कि ऐसी स्टोरीज भी हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। आज हम उन्हीं में से कोई कुछ कहानियां आपको बताएंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो कहानी जुड़ी हुई है, पौराणिक कथा है रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, वो है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राज बलि के तीन पग यानी तीन पग भूमि दान मांगी थी, तब भगवान ने दो पगों में ही स्वर्ग से पृथ्वी को नाप लिया था। तीसरे पग के लिए जब कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बलि की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और बलि के अनुरोध पर उनके द्वारा द्वारपाल भी बन गए। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम न लौटने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई और वो यही सोच रही थी कि पता नहीं वो भगवान विष्णु कब लौट कर आएंगे। जब नारद जी की सलाह पर माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और श्रवण पूर्णिमा के दिन पाताल लोक जाकर राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधकर अपना भाई बनाया। जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने पति यानी कि भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस भेजने का वचन मांग लिया। भाई का धर्म निभाते हुए बलि ने भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त कर दिया और भगवान विष्णु दोबारा माता लक्ष्मी के पास यानी कि बैकुंठ पहुंच गए। तो ये थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी जो थी उन्होंने एक बहन होने का धर्म भी निभाया और एक पत्नी होने का धर्म भी निभाया, यानी कि उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया और फिर वहाँ से भगवान विष्णु को वापस वो ले आई। एक कथा और है जो कि जुड़ी हुई है रक्षाबंधन से ही, जो कि है मेवाड़ की राजपूत रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की। ये बहुत ही कह लें कि कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है कि 1535 में जब ये कथा कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है कि क्या हुआ कि राणा सांगा की मौत के बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ पे हमला कर दिया। उस समय रानी कर्णावती अपने छोटे छोटे बच्चों की जो है बच्चों के साथ वहाँ रहती थी और वहाँ का पूरा शासन संभालती थी। सुल्तान की विशाल सेना के सामने चित्तौड़ को बचाना मुश्किल था। तब रानी कर्णावती ने धार्मिक मतभेदों को भुलाकर सम्राट हुमायूं को एक दूत के माध्यम से राखी और पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानते हुए चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए मदद मांगी। हुमायूं उस समय बंगाल के सैन्य अभियान में व्यस्त था, लेकिन जब उसे राजपूत रानी की राखी मिली तो वो भावुक हो गया और सोचने लगा कि मुझे अपनी बहन की राखी का मान रखना है। उसने राखी के मान को स्वीकार किया, अपना अभियान बीच में ही छोड़ दिया और अपनी सेना लेकर चित्तौड़ के लिए निकल गया। हुमायूं की सेना ने बंगाल से चित्तौड़ पहुंचने में काफ़ी समय लग गया। जब तक हुमायूं वहां पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। बहादुर शाह की सेना चित्तौड़ के किले को भेज चुकी थी। अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने अन्य महिलाओं के साथ युद्ध तो किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस युद्ध में सफल नहीं हो पाई। हुमायूं भले ही समय से पहुंच नहीं पाया, लेकिन उसने अपना भाई धर्म निभाते हुए बहादुर शाह को युद्ध में बुरी तरह हराया और चित्तौड़ को वापस जीतकर रानी कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। कहीं ना कहीं देर जरूर हुई, समय जरूर लगा, बट हुमायूं ने अपना जो एक भाई होने का धर्म था वो जरूर निभाया और सभी मतभेदों से ऊपर जाकर निभाया। इसलिए कहते हैं कि ये रिश्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा होता है। आपका दिल जुड़ जाए जिससे आपको लगे कि वो आपकी रक्षा कर सकते हैं, एक रिश्ता, एक हम सेफ फील करते हैं। और रही बात देर की, तो ये हमारे रिश्तों में भी होता है कि कई बार हमें देर हो जाती है, कई बार कुछ चीज़ें शायद देर से समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए हमेशा इसे सहेज कर रखना चाहिए।
सो आइए लिसनर्स चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा हम सॉन्ग सुन लेते हैं और सॉन्ग के उस पार आएंगे बात करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा रिश्ता, बहुत ही प्यारा ये बंधन। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी तो होती है कि आज के दिन कहीं ना कहीं भाइयों को बड़ी टेंशन होती है, आई मीन रक्षाबंधन के दिन, कि उन्हें अपनी बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो वो सब बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस रिश्ते से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प फैक्ट्स क्या हैं। सो बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, क्योंकि कल है रक्षाबंधन और इसीलिए आज जो मूड है और जो एनर्जी है वो हाई है, क्योंकि भाई एक दिन बचा हो और त्यौहार जो है वो हमारे उसमें क्या कहते हैं कि त्यौहार जो है वो सिर पे हो और एक दिन बचा हो तो फिर एनर्जी तो हाई होना बनता ही बनता है। तो बिल्कुल हमारी एनर्जी भी हाई है, हम भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप बने रहिए आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो में जिसका नाम है ज्ञान अश्लील लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की

धड़कन और गोड़ा शहर की धड़कन का दिल धड़काने फिर से वापस आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अनुष्का, और वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान स्ट्रेट लाइफ। तो आइए आगे बातें करते हैं और अब आपको बताते हैं भाई बहन के रिश्तों से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा जो है वो ये है कि साइकोलॉजी में कुछ ऐसे शोध हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि जिन लोगों की भी बहन होती है वे विपरीत परिस्थितियों में अधिक सकारात्मक और खुश रहते हैं। ओके, यानी कि तनाव कम करने में, स्ट्रेस कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और खुश रहते हैं। बहन जो होती है वो भाई को मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना देती है। वैसे ये तो होता है ना, बहनें कहीं ना कहीं भाई को मेंटली स्ट्रॉन्ग तो बनाती ही हैं। आपने देखा नहीं होगा कि जब भी आप कभी परेशान होते हो और सोचते हो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आपकी बहन आपके पास आ जाती है और कहती है क्या बात है, क्या हुआ भैया, तो आप उसे बताते हो कि ये बात है और वो बस यूं झटके में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे देती है, होता है ना। सेकेंड है हमारा जो फैक्ट है कि जिनकी भी बड़ी या छोटी बहन होती हैं उनके अंदर जो एक सेंस कहले सेंसिटिविटी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। और साथ में सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, चीज़ों को बहुत बेहतरी से समझते हैं और साथ ही साथ में रिएक्शन भी बहुत ही अच्छे से देते हैं। थर्ड आता है कि माता पिता के बाद भाई बहन का रिश्ता सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला कहीं ना कहीं रिश्ता होता है, और ये एक अनकहा सपोर्ट सिस्टम भी होता है जहां बिना झिझके आप कोई भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि ये एक अनकहा सपोर्ट सिस्टम है। अनकहा सपोर्ट सिस्टम मतलब भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है जहां पे हमें ये नहीं कहना पड़ता है कि भैया मैं परेशान हूँ, या भाई को ये नहीं कहना पड़ता है कि बहन आज मैं बहुत परेशान हूँ या मेरी कुछ हुआ है। बस आपकी आंखों को देखकर, आपकी शक्ल देखकर, आपका चेहरा देखकर आपकी बहन जान जाती है कि आप परेशान हैं। और वही कहीं ना कहीं भाई के साथ भी होता है कि बस बहन की आंखों को देखा नहीं और जान गए कि हमारी बहन आज किसी बात को लेकर परेशान है। तो कहीं ना कहीं यही होता है क्योंकि यह रिश्ता दिल से, प्यार से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा है कि बचपन में भाई लड़ाइयाँ तो सब ने की होंगी और जम कर की होंगी, एक दूसरे की चोटी खींची होगी, एक दूसरे के साथ ढेर सारी मस्ती की होंगी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बचपन में भाई बहन के बीच होने वाली नोक झोंक असल में कहीं ना कहीं एक नेगोशिएशन स्किल होती है, यानी कि सहमति बनाने की कला, और ये इंसान को कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा लचीला बना देती है और मजबूत करती है, जिससे कि आपकी दिमाग यानी कि आपका जो मेंटली आपका इम्प्रूवमेंट होता है, दिमाग का विकास होता है, और सबसे मोस्ट कि आपके सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आने लगती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि हम एक चीज़ को कई तरीके से, कई साइड से देखते हैं। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपकी सबसे प्यारी दोस्त आपके बर्थडे पर नहीं आई, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि उसे मेरी केयर नहीं रही होगी या वो जान पूछ कर नहीं आई या कुछ और। हम सोचते हैं हो सकता है उसके कोई काम पड़ गया हो, कुछ अर्जेंट हो, उसकी तबीयत खराब हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो एक सिचुएशन को कई सारे नज़रिए से देखना भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर तब आती है जब हम अपनी भाई बहनों के बीच कहीं ना कहीं बचपन में बहुत सारी नोकझोंक हुई होती है। सो सोचिए, रिश्ता एक पर उसके फ़ायदे कितने सारे हैं, कितने सारे फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो कितना प्यारा है ये रिश्ता, और प्यारा होने के साथ साथ कितना इम्पॉर्टेंट भी है हमारी लाइफ का। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेशम के धागे से भी ज़्यादा कह लें कि कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं कहेंगे पर सेंसिटिव भी होते हैं। कहते हैं ना कि कांच अगर एक बार टूट जाए तो आप उसे जोड़ नहीं सकते, ठीक उसी तरह हमारे रिश्ते भी होते हैं। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत कायदे से, बहुत सेंसिटिविटी के साथ हमें इसे संभाल के रखना चाहिए। गलती हो जाए माफ़ी मांग लीजिए, लड़ाई झगड़े हो जाएं कोई बात नहीं, आप सुलह कर लीजिए, लेकिन कर ज़रूर लीजिए। रिश्तों में कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए कि अरे जाओ, वो सॉरी नहीं बोलेंगी तो मैं भी सॉरी नहीं बोलूँगी। बचपन में तो ऐसा नहीं होता था, बचपन में तो हम झगड़ा भी करते थे और सोचते भी थे कि भैया के पास जाके सॉरी बोलना है, और तुरंत जाके सॉरी बोल के गले लगाकर बात वहीं ख़त्म हो जाती थी,
और भाई बहन का रिश्ता फिर से वैसा ही हो जाता था। वही बचपन, वही प्यार हमेशा जिंदा रखिए अपने रिश्ते में, क्योंकि वही रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। सो आइए चलिए इसी प्यारे से रेशम की डोर से बंधा हुआ ये रिश्ता और इस रिश्ते को जोड़ता हुआ एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है हमारे पास, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। तो आइए सुनते हैं राखी स्पेशल इस प्यारे से सॉन्ग को, इंजॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो में जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को और इंजॉय करते हैं।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना,
3: YouTube प्रीमियम इज ऐड फ्री YouTube,
1: पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

अरे भैया, बिल्कुल मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि अभी आपने सुना, और इसी के साथ आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ हमारे कौन से लिसनर जुड़े हुए हैं। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए चलते हैं, और हमारे साथ मैं देख रही हूँ कि चैट बॉक्स में जुड़े हुए हैं ओके सबलू सावन जी, जो कि हमें मुंबई से सुनते हैं, लिख रहे हैं विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, आपको भी सबलू जी। और साथ ही लिख रहे हैं प्यारी बहना तेरे हाथों से बंधी या राखी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सबलू जी, कहीं ना कहीं हम जब बहन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सबलू जी, कहीं ना कहीं हम जब बहनें राखी बांधती हैं ना, तो वो भाई के लिए भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और कहीं ना कहीं बहन के लिए उसका प्यार होता है। सो आप सभी को भी विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, अब बताते हैं हम कि अब वो चीज़ हम बताने वाले हैं जो कि बहनों को तो राखी के दिन बहुत पसंद होती है, लेकिन थोड़ी सी भाई के जेब पे भारी पड़ जाती है। मतलब थोड़ी सी भाइयों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बहनों को वो चीज़ बहुत पसंद होती है, और उसी के लिए लड़ाई भी होती है, और उसी के लिए कई दिन पहले से फरमाइशें भी शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे रक्षाबंधन की गिफ्ट में वो चाहिए, मुझे क्या लेके देने वाले हो रक्षाबंधन की गिफ्ट मुझे बताओ। वैसे तो ये इतना प्यारा रिश्ता है कि कह लें कि गिफ्ट्स की कोई बात नहीं होती, सिर्फ फीलिंग्स मायने रखती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए, खुशी फील कराने के लिए, खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं हम गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। सो ये भी बस उसमें से ही एक होता है, बहन को ये महसूस कराना कि उसका भाई उसे कितना प्यार करता है, एक स्पेशल फील कराने की फीलिंग होती है गिफ्ट। वरना तो ये रिश्ता ऐसा है कि कुछ भी आप दे दीजिए, वो इस रिश्ते की कहीं ना कहीं कह लें कि इस रिश्ते का मुकाबला तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो भाई का बहन के लिए प्यार होता है। तो आज ऐसे कुछ ऑप्शंस बता देते हैं हम स्पेशली भाइयों के लिए कि जो कि वो अपनी बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो आपको बताती हूँ कि क्या है। सो आइए बताते हैं कि क्या है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आज के दिन अगर भाई चाहें तो इसमें से भी कुछ अपनी बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि अगर आपकी बहन को गैजेट्स बहुत पसंद है तो आप उसे एक अच्छी सी स्मार्ट वॉच दे सकते हैं। हाँ, स्मार्ट वॉच एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि ये सेफ भी रहता है, तो आप स्मार्ट वॉच दे सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो उन्हें एक लाइट्स, आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है लाइट्स वाला मेकअप मिरर, वो दे सकते हैं। या ट्रैवलिंग डेली मूविंग के लिए आप एक बेहतरीन और किफ़ायती गिफ्ट उन्हें दे सकते हैं। दूसरा आता है कि बहन के नाम बहन और

भाई की नोकझोंक तो काफ़ी होती है, या कोई प्यारा सा आपका कॉफ़ी मग दे सकते हैं, उस कॉफ़ी मग पे आपकी अपनी बचपन की कोई अच्छी सी फ़ोटो प्रिंट करवा के आप दे सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है। दूसरा आता है कि ब्रेसलेट, पेंडेंट या फिर इयररिंग्स, अगर उन्हें एक्सेसरीज़ का बहुत शौक़ है, ज्वेलरी का शौक़ है, तो आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। कोई एक अच्छी सी ब्रेसलेट दे दीजिए, पेंडेंट दे दीजिए, इयररिंग्स दे दीजिए, या और ऐसी चीज़ें दें सिंपल वाली, थोड़ी इयररिंग्स हो या पेंडेंट हो या फिर ब्रेसलेट हो, वो सिंपल हो ताकि आपकी बहन उसे डेली पहन सके। जैसे अगर ऑफिस जाती हैं तो डेली पहनकर ऑफिस जा सके, बहुत ज़्यादा लाउड वाली ना हो कि वो वाली ना हो कि सिर्फ हम शादियों में पहन सकते हैं, कैजुअल वाली दे सकते हैं। और या फिर आजकल कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर्स भी बहुत अच्छे चलते हैं, जिसमें चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, उनकी पसंद की स्किन केयर प्रोडक्ट्स, या एक प्यारा सा हैंडमेड नोट लिखकर भी आप खुद एक सुंदर हैम्पर तैयार कर सकते हैं और उन्हें अपने हाथों से एक प्यारी सी टोकरी में बढ़िया सा बना करके गिफ्ट हैम्पर, और उसमें अपने हाथों से कुछ भी एक अच्छा सा प्यारा सा नोट लिखकर आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर वो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिसमें उसका बहुत इंटरेस्ट हो, वो भी आप दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्या दे सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। चॉकलेट, कुर्ती, मतलब कपड़े, अगर उन्हें कपड़ों का बहुत शौक़ है, बहुत इंटरेस्ट है कपड़ों में, तो आप कपड़े भी दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, कहीं ना कहीं वो और सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपको गिफ्ट देना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि गिफ्ट जो होता है ना, वो बस प्यार दिखाने का एक ज़रिया होता है। हम कहीं ना कहीं प्यार दिखाते हैं, अपनी केयर दिखाते हैं कि हमें हमारी बहन की इससे कितना प्यार है, कितनी केयर है। इसलिए बहुत सोच समझ कर गिफ्ट देना चाहिए। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या मतलब कि कौन सी चीज़ देनी है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उसे क्या पसंद आएगा, क्या उसके इंटरेस्ट की चीज़ होगी। क्या जब भी लेती हूँ तो अपने में एनालाइज करती हूँ कि अच्छा ये पसंद आएगा, अच्छा ये नहीं पसंद आएगा, हो सकता है ये पसंद आए। तो आप भी इन सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए उन्हें गिफ्ट दीजिए, जो उन्हें बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगे और साथ ही साथ वो खुश भी हों। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये दिन होता है ना, रक्षाबंधन, भाई बहन के प्यार का दिन होता है, और इस दिन बहनों को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं किया जाता। इस आज के दिन उन्हें सिर्फ खुश खुश खुश खुश रखा जाता है। और कहीं ना कहीं आज के दिन एक बात और है जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये दिन भाई बहन के प्यार का होता है, इसलिए कभी इन बातों में नहीं जाने देना चाहिए किसने क्या मुझे गिफ्ट में क्या मिला, अगर किसी ने पैसे दिए तो कितने, भाई ने दिए तो कितने दिए। इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क सिर्फ प्यार से पड़ता है। इसलिए हमेशा सिर्फ प्यार को ही रखें और इन छोटी छोटी बातों के लिए ना सोचें और ना ही इन्हें अपने रिश्ते में कभी दरार बनने दीजिए। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, चलते हैं, सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, जो कि है रक्षाबंधन स्पेशल। तो आइए ये सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए बने रहें अपने बहुत ही प्यारे वाले फेवरेट वाले शो में, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि है राखी स्पेशल।

0: सुने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए अब बात करते हैं कि अभी तक हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारी मस्ती की, रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारी बातें की। अब बारी है भाई बहन के प्यार को लेकर के एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की, जो कि आज मेरे पास है, जो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। सो ये स्टोरी बहुत ही प्यारी सी है जिसका नाम है दो किनारों का संगम। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसा होता है भाई बहन का प्यार। एक छोटे से शहर में विवेक और उसकी छोटी बहन अंजलि रहते थे। बचपन में दोनों का रिश्ता आम भाई बहन जैसा ही था। दिन भर लड़ना, रिमोट के लिए झगड़ना और एक दूसरे की शिकायत माँ से करना। विवेक थोड़ा शांत स्वभाव का था, जबकि अंजलि चुलबुली और ज़िद्दी थी। वक्त बदला, दोनों बड़े हो गए। कॉलेज की पढ़ाई के बाद विवेक ने शहर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन शुरुआत में ही उसे भारी नुकसान हो गया। वह कर्ज में डूब गया और डिप्रेशन में रहने लगा। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक शाम विवेक अपने कमरे में सिर्फ पकड़कर बैठा हुआ था, तभी अंजलि वहाँ आई। उसने विवेक के सामने एक लिफाफा रखा। जब विवेक ने लिफाफा खोला तो उसमें अंजलि के गहने और उसकी नौकरी की पहली बचत के पैसे थे। विवेक ने हैरान होकर कहा, अंजलि ये क्या है? मैं ये नहीं ले सकता, ये तुम्हारी शादी और भविष्य के लिए है। अंजलि ने विवेक का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, भैया जब बचपन में मैं साइकिल से गिरती थी तो आप खुद रोने लगते थे और मुझे उठा लेते थे। आज आप जिंदगी की दौड़ में गिरे हो तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? पैसे और गहने तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर मेरे भाई का हौसला टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। हम दोनों सिर्फ माता पिता की संतान नहीं हैं, हम एक दूसरे की ढाल हैं। हर मुश्किल में, हर तकलीफ में हमें एक दूसरे की ढाल बनकर काम करना है, एक दूसरे को हौसला देना है। जब एक टूटेगा तो दूसरे को उसे संभालना है। बहन के इन शब्दों ने विवेक के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे एहसास हुआ कि दुनिया भले ही उसके खिलाफ हो, लेकिन उसकी बहन उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। अंजलि ने ऑफिस के बाद विवेक के बिजनेस को संभालने में मदद की और विवेक ने अपनी पूरी जान लगा दी। अगले 2 सालों में विवेक का बिजनेस न सिर्फ संभला, बल्कि वह शहर का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। विवेक ने अंजलि को उससे भी खूबसूरत गहने वापस किए, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच का असली गहना वो प्यार और भरोसा था जो जो तकलीफ के समय कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत हो गया था। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि भरोसे और निस्वार्थ प्यार का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जो सबसे खूबसूरत मिसाल होती है। कहीं ना कहीं दुनिया में सब बदल सकते हैं लेकिन एक भाई और बहन का प्यार हर सिचुएशन में हमेशा बना रहता है। जब आप एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जब प्यार और भरोसा कहीं ना कहीं बना हुआ होता है तो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें भी छोटी लगने लगती हैं। तो ये थी कहानी दो किनारों का संगम, जो कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं दो भाई बहन जो बचपन में बिल्कुल अपोजिट थे कि अगर एक सीरियस है तो दूसरा चुलबुली थी, उसकी बहन ज़िद्दी थी, लेकिन बड़ी होकर किस तरह उसने अपने भाई को संभाल लिया। यही रिश्ता होता है, यही प्यार होता है कि जब एक गिरेगा तो दूसरे को उसे संभालना है, उसे प्यार देना है। और जब हम प्यार देंगे संभालेंगे तो फिर मुश्किलों का क्या है, वो तो बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो ये थी कहानी, आप सभी ज़रूर बताइएगा लिसनर्स कि आपको कैसी लगी। तो आइए सुनते हैं भाई बहन के रिश्ते को लेकर एक और प्यारा सा सॉन्ग, और थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गई थी। आपने देखा होगा कि जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी तो मुझे भी बस यही रियलाइज़ हो रहा था कि वाकई बहुत प्यारा रिश्ता है। सो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं भाई बहन के रिश्ते को लेकर के एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को।

बिल्कुल संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी सॉन्ग के साथ लिसनर्स, अब मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाजत। ये था आज का बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम जो कि ज्ञानश्री लाइव। आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज के लिए, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अब आपसे मिलती हूँ आपके अपने फेवरेट वाले शो में जिसका कि नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। और हाँ, बहनों का प्यार, बहनों का जो लगाव होता है ना, उसे हमेशा बनाए रखिए, उसके विश्वास को बनाए रखिए। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं और अगर कोई परेशानी आए तो आयुष्मान संपर्क 24 घंटे कैसे करते हैं और आयुषी चैट बॉट कैसे आपकी मदद करती है इसमें। इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्यारे सेहतिया भैया। भैया, कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी।
2: जी,
3: मैं बढ़िया हूँ और आज तो दिल खुश करने वाली खबर भी लेकर आया हूँ। हमारे गाँव की उर्मिला दीदी है।
2: अच्छा।
3: उम्र करीब 55 साल, कई महीनों से दिक्कत में थी, पेट में दर्द रहता था लेकिन पैसे की चिंता में अस्पताल जाने से डरती थी। एक दिन आशा दीदी ने उन्हें समझाया कि उर्मिला दीदी, आपके नाम पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, चलिए अस्पताल चलते हैं। उसी दिन आशा दीदी के साथ वे नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल गई। अस्पताल वालों ने आयुष्मान कार्ड स्कैन किया और बिना एक भी रुपए लिए उनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई। आज उर्मिला दीदी ठीक है और खेतों में काम भी कर रही हैं।
2: ओहो, अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो, अस्पताल का पता ना मिले या योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किससे पूछे? और मतलब ये है मेरा कहने का कि कोई ऐसी जगह है जहाँ दिन रात कोई उनके सवाल सुनकर उचित जवाब दे सकता है?
3: बिल्कुल है आरजी आकांक्षा जी।
2: जी,
3: आयुष्मान योजना के लिए सरकार ने आयुष्मान संपर्क नाम का 2400 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर बना रखा है।
2: अच्छा।
3: आप बस 1800-1844-44 डायल कीजिए और उधर से कोई ना कोई तुरंत बात करने आ जाएगा।
2: एक बार फिर से नंबर बता दीजिए,
3: 1800-1844-44।
2: अच्छा।
3: और मान लीजिए आपने कॉल किया, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उसके कार्ड पर कौन सी सुविधाएं मिलती हैं या किसी को अस्पताल में ओपीडी या भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो बस कॉल कीजिए, कॉल सेंटर वाले आपको एक एक चीज समझा देंगे।
2: बहुत अच्छे।
3: कई बार मरीज अस्पताल से लौट आता है लेकिन आगे की दवा या जांच कहां करानी है ये समझ में नहीं आता, ऐसे में भी आयुष्मान संपर्क वाले बताते हैं कि नजदीक में कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां फॉलो अप मिल जाएगा। अगर आपको अस्पताल में गलत जानकारी दी गई या शिकायत दर्ज करवानी है तो वो

0: है। आयुषी बड़ी ही मददगार है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपका कार्ड बना है या नहीं, योजना में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, या आपके आसपास कौन सा अस्पताल आयुष्मान में सूचीबद्ध है, तो बस वेबसाइट खोलिए और आयुषी से बात शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही अपना सवाल टाइप करेंगे, आयुषी तुरंत जवाब दे देगी। ना किसी का इंतजार, ना कॉल लगने की टेंशन, बस मोबाइल में लिखिए और जानकारी आपके सामने। ये चैटबॉट बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जवाब देता है, जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हों। चाहे आप लाभार्थी हो या अस्पताल चलाते हों, आयुषी दिन रात उपलब्ध रहती है। आपको जब भी जरूरत हो बस क्लिक कीजिए और आपका जवाब तैयार मिलता है।
1: हाँ सेहतिया भैया, हमारे एक एडिटर साहिबा भी हैं जिनका नाम आयुषी है, वो भी हर एक समस्या का समाधान करती हैं, एकदम ऐसे ही जैसे कि ये आयुषी चैट बॉट है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो PMJA है, इसमें किन किन बीमारियों को कवर किया जाता है?
0: देखिए, आयुष्मान PMJAY बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बिल्कुल फ्री कर देता है। जैसे अगर किसी को जनरल सर्जरी की जरूरत है, मतलब पेट का ऑपरेशन, हार्निया, अपेंडिक्स वगैरह, योजना में सब शामिल है। फिर आता है ENT, यानी कान नाक और गले से जुड़ी परेशानियाँ। अगर किसी का कान से पानी बह रहा है या टॉन्सिल की दिक्कत है, तो इसका इलाज भी इस योजना के तहत होता है। मोतियाबिंद से परेशान लोगों की सर्जरी भी आयुष्मान PMJAY में होती है। महिलाओं के लिए भी ये योजना बहुत काम की है। प्रसूति और स्त्री रोग यानी डिलीवरी, महिलाओं की सर्जरी या अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। हड्डी वाली परेशानियां जैसे फ्रैक्चर, जोड़ बदलना या हड्डी में दर्द की समस्या भी इस योजना में आती है।
1: सिहतिया भैया, अभी आपने कई तरह के इलाज बताए, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, जैसे दिल की बीमारी या दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या, तो क्या उसका भी इलाज आयुष्मान PMJA कराता है?
0: बिल्कुल कराता है। कई लोग सोचते हैं कि योजना बस छोटे मोटे इलाज तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष्मान PMJAY कठिन और महंगे इलाजों को भी कवर करता है। जैसे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट में कई चोट लग जाए, कई जगह फ्रैक्चर हो जाए, इसे ही पॉलीट्रॉमा कहते हैं। ऐसे में इलाज बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में इसका खर्च कवर होता है। फिर आता है दिल का इलाज, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, स्टेंट लगाने में बड़े ट्रीटमेंट भी इस योजना में शामिल है। लोग लाखों के खर्च से बच जाते हैं।
2: घर का भी
0: अब बात करते हैं दिमाग और नसों यानी न्यूरो सर्जरी की। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो या सिर में चोट के बाद ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो भी आयुष्मान PMJAY के तहत कराया जा सकता है। कैंसर का इलाज हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत पैसा लगता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में कैंसर की सर्जरी कवर होती है।
1: तो सेहतिया भैया, अब एक सवाल और है आपसे कि क्या चेहरे का ऑपरेशन, जलने का इलाज, छोटे बच्चे की सर्जरी जैसी बड़ी इलाज भी आयुष्मान PMJAY मतलब PMJAY में कवर होती है?
0: आयुष्मान PMJAY महंगे ऑपरेशन भी कवर करता है, जैसे प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जैसे हादसे में किसी के चेहरे या हाथ पैर पर चोट आ गई या शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इस सर्जरी से डॉक्टर मरीज को ठीक कर देते हैं। इसका खर्च भी योजना उठाती है। फिर है चेहरे और मुंह की सर्जरी। किसी को चेहरे में चोट लग गई, जबड़े में समस्या है या कोई जन्मजात दिक्कत है, तो इन समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान PMJAY के तहत होता है। अब बात करते हैं कार्डियो थोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी की। ये छाती, दिल के आसपास और शरीर के नसों से जुड़ी बड़ी सर्जरी होती है
1: जी।
0: ये इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आयुष्मान PMJAY इन्हें भी कवर करता है, जिससे लोगों को लाखों का खर्च नहीं उठाना पड़ता। फिर है बर्न्स मैनेजमेंट यानी जलने के बाद का इलाज। अगर कोई घर में खाना बनाते समय झुलस जाए या किसी दुर्घटना में जल जाए, तो उसका

0: पूरा इलाज, ड्रेसिंग, सर्जरी सब कुछ योजना में शामिल है। और इस योजना की सबसे प्यारी बात बच्चों का इलाज है। अगर बच्चों को किसी बीमारी के लिए सर्जरी की ज़रूरत है तो ऐसी सर्जरी भी आयुष्मान पीएम जय में कवर है। छोटे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन इस योजना से माता पिता का बोझ हल्का हो जाता है।
1: अरे वाह भैया, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपकी तबीयत नासाज होते हुए भी सर्दियों का असर है आप पे, आप इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए। चलिए एक और सवाल आपसे कर लेते हैं कि अभी तक आपने जितनी भी सर्जरी वाली सुविधाएं बताई, मतलब कई सारी सुविधाएं बताई, हमने समझी भी उसे, लेकिन क्या जनरल मेडिसिन, नवजात शिशुओं की देखभाल या गुर्दे मूत्र से जुड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में आते हैं?
0: आयुष्मान पीएम जय सिर्फ ऑपरेशन वाला इलाज ही नहीं करता, बल्कि कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर करता है, जैसे यूरोलॉजी यानी गुर्दे, मूत्र नली और प्रोस्टेट से जुड़ी परेशानियां। अगर किसी को किडनी स्टोन है, मूत्र रुक रहा है या प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो इन सब का इलाज भी योजना में हो जाता है। फिर आता है जनरल मेडिसिन, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बुखार, संक्रमण जैसे आम लेकिन गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। अब बच्चों की बात करते हैं
1: जी।
0: बच्चों की सामान्य बीमारियां जैसे जुकाम से लेकर इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत, ब्लड से जुड़ी समस्याएं इत्यादि का इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में होता है। नवजात शिशु की देखभाल भी इस योजना में कवर है। कई परिवार कैंसर का नाम सुनकर ही टूट जाते हैं, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में बच्चों के कैंसर का इलाज भी शामिल है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्कीम है। सेहतिया भैया, एक बात और जाननी जरूरी है कि क्या कैंसर की दवाइयाँ, रेडिएशन, इमरजेंसी इलाज, मानसिक स्वास्थ्य और अंग प्रत्यारोपण जैसे बड़े बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में कवर होते हैं?
0: बिल्कुल कवर होते हैं। आयुष्मान पीएम जय का दायरा बहुत बड़ा है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कई बार तो महीनों तक चलती हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में ये भी कवर होता है। इसके बाद आता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर को विकिरण से जलाकर खत्म करना। ये भी बहुत हाईटेक महंगी सुविधा है, पर योजना इसका खर्च भी अपने जिम्मे लेती है। मानसिक स्वास्थ्य भी इस योजना में शामिल है। डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई गंभीर मानसिक विकार का इलाज भी योजना में आता है। और अंग प्रत्यारोपण सबसे अहम है। दिल, किडनी, लिवर जैसे बड़े प्रत्यारोपण का खर्च सोचकर ही लोग कांप जाते हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में अंग प्रत्यारोपण भी कवर है।
1: सेहतिया भैया, जिन मरीजों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिन्हें पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होता है, उनके तकलीफों को कम करने वाला उपचार भी क्या आयुष्मान पीएम जय में मिलता है?
0: देखिए, कई बार बीमारी ऐसी होती है कि मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, जैसे कैंसर का आखिरी स्टेज या कोई और गंभीर रोग। ऐसे में पॉलिएटिव केयर बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब मरीज की तकलीफ कम करना, दर्द कम करना, सांस की दिक्कत ठीक करना, उसे आराम देना। आयुष्मान पीएम जय में ये सुविधा भी कवर है। अब आते हैं उन खास इलाजों पर जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट जिससे बच्चों को सुनने की शक्ति वापस मिलती है, या किडनी प्रत्यारोपण। इन सब के लिए आयुष्मान पीएम जय में विशेष पैकेज है।
1: तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि आयुष्मान पीएम जय देश की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। ये योजना करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाती है और अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खोलती है। 5 लाख रुपए तक का सालाना उपचार किसी भी गरीब परिवार के लिए एक मजबूत सहारा है। जब इलाज बिना पैसे के, बिना भागा दौड़ी के कैशलेस हो जाता है, तो घर के लोग राहत महसूस करते हैं। श्रोताओं, सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आयुष्मान पीएम जय के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे आशा और ANM की भूमिका, ऑनलाइन समाधान, अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाली फॉलो अप केयर के बारे में। अब मुझे इजाजत दीजिए, पर हाँ, जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।
3: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM, ये है गोडा शहर की धड़कन।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना
6: क्या,
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ,
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही बेहद प्यारा वाला शो, सहेलियों वाला शो, जिसका की नाम है सुन सहेली और मैं हूँ आपकी आरजे अंशिका। सो कैसे हैं आप सब? फटाफट से आए, हाजिरी लगाएं, अपना हाल चाल बताएं, क्योंकि आज का दिन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। और आज के दिन की करेंगे शुरुआत, बताएंगे आपको बहुत सी बढ़िया बढ़िया हम बातें। पर उससे पहले भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुन सहेली का तो दस्तूर है कि सहेलियां हाजिर होती ही होती हैं। तो आज आप सोच रहे होंगे कि भाई अंशिका जी तो आ गई, लेकिन कहाँ छोड़कर आई हमारी प्यारी सी आरजे समता जी को, यानी कि हमारी दूसरी सहेली को। हमारी एक सहेली तो आ गई, लेकिन हमारी दूसरी सहेली कहाँ है? तो बता दूँ कि मैम आज छुट्टी पे हैं, वो नहीं आ पाई क्योंकि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था। लेकिन कोई बात नहीं, कल है रक्षाबंधन और कल रक्षाबंधन के दिन हम दोनों आएंगे। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी हंसी, बहुत सारी गपशप को साथ लाएंगे और साथ ही में बताएंगे बहुत ही मीठी मीठी एक रेसिपी भी, जो कि मीठा मीठा क्या होने वाला है ये तो आपको कल ही पता चलेगा। तो कल हम दोनों सहेलियां होंगे साथ, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए मैम को ज़रूरी काम था, सो इसलिए वो नहीं है अभी। बट कोई बात नहीं, हम उन्हें याद करेंगे और उन्हें याद करते हुए आज का शो भी करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो कि होता है पोएट्री, और आज है थर्सडे, यानी कि बहुत ही प्यारा सा दिन जो कि है हमारा बड़े बुजुर्गों को लेकर के। तो सबसे पहले पोएट्री, लेकिन उससे पहले कैसे भूल सकते हैं हम सुन सहेली का दस्तूर कि आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली विथ आरजे समता एंड आरजे अंशिका। और इसी के साथ दोपहरिया है, मस्त दिन है, जबरदस्त। तो आइए आप सभी को विश कर देते हैं शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, तो आइए करते हैं शुरुआत प्यारी सी पोयम के साथ और किसी को करते हुए याद। किसे याद भाई? आपके आरजे समता जी को ही याद कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं को याद करते हुए आइए पोयम शुरू करते हैं जो कि आज है बुजुर्गों पे। घर के आंगन की रौनक होते हैं बुजुर्ग, अनुभवों का अनमोल खजाना होते हैं बुजुर्ग, उनकी झुर्रियों में छुपा है जीवन का सार, बिना कहे वो समझ लेते हैं, वो होते हैं बुजुर्ग। कड़कती धूप में शीतल छांव की तरह है, कड़कती धूप में शीतल छांव की तरह है, भटके हुए कदमों के लिए सही राह की तरह है। उनकी बातें जीवन की हर मुश्किल को आसान बनाती हैं, उनकी बातें जीवन की हर मुश्किल को आसान बनाती हैं, हमारे संकटों को हरने वाले एक दुआ की तरह है वो। दौड़ती भागती इस दुनिया में सुकून का नाम है वो, संस्कारों की नींव और संस्कृति का मान है वो। चोट लगती है हमें तो उन्हें दर्द होता है, ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर वरदान है वो। आओ मिलकर उनके चरणों में शीश झुकाएं, आओ मिलकर उनके चरणों में शीश झुकाएं, उनके अकेलेपन को अपने प्यार से मिटाएं। जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, आओ आज उनका बुढ़ापा खुशहाल बनाएं, आओ आज उनका बुढ़ापा खुशहाल बनाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब बचपन होता है तो बच्चे जो है वो बच्चे होते हैं और माता पिता उन्हें संभालते हैं, लेकिन जब माता पिता एक वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक माता पिता होने का रोल प्ले करना पड़ता है, उनकी सारी जिद पूरी करनी पड़ती है, उनके नखरे उठाने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें प्यार से डील करना होता है। कई बार होता है ना कि हमारे मम्मी पापा एक ही चीज़ को एक जगह रख कर कई बार भूल जाते हैं और फिर हम कहते हैं क्या मम्मी तुम यार एक जगह एक चीज़ नहीं रख सकती हो क्या? लेकिन कहने से पहले सोचिए कि जब आप बचपन में 100 बार कीचड़ वाले कपड़े गंदे करके आते थे तो आपकी मम्मी आपसे प्यार से कहती थी ना, अरे कोई बात नहीं बेटा मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ठीक उसी तरह आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें प्यार से डील करें, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार से तो कोई भी पिघल जाता है, बस पिघलाने वाला चाहिए, यानी कि प्यार करने वाला चाहिए। और बच्चे तो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते ही हैं। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ और बताते हैं कि आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या है। और एक सरप्राइज आप सभी के लिए है कि इस ब्रेक के उस पार आऊंगी तो किसी को साथ लाऊंगी। किसे? अगर अभी बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा ना। वो हमारी सहेली हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाली हैं। थोड़ी देर में आप उनकी प्यारी सी आवाज़ को सुनेंगे भी, लेकिन उससे पहले आइए बता देते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है रिश्तों में कभी बराबरी नहीं होती, रिश्तों में कभी बराबरी नहीं होती और देने लेने का हिसाब कभी रिश्तों में नहीं रखा जाता। बिल्कुल सही है, रिश्तों में कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने मुझे इतना किया तो मैं भी उन्हें उतना करूं, या वो मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती है ना तो मैं भी उनके साथ ठीक से बात नहीं करूंगी, या फिर रिश्तों में कभी लेने देने का हिसाब नहीं होता। लेने देने के हिसाब का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता, लेने देने के हिसाब का मतलब होता है कि रिश्तों में आपने कितना किसी के लिए किया, कितना कहा, कितना उन्हें सहारा दिया, इन चीज़ों का हम कभी हिसाब नहीं रखते, क्योंकि जहाँ हिसाब रखा जाने लगता है वो रिश्ते नहीं होते हैं, फिर सौदे बन जाते हैं। फिर जब वक्त आता है कभी हमारी किसी से बहस होती है तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं अरे तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितने एफ़र्ट्स किए हैं। सो ज़रूरी है कि रिश्तों में कभी लेने देने का हिसाब ना रखा जाए। और ऐसा ही एक रिश्ता होता है भाई बहन का, कितनी भी तकरारें हो, कितना भी झगड़ा हो, लेकिन बहन कभी अपने भाई से ये नहीं कहती है कि देखा मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, या भाई कभी अपनी बहन से नहीं कहता कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है। सो यही मेन है, यही प्यार बना रहे, यही विश्वास बना रहे, और कभी आप एक दूसरे को रिश्तों में जताएं नहीं, क्योंकि कई बार जब हम रिश्तों में जताते हैं ना तो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते को प्यार से रखिए, हिसाब से नहीं, क्योंकि हिसाब से तो सिर्फ सौदे रखे जाते हैं। तो आइए लिसनर्स, इसी प्यारे से रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ आपको एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुना देती हूँ और मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार हमारी बहुत ही प्यारी सी एक सहेली है उनके साथ। तो आप भी सोचिए कि कौन है वो और आपसे क्या बातें करने वाली हैं। तब तक के लिए मिलते हैं इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार। सुनिए, इंजॉय करिए और बने रहिए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
9: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो जिसका के नाम है सुन सहेली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और मेरे साथ में अब जो आने वाली हैं, यानी कि हमारी गेस्ट कह लें या सहेली कह लें, जिनके बारे में इतनी देर से मैं आपको बता रही थी कि वो अब आएंगी, तो फाइनली वो आ गई हैं। तो आइए सीधे चलते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उनसे ही बात करते हैं और बताते नहीं हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसी हैं। तो आइए अगली आवाज़ सुनते हैं हमारी प्यारी सी सहेली की।
10: थैंक यू अंशिका दीदी, कैसी हैं आप?
9: बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
10: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे लिसनर कैसे हैं?
9: हाँ, लिसनर तो लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और अच्छे हो भी क्यों ना, क्योंकि कल है रक्षाबंधन,
10: भाई बहन का प्यार त्यौहार।
9: बिल्कुल, भाई बहन का प्यार और त्यौहार, क्योंकि रक्षाबंधन, भाई बहनें जो होती हैं वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए एक्साइटेड होती हैं और भाई राखी बंधवाने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि कब उन्हें वो मिल जाए, और एक्साइटेड होते हैं कि कब हमारी राखी जो है वो बन जाए हाथों पे।
10: और बहनें कुछ ज़्यादा ही होती हैं क्योंकि उनको गिफ्ट मिलना होता है।
9: मेन बात तो कर दी आपने कि गिफ्ट मिलना होता है, राइट। तो भाई कैसी हैं आप?
10: बहुत अच्छी हैं, और आप कैसी हैं?
9: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और जानना चाहते हैं कि आपका प्यारा नाम क्या है। भाई हमारे लिसनर्स, मतलब मैं तो जानती हूँ पर लिसनर्स तो जान जाए ना।
10: लिसनर भी मुझे जानते हैं, मेरा नाम सुहानी है
9: जी।
10: और आप कैसी हैं?
9: हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो आइए, सुहानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी प्यारी सी सहेली। तो आइए शुरुआत करते हैं लिसनर, और जैसे कि आज अभी हमने बताया पोएम और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, और आज है थर्सडे, यानी कि हमारा सीनियर सिटीजन्स को लेकर के दिन। तो कुछ उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको टॉपिक बताएंगे। सो हमारा टॉपिक जो है वो आज ये होने वाला है कि किस तरीके से ये जो मौसम आप देख रहे हैं ना कहीं हम कहते हैं ना सावन का मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा होता है, लेकिन इस मौसम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि हमें हो जाती हैं।
10: हाँ, जैसे कि वायरल फीवर और बदन दर्द वगैरह।
9: बिल्कुल सही कहा आपने सुहानी, वायरल फीवर, बदन दर्द आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ तो हम बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सुने तो यंग हैं उन्हें भी हो रहा है, सभी को हो रहा है। कहीं ना कहीं हर उम्र के लोगों को इस मौसम में, यानी कि मानसून में, वायरल फीवर तो हो ही रहा है।
10: जी जी, और ख़ास करके बुज़ुर्गों को ज़्यादा होता है क्योंकि वो थोड़ा
9: बिल्कुल सही कहा आपने,
10: थोड़ी कम हो जाती है,
9: राइट, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है और इस वजह से उन्हें जल्दी हो जाता है वायरल फीवर। तो आज उसे लेकर हम बात करेंगे लिसनर्स, और आपको बताएंगे कि ये होता क्यों है। तो एक सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो अभी सुहानी ने आपको बताया कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और दूसरा है कि मौसम के जब मौसम बदलता है तो वायरल फीवर हो जाता है। क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे सुहानी कि इस समय मौसम कैसा हो रहा है कि जब बारिश होती है तो ठंड हो जाती है और जब धूप निकलती है दिन में तो गर्मी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस सर्द गर्म की वजह से भी हमें वायरल हो रहा है। तीसरा कारण होता है कि बुजुर्गों में ये बहुत आम होता है कि ये उन्हें अक्सर सर्दी जुकाम, तेज़ बुखार और सिर में दर्द कमज़ोरी की वजह से हो जाता है। बुजुर्गों में कहीं ना कहीं वीकनेस बहुत बड़ा कारण होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और बढ़ती उम्र के कारण वो वीक भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वीकनेस भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण होता है जो कि होता है गठिया या फिर जोड़ों में दर्द या फिर पुरानी बीमारी। आपने देखा होगा कि अगर हमारा शरीर पहले से, जैसे बड़े बुजुर्गों को तो बढ़ती उम्र में गठिया हो ही जाती है, जोड़ों में दर्द हो ही जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन हल्के जो कि उनकी पहली पुरानी बीमारियाँ होती हैं, बहुत लोगों को डायबिटीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उनके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और वो वीक हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत जल्द ये वायरल फीवर हो जाता है। एक कारण इसका और होता है जो कि होता है, सबसे बड़ा कारण हम कह लें यही होता है कि पानी की कमी,
10: क्योंकि वो पानी कम पीते हैं।
9: जी, अब क्यों कहा जाता है कि हमें दिन भर में पानी पीना चाहिए? याद रखिए कि एक स्वस्थ इंसान को दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर, या अगर आप 2 से 3 लीटर नहीं पी सकते हैं तो 8 से 10 गिलास तो आपको पीना ही पीना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को हाइड्रेट रखना। 90% बीमारियां सिर्फ तब होती हैं जब हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं होती, इसलिए पानी पिए। और अगर आपको प्यास नहीं लगती है, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना सुहानी कि मुझे तो प्यास ही नहीं लगती है तो मैं पानी कैसे पीऊँ, तो जिन्हें भी प्यास नहीं लगती है उन्हें मीठा खाने की आदत डालनी चाहिए। जैसे आप बैग में बिस्किट रखे रहिए या कुछ भी मीठा और जरा सा खा लीजिए तो आपको प्यास
10: लगती है।
9: इसलिए अगर जिन्हें भी प्यास नहीं लगती है वो मीठा खाने की आदत डालें और अलार्म लगाएं। कई बार क्या होता है कि हम ऑफिस जाते हैं तो हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं। अगर आप अलार्म लगाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको पानी पीना है। इसलिए अलार्म लगाना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कहते हैं ना सारी लापरवाही हम जो भी करते हैं वो सब अपनी सेहत को लेकर के ही करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना सेहत सबसे पहले होती है
10: और सब लोग उसको सबके सबसे बाद में रखते हैं कि सेहत है का अभी थोड़ी देर बाद खा लूँगा, थोड़ी देर बाद पी लूँगा, काम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ।
9: राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पेशली घर की महिलाएं, हमारी घर की जो महिलाएं होती हैं, मतलब मम्मी हो, चाची हो, बुआ हो, दीदी हो, कोई भी हो, उनको लगता है किचन का काम हो जाना चाहिए, घर का काम हो जाना चाहिए, पूरा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद कहीं जा कर के जब हमें टाइम मिलेगा तब हम खाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये गलत बात है, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम हमारी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है। इसलिए कभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करें, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ख्याल रखना कहीं ना कहीं। देखिए जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे हम कौन सा बहुत भारी काम करते हैं, हम तो ऑफिस जाते हैं बैठ के काम करते हैं और उसमें कोई थकान नहीं होती है और मुझे कहीं बार बार प्यास थोड़ी ना लगती है, लेकिन ये गलत चीज़ है। आप ऑफिस जाते हैं, माना कि आप बैठकर काम करते हैं तो हो सकता है फिजिकल थकान ना होती हो या होती हो हमें पता ना चलती हो, लेकिन मेंटली तो अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो मेंटली तो थक रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहने की ज़रूरत तो है ना, इसलिए पानी हमें प्रॉपर पीना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट आता है कि बुज़ुर्गों की देखभाल और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि बता दें कि बुज़ुर्गों में ये बहुत ज़्यादा होता है। सो बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी होती हैं इसके लिए जो कि हमें जाननी चाहिए, जिनसे कि हमें हेल्प मिल सकती है इसे करने में। तो कुछ होम रेमेडीज़ हैं हमारे पास जो कि हम आपको बताएंगे, और वो आपको बताएंगी हमारी सहेली यानी कि सुहानी जी। तो सुहानी क्या है आपके पास, बताएं।
10: मेरे पास है जैसे कि इस शरीर का तापमान आप नियंत्रित रखें, गुनगुना पानी पीते रहें, गुनगुने पानी की पट्टी लेते रहें, यदि आपको तेज बुखार है तो माथे, गर्दन, गले में आप गुनगुने पानी का मतलब गुनगुने पानी में कपड़ा भिगो लें, फिर
9: जी जी
10: छोड़ के वहाँ पे रखें ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे,
9: बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे।
10: हाँ, और बुजुर्गों को कभी भी ठंडे पानी या बर्फ के पानी से सिकाई ना करें, नहीं तो उनको ठंड ज्यादा लग सकती है।
9: जी,
10: कमरे के तापमान मतलब अच्छा रखें उसको, ऐसे कमरे में उनको रखें जहाँ पे अच्छी हवा आती हो, उन्हें बहुत भारी कंबल से ना ढकें ताकि उनके अंदर से जो गर्मी बाहर निकलती है उससे बुखार कम हो जाए।
9: जी,
10: मोटा कंबल अगर उनको दे देंगे तो गर्मी निकल के फिर उनके अंदर ही चली जाएगी।
9: कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो नहीं उनको देना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनकी केयर करनी चाहिए।
10: और हाइड्रेशन करें, जैसे कि उनको तरल चीज ज्यादा दें, पानी दें, और दाल का जूस बना के दें, दाल की सूप दें, और तरल पदार्थ ही दें उनको, बिल्कुल तला भुना ना खिलाएं ताकि उनका जो उनकी पाचन क्रिया होती है वो बहुत वीक हो जाती है बुजुर्गों की।
9: बिल्कुल सही कहा आपने सुहानी कि उन्हें तरल पदार्थ देने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे तरल पदार्थ क्यों, तो इसके लिए सबसे मेन कारण ये है कि जब हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी में पानी जो होता है वो सूख जाता है, इसलिए ज़रूरत होती है पानी की, ज़्यादातर लिक्विड आपकी बॉडी में जाए। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में गुनगुना पानी, नारियल पानी, जैसे कि अभी सुहानी ने बताया कि दाल का पानी भी आप दे सकते हैं, यानी कि दाल का पानी जब हम दाल बनाते हैं तो उसमें पानी जो होता है वो आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ में इससे दो चीज़ें होती हैं, इससे उनकी कमज़ोरी यानी कि वीकनेस भी दूर हो जाती है, और उनकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं उनकी बॉडी से, यानी कि टॉक्सिन्स रिलीज हो जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबलू जी, और इसी के साथ मोहम्मद करके कोई जुड़े हुए हैं, और साथ में सबलू जी भी जुड़े हुए हैं जो कि हमें बम्बई से सुनते हैं। तो कैसे हैं आप सबलू जी? और उन्होंने एक प्यारी सी स्टोरी भी लिखी है कि एक बार युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा, यह देख कर महारानी द्रौपदी से रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि खून रुक जाए। भगवान कृष्ण ने इस प्यार और दुलार इस प्यार भरे और दयालु काम से बहुत खुश हुए। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि जरूरत पड़ने पर वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। बाद में जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और अपना वादा पूरा किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी एक भाई की उन्होंने एक भाई का प्यार निभाया। बिल्कुल सही कहा आपने सबलू जी, बहुत ही अच्छी ये कथा रक्षाबंधन की बताई आपने, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण ने भाई होने का फर्ज निभाया, और द्रौपदी को का जब अपमान हुआ तो उन्होंने उनकी मदद की, और यही एक भाई का फर्ज भी होता है कि वो हमेशा अपनी बहन की मदद करे। तो आइए अब आपको बताते हैं कुछ और तरीके जिनसे कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल हो सकती है। तो आता है कि आयुर्वेद जो होता है ना, आयुर्वेद का कहीं ना कहीं बहुत हाथ होता है। मतलब जब भी आपको ऐसी सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, वायरल होता है तो हमें आयुर्वेद का रुख ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले आता है तुलसी और अदरक की चाय। 4 से 5 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा अदरक पानी में उबाल लीजिए, और उबाल करके गुनगुना होने पर थोड़ा सा शहद मिला दें। इसे एंटीवायरल, इसमें क्या होता है कि एंटीवायरल बहुत सारे इसमें गुण होते हैं जिनकी वजह से यह आपको बहुत फ़ायदा करता है, और तुलसी हमारे पाचन को भी बहुत अच्छा रखती है। तो ये काढ़ा आप बना के दे सकते हैं तुलसी और अदरक का। और दूसरा आता है कि गिलोय को आयुर्वेद में बुखार का सबसे अच्छा इलाज माना गया है, इसलिए गिलोय की डंडी को पानी में डाल करके बॉईल कर लें। जब वो बॉईल हो जाए, पानी का रंग बदल जाए, उसके बाद आप वही पानी घर के बड़े बुजुर्गों को पीने के लिए दीजिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर होता है इलाज जो कि आप दे सकते हैं। तो आइए लिसनर्स, आप चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आती हूँ इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार ले करके, क्योंकि अभी तक हमने आपको ये बता दिया कि क्या कुछ लेना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, पर अभी तक हमने ये नहीं बताया है कि कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, वो आपको बताएंगे लेकिन इस सॉन्ग के उस पार।

सपनों की जो यादें होती हैं ना, वो हमारे दिल में बसी हुई होती हैं। तो उन्हें याद करेंगे और याद करने के साथ शो भी करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

आप सुन रहे हैं सुन सहेली, आपका बेहद ही प्यारा वाला पसंदीदा वाला शो, जिसका जो कि आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ। तो आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको काफ़ी जानकारियां दे दी, अब बारी आती है प्रिकॉशन की। तो बताते हैं कि इसमें क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। जब बात आती है प्रिकॉशन की, तो सबसे पहले बता दूं कि प्रिकॉशन में आपको क्या करना है, बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवा ना दें। ये बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन है। कई बार क्या होता है ना कि हम बिना डॉक्टर से सलाह मशवरा किए, बिना पूछे हम दवाई दे देते हैं, और ये बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि बदन दर्द और बुखार में सीधे कोई भी पेन किलर खा लेते हैं, या केमिस्ट से सीधे दवा ले आते हैं और उसका डोज ले लेते हैं, जो कि लिवर और किडनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा न लें। स्पेशली अगर आप वो घर के बड़े बुजुर्गों के लिए ले रहे हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप बिना प्रिकॉशन के कोई भी मेडिसिन ना लें। दूसरा आता है कि कोई भी एंटीबायोटिक खुद शुरू ना करें, यानी कि वायरल बुखार में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। इसलिए बिना टेस्ट कराए कोई भी तेज़ दवा ना खाएं। तेज़ दवा का मतलब होता है कि जिसमें एमबी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम केमिस्ट से दवा ले आते हैं बिना पूछे या बिना किसी उसके, तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान करता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि बिना डॉक्टर से पूछे हुए, बिना उनसे कंसल्ट किए हुए आप कोई भी दवा ना खाएं, अपना बहुत ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी डाइट, जिस पर कि हमें ध्यान देना चाहिए। आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस मौसम में, मानसून के टाइम में, हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं चाट पकौड़ी, बाहर का खाना हम सभी खाते हैं। तो बाहर के जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, यानी कि ठेले के अगर बात करें तो बताशे, टिक्की वगैरह, ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अपनी डाइट में आपको जहां तक शामिल करने की जरूरत है, वहां तक आप हल्की चीजों को शामिल करिए। हल्की चीजों का मतलब होता है कि जैसे बुखार के दौरान क्या होता है ना कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो धीरे धीरे भारी चीज़ें जब हम खाते हैं, यानी कि तला हुआ, भुना, घी, मक्खन, तो वो बिल्कुल खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए दाल की पतली खिचड़ी, दलिया या उबली हुई सब्जियां ही खानी चाहिए, जो कि हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। ये मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि हम हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइट का ख्याल रखना मेन है। बहुत ज़रूरी होता है अपनी डाइट को मेंटेन करना, बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन में भी। डेली रूटीन का मतलब है कि थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए, यानी कि घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें गार्डन में टहलाने ले जाएं, उनका ख्याल रखें, थोड़ा सा उन्हें बाहर का वेदर भी दें। क्योंकि कई बार होता है ना कि घर में बैठे बैठे भी हमें लगने लगता है कि नहीं, ये उबन हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको बाहर ले जाएं, उनका ध्यान रखें, ताकि वो बेटर फील करें। और उनकी डाइट में आपको सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। दवाई के लिए हमने आपको बताया ही अभी अभी, और डॉक्टर को दिखाना इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल भी ये लापरवाही नहीं करनी है कि अरे थोड़ा सा है ना ठीक हो जाएगा, नहीं तो कल डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को टाइम टू टाइम दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो कि हमने आपको बताए वायरल फीवर को लेकर के, और भी बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें आपको बताई। तो लिसनर्स आइए चलते हैं, सीधा चलते हैं, और अब हम कहाँ क्या करेंगे, अब हम करेंगे वो कि सुनेंगे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी प्यारी सी सखी यानी कि सुहानी जी लाएंगी, जो कि है पौधों को लेकर के। भाई हम कैसे भूल सकते हैं कि आज हमारा पौधों वाला दिन है, यानी प्लांट्स केयर, और प्लांट्स केयर के बारे में आपको सुहानी बताएंगी, और आप कि कैसे आपको अपने पौधों की केयर करनी चाहिए। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: Delicious.
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?

0: शहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका के नाम है सुन सहेली। और वापस हाजिर हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए अब सीधे चलते हैं और रुक करते हैं सुहानी का और जानते हैं कि वो अब हमें क्या बताने वाली है। वही आज प्लांट्स केयर भी होती है क्योंकि आज है थर्सडे, तो सुहानी हमें बताएंगी कुछ प्लांट्स को लेकर के।
1: जैसे मानसून में पौधे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है
0: जी।
1: तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पौधे लगे होते हैं उनका ड्रेनेज चेक करें, जैसे कि गमले के नीचे का छेद खुला होना चाहिए ताकि पानी उसमें एक्स्ट्रा हो जाए तो आसानी से निकल सके
0: जी।
1: और ओवर वाटरिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर मिट्टी पहले से गीली है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना डालें।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि बहुत लोगों के, मैंने भी देखा है कि पाइप बस अगर पौधे में लगा दी तो वो पूरा फुल हो गया गमला, लेकिन वो पानी नहीं हटेगा, वो पाइप नहीं हटेगा। तो
1: मतलब
0: ऐसा नहीं करना
1: चाहिए, इतना पानी पिला दें कि एक ही दिन में पी लिया, दोबारा नहीं देना है।
0: बिल्कुल ऐसा नहीं करना,
1: बिल्कुल नहीं करना है। एक बार पानी दे दें, अगर मिट्टी सूख जाए तो आप उसमें पानी डालें, अगर गीली है तो बिल्कुल भी पानी ना डालें
0: जी।
1: जमा हुआ पानी हटा दें। अगर गमले के नीचे की प्लेट में जो पानी बच जाता है, जैसे रुका होता है, तो उसको हटा दें ताकि उससे कीड़े या फिर फंगल ना पहुँचें
0: जी।
1: और
0: तो अभी
1: छटाई भी कर सकते हैं आप, जैसे कि उसके देखभाल में छटाई करें, सूखी पत्तियां और सूख चुके पत्तियों को हटा दें, टहनियों को काट दें ताकि उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि छटाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार होता है ना कि जो वेस्ट पत्ते होते हैं वो जब नीचे गिरते हैं तो कहीं ना कहीं सड़ जाते हैं, जिनसे फंगस मिट्टी में भी लग जाता है और हमारे पौधे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट है कि छटाई ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि अभी सुहानी ने बताया। दूसरी चीज़ आती है कि इस मौसम में हमें कीड़ों से बचाना चाहिए, और कीड़ों से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे आप अपने पौधों को कीड़े से बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको नीम की पत्तियां ले लेनी है, ढेर सारी, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप नीम की पत्तियां ले लीजिए, और एक बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए, और नीम की पत्तियों को उसमें डालकर तब तक बॉयल करिए जब तक कि वो पानी हरा ना हो जाए। हरा होना इट मीन्स कि पानी में पूरी तरीके से नीम का जो एक तत्व होता है वो पानी में आ जाता है। अब आपको उसे ठंडा कर लेना है, एक स्प्रे बॉटल में उसको और डाल लेना है, और अपने पौधों पे स्प्रे करना है, पौधों की जड़ों पे। इससे कभी आपके पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है सुहानी।
1: हाँ हाँ जी। और अपने पौधे को मतलब कि इंडोर शिफ्ट करें, उनको ज़्यादा पानी, जैसे बारिश का पानी ज़्यादा ना दें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि पौधों को मानसून में शेड में रखना चाहिए, या फिर अगर आपकी बैल्कनी है तो आप घर के थोड़ा सा अंदर रखिए, ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बस उनके ऊपर बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि कई बार बारिश का पानी पड़ने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बारिश का पानी पौधों पे ना पड़े। सेकंड आता है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो मानसून में जल्दी लग जाते हैं। तो हमने आपको बताया ही हुआ है, पहले भी बताया है, आज फिर बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें कि आप लगा सकते हैं मानसून में। तो आइए सुहानी से जानते हैं कि भाई क्या उन्हें पता है कि मानसून में हमें कैसे और कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत कई सारे पता है, उनमें से मैं आपको दो चार बता देती हूँ।
0: जी ज़रूर।
1: जैसे कि आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी छोटी सी कटिंग पानी में बहुत जल्दी लग जाती
0: जी,
1: है।
0: जी जी जी,
1: 4 से 5 दिन में वो अपनी जड़ें उसमें लगा देती हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है मानसून में वो। और आप उसमें गुड़हल लगा सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में गुड़हल की टहनी लगाने से पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।

0: और सबसे बढ़िया तो गुलाब भी लगा सकते हैं आप उसमें, क्योंकि गुलाब गुलाब लगाने से होता है कि उसकी टहनी को काट के लगाने से वो भी बहुत जल्दी उसमें आ जाता है,
1: यानी मॉनसून में बहुत अच्छा ग्रो करता है गुलाब भी। तो भाई अभी तीन तीन पौधे आपने जान लिए सुहानी से, तो चलिए कुछ मुझे भी याद आ गया, मैं भी बता देती हूँ आपको कि अभी इन्होंने बताया मनी प्लांट। मनी प्लांट के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे कि सुहानी ने बताया कि कटिंग होती है और मिट्टी में वो जल्दी लग जाता है। दूसरा होता है जेड प्लांट। जेड प्लांट यानी कि बहुत ही अच्छा पौधा होता है ये, जो हवा की नमी के कारण इसकी कटिंग मॉनसून के दौरान बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। दूसरा इन्होंने बताया था गुड़हल। गुड़हल की टहनी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत आसानी से लग जाती है, और बारिश में तो कहते हैं ना कि अगर उल्टे हाथ से भी आप कोई पौधा लगाइए तो वो भी लग जाता है। दूसरा आता है जो कि बहुत ही अच्छा पौधा होता है और हम सभी को बहुत पसंद होता है, इसकी रंग बिरंगी पत्तियाँ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, और सफ़ेद सफ़ेद फूल भी इसमें होते हैं और पिंक फूल भी होते हैं, जो कि होता है सदाबहार। और कहीं ना कहीं सभी के घरों में सदाबहार के पौधे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो सदाबहार भी बारिश में बहुत आसानी से लग जाता है, आप सदाबहार भी लगा सकते हैं। लेकिन सारे ही पौधों के लिए बस एक ही टिप्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी लगाएं तो मिट्टी को कभी जड़ से ऊपर ना रखें, क्योंकि अगर जड़ से ज़्यादा मिट्टी होगी, मतलब बहुत ऊपर, कुछ लोग तो बिल्कुल पौधे के जड़ के ऊपर तक मिट्टी आ जाए, पत्तों तक मिट्टी आ जाती है, तो इतना नहीं, बस इतना रखिए कि वो मिट्टी जड़ में ही रहे, कम रखिए। और गमले जो भी पौधे आप लगा रहे हैं गमला ज़रूर चेक करें कि हमेशा ये देखकर लगाइए कि कौन सा पौधा किस गमले में फिट होता है, इससे वो जल्दी ग्रो करता है। और जैसे कि सुहानी ने बताया कि ऑक्सीजन पास आउट होने के लिए और पौधा ग्रोथ करे इसलिए उसमें होल ज़रूर होना चाहिए। देखिए होल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जिट होल, क्योंकि अगर आपके गमले में एग्जिट होल नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि आपका उसमें ऑक्सीजन पास आउट नहीं होगा, जिससे पौधे सड़ने लगते हैं, इसलिए एग्जिट होल ज़रूर बनाएं। तो ये थी पौधों को लेकर के भाई कुछ बातें, क्योंकि मॉनसून चल रहा है और अगर इसमें पौधों की बातें नहीं होंगी तो फिर क्या मज़ा आएगा, क्यों सुहानी?
0: बिल्कुल, पौधे तो लगाना चाहिए, हरा भरा। अब हम पेड़ बहुत जल्दी नहीं लगा पाएंगे, पर पौधे तो लगा लेंगे ना।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: ग्रोथ भी जल्दी करते हैं।
1: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, वापस आएंगे बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सहेली यानी कि सुहानी जी, जो कि अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बहुत प्यारी प्यारी बातें की, बहुत प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन दी, और उनका अब टाइम हो गया है भाई, हमें उन्हें जाने देना है, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, उन्हें भी तो मेहंदी लगानी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, कपड़े ले लिए होंगे, राखियाँ ले ली होंगी, थाली सजाई होगी, या शायद ये भी हो सकता है कि अभी तक राखियाँ ना ली हों। क्यों सुहानी, क्या क्या तैयारी कर ली रक्षाबंधन की?
0: अभी मैं तो अपने घर जाऊँगी तब सब करूँगी।
1: हाँ,
0: क्योंकि तो मुझे जाना है थोड़ा जल्दी ट्रेन।
1: जी जी जी, तो भाई इन्हें जाना है जल्दी और जाना भी है बिल्कुल, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तैयारियां तो बनती हैं, तो अभी के लिए हम इन्हें जाने देते हैं और फिर इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर आप हमें सुन सहेली में दोबारा मिलेंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सुहानी को हम जाने देते हैं और वो चली गई हैं भाई, उन्हें तैयारियां करनी थी जैसा कि उन्होंने बताया। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से

क्लास नाइन्थ आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आधा सा जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: Delicious.
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: शहर की धड़कन और धड़कन का दिल धड़काने के लिए फिर से हाजिर हो गई आपकी सहेलियां, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका की नाम है सुन सहेली। तो आइए सीधा चैट बॉक्स में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त नवीन राजपूत जी, और साथ ही साथ में अरविंद मौर्या जी, जो कि हमें अरविंद जी जो कि हमें मनकापुर से सुनते हैं, और इसी के साथ सविता दुबे जी। सो सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। तो आइए अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले हमारे कंटेंट की तरफ, जो कि है आज एक प्यारी सी स्टोरी, और ये स्टोरी है फौजा सिंह की, जो साबित करती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और मजबूत हौसलों से कभी भी उम्र के कोई मायने नहीं रखती। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे फौजा सिंह बचपन में इतने कमज़ोर थे कि 5 साल की उम्र तक तो वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे जी। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खेती बाड़ी करते हुए आज पूरे मतलब खेती करते हुए उन्होंने आज 81 वर्ष के वो हैं, और जब वो 80 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। लेकिन इतने गहरे दुख और अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए वो लंदन चले गए, और ख़ुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, कि कहीं ना कहीं 85 साल की उम्र में उन्होंने दौड़ना शुरू किया, और आज वो बहुत ही अच्छे हैं, फिट हैं, और कहीं ना कहीं बस ये दिखाते हैं कि दुख चाहे कितने भी हों, तकलीफ़ें चाहे कितनी भी हों, बस हमें कहीं ना कहीं समझना होता है कि हमें क्या करना है। हमेशा एक एग्जाम्पल हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसे साधना चाहिए, और कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि उम्र इतनी ही है तो ऐसा ही होगा, और उम्र हो जाती है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एज इज़ नंबर। आपकी एज जो होती है वो सिर्फ एक नंबर होती है, बाकी कुछ भी नहीं होती है। बस आपको ये करना है कि आपको अपनी एज को ना आड़े आते हुए अपने सपनों को पूरा करना है, अपने काम को करना है, और हमेशा खुद को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। इसी प्यारे से मैसेज के साथ आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त, और कल है बहुत ही प्यारा सा दिन यानी कि रक्षाबंधन, और कल मिलेंगे सुन सहेली में लेकर राखी स्पेशल, मैं और साथ हम दोनों यानी कि आरजे समता और आरजे अंशिका। तब तक के लिए लिसनर्स अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM को। बाय बाय।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बहुत जताते हो चाह हमसे, बहुत ही प्यारा। और इस प्यारे से सॉन्ग के साथ में आप सभी का स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे वाले शो में, कॉलिंग वाले शो में, जिसमें कि आप कॉल करते हैं, अपनी फरमाइशें बताते हैं और हम आपकी फरमाइशों को प्ले करते हैं, जो कि है कॉलर ट्यून गोंडा। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का तहे दिल से आपके अपने वाले शो में स्वागत करती हूं। सो लिसनर्स, फटाफट से बताएं कि कैसे हैं आप सब। तो आइए चलते हैं सीधे हम हमारे चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से लिसनर जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी बातें कर लेते हैं और फिर उसके बाद बढ़ते हैं फरमाइशों की तरफ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रही हैं सविता दुबे जी, जो कि लिख रही हैं शुभ दोपहरिया अंशिका मैम, शुभ दोपहरिया आपको। अरविंद जी जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं खुशी का हर लम्हा पास होता है जब बहन का साथ मेरे साथ होता है, सभी बहनों के लिए। वाह, बहुत ही प्यारी सी लाइन। और इसी के साथ रिजु जी भी जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद मुर्शीद जी जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजे अंशिका मैम, कैसे हो आप। तो मोहम्मद मुर्शीद जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं। सोलसनर्स, हो गई बातें बातें, आइए तो चलते हैं, अब शो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश के साथ। देखते हैं कि आज हमारी पहली फरमाइश जो की है वो किसकी है। सो आज हमारी पहली फरमाइश है रिजु जी की। तो आइए सुनते हैं रिजु जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, और भी करेंगे बातें और भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन सभी लिसनर्स का जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ मैं याद दिला दूं कि अगर हमारे बाकी लिसनर्स की तरह आप भी अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचा देना है। सो आइए सबसे पहला सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं।

0: याद सतावे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी रिजू जी ने। वैसे यादें होती हैं कुछ ऐसी हैं, कुछ मीठी सी होती हैं, प्यारी सी होती हैं, और जब हमारे अपनों से जुड़ी हुई होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो हमें सताती ही हैं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है जाह्नवी जी की। जाह्नवी जी का सॉन्ग भी बड़ा ही प्यारा है, जो कि कल रक्षाबंधन है, तो सॉन्ग है बहना ने भाई की कलाई पे। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल अ ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।
1: भूलें

प्यारा सा सॉन्ग, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बिल्कुल भाई बहन का बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता ही ऐसा है कि इसके लिए आप जितनी भी मतलब जो भी कह लें, कहीं ना कहीं वो कम ही पड़ जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है शारदा प्रसाद प्रजापति जी की। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। आप सभी बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और हाँ, कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। कॉल करें, कॉलिंग नंबर है 6393316429। फिर एक बार बता दूँ, 6393316429। कॉल करें और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाएँ। तो आइए सुनते हैं शारदा प्रसाद प्रजापति जी के सॉन्ग को।

के सावन आया बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है मोहम्मद मुर्शीद जी की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद मुर्शीद जी के सॉन्ग को बहारों फूल बरसाओ। और इस प्यारे से सॉन्ग के बाद में बारी होगी आज के ज्ञान की यानी कि आज की पहेली की जो मैं बताऊंगी और देखती हूँ कि उसका सही जवाब कौन दे पाता है। और चैट बॉक्स में भी हम आएंगे और आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं मोहम्मद मुर्शीद जी के सॉन्ग को।

0: बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी ये फरमाइश की थी मोहम्मद मुर्शीद जी ने। और इससे पहले कि हम अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जुड़े हुए अरविंद मौर्य, अरविंद जी जो कि हमें मनकापुर से सुनते हैं, लिख रहे हैं, हेलो आरजे मैम, कैसी हो आप, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। नवीन राजपूत जी जुड़े हुए हैं, नाजिया अंसारी जी जो कि लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारी सी कविता है जो कि नवीन राजपूत जी ने लिखी है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाता है मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही पत्थरों को भगवान बना देती है। बहुत ही प्यारी सी लाइंस। और इसी के साथ मोहम्मद मुर्शीद जी ने लिखा है, वेरी वेरी थैंक यू डियर आर जे अंशिका मैम, यू वेलकम मोहम्मद मुर्शीद जी। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ और देखते हैं कि हमारी अगली फरमाइश किसकी है। लेकिन उससे पहले आपकी आज की पहेली आपको बता दूं जो कि है, मैं वो चीज़ हूँ जो बांटने से और ज़्यादा बढ़ जाती हूँ, मैं वो चीज़ हूँ जो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती हूँ, तुम मुझे जितना बांटो मैं उतना ही बढ़ती जाती हूँ। फिर एक बार बता दूं कि मैं वो चीज़ हूँ जो बांटने से बढ़ जाती हूँ, तुम मुझे कितना भी बांटो मैं बढ़ती ही जाती हूँ। तो इस पहेली का आप सभी को जवाब देना है और देखते हैं कि हमारे कौन से लिसनर हैं जो कि इस पहेली का जवाब दे पाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है नाजिया अंसारी जी की, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं नाजिया जी के सॉन्ग को।
1: दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के देखा करती थी मुझे और मैं

0: कैसे होता है। तो प्यार कैसे होता है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रेनू तिवारी जी की। तो आइए सुनते हैं रेनू जी के सॉन्ग को।
1: सारेगामा कारवां।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग परदेश जाके परदेश या भूल न जाना पिया। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है सबलू सावंत जी की। तो आइए सुनते हैं सबलू जी के सॉन्ग को, लेकिन उससे पहले हमने पहेली पूछी थी जिसका कि जवाब दिया है के गुप्ता जी ने, जो कि तिरंगा कॉम्प्लेक्स से हमें सुनते हैं। लिख रहे हैं, डियर एंड डियर अंशिका मैम जी ज्ञान, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने के गुप्ता जी, ज्ञान। और इसी के साथ मोहम्मद मुशीद जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, ज्ञान। और के गुप्ता जी लिख रहे हैं, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, एडवांस्ड हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को भी। और इसी के साथ महेंद्र जी भी आ चुके हैं, जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून अंशिका मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है सबलू सावंत जी की। तो आइए सुनते हैं सबलू जी के सॉन्ग को।

निभाएगा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग और बहुत ही प्यारी फीलिंग भी, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो लिसनर्स, आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि के गुप्ता जी ने लिखा है कि अंशिका मैम जी हमको भी कोई सॉन्ग सुना दें। तो के गुप्ता जी, आप बताएं कि आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश, आइए देखते हैं कि किसकी होने वाली है। सो अगली फरमाइश मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि देखते हैं किसकी है, तो हमारी अगली फरमाइश जो कि है समरीन जी की। तो आइए सुनते हैं समरीन जी के सॉन्ग को। और अरविंद जी से मैं कहना चाहूँगी कि अरविंद जी, आप इंतज़ार करें, आपका सॉन्ग ज़रूर से प्ले होगा। तो आइए बढ़ते हैं और समरीन जी के सॉन्ग को सुनते हैं।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये सॉन्ग था समरीन जी का और अब अगला सॉन्ग जो कि होने वाला है जो कि है राजू टेलर जी का। तो आइए सुनते हैं राजू जी के सॉन्ग को और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने एंजॉय करें, स्टे ट्यून।
1: गाने सुने,

मैं तेरे प्यार में पागल, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रमेश कुमार जी की, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं रमेश कुमार जी के सॉन्ग को, और इसके बाद में हम सुनेंगे अरविंद जी के सॉन्ग को। तो आइए चलते हैं, सीधे सुनते हैं हम रमेश कुमार जी के सॉन्ग को।

दिन बिक जाएगा माटी के मोल, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है अरविंद मौर्या जी की। तो आइए सुनते हैं अरविंद जी के सॉन्ग को।

खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी अरविंद मौर्या जी ने। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है नवीन राजपूत जी की। तो आइए सुनते हैं नवीन जी के सॉन्ग को।

पैर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए कहाँ कसर है। पतली कमर है तेरी।

पतली कमर है, तिरसी नजर है, आजा तेरा आंखों में घर है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी नवीन राजपूत जी ने। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है अनुष्का जी की। सो आइए सुनते हैं अनुष्का जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

कमज़ोर, बिल्कुल मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमज़ोर भैया बहना। ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी अनुष्का जी ने। अब इससे पहले कि अगली फरमाइश की तरफ बढ़े, मैं देख रही हूँ कि नवीन राजपूत जी लिख रहे हैं कि मैम ये कौन सा सॉन्ग प्ले कर दिया। ओके, तो मुझे लगता है कि उन्होंने किसी और सॉन्ग की ही डिमांड की थी और आई थिंक ओके, तो सॉन्ग उनका थोड़ा मिस हो गया है। तो आइए सबसे पहले नवीन राजपूत जी के इस सॉन्ग को सुन लेते हैं और इसके बाद चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

पतली कमर लंबे बाल, जो कि ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी नवीन राजपूत जी ने। तो अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रक्षाबंधन का सॉन्ग और जिसकी ये फरमाइश की है राम नरेश जी ने। तो आइए सुनते हैं राम नरेश जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, राखी का त्यौहार मनाएं, आओ झूमे नाचे गाएं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी राम नरेश जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है जवाहरलाल प्रजापति जी की, जिन्हें की सॉन्ग सुनना है चांद के पार चलो। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आप बने रहिए आपके अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

मेरी एक बात चलो चांद के पार चलो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में लिसनर्स, मुझे आज के लिए आप सभी दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और हाँ, आप सभी को एडवांस में विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। अरविंद जी, सबलू जी, नवीन राजपूत जी, महेंद्र जी, कुमार टेलर्स जी और जो भी हमारे साथ अभी तक बने हुए थे, सबलू जी और बाकी सभी लिसनर्स, उन सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगेन एंड अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9281976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदमली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदमली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोदमली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286196 9819। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
0: स्वागत है आपका आप सभी लोगों के अपने लाइव प्रोग्राम खेत खलिहान में। और आज है बृहस्पतिवार, शाम के 5 बज चुके हैं और आपका कार्यक्रम जो हमारे खास किसान भाइयों के लिए हम लेकर आते हैं खेत खलिहान। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं आपके अपने आरजे अदनान। किसान भाइयों, इस वक्त जो मौसम है, कहीं भी बारिश हो जा रही है फिर रुक जा रही है, और जब भी हम निकलते हैं तो इस तरह की कई बार बारिशों से हमारी भेंट हो ही जाती है। लेकिन चूंकि अब बात जब किसान भाइयों की हो रही है तो एक अहम बात आती है, वो आती है कि भाई

0: दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो, उनको नुकसान ना हो। इसी कड़ी में आज हमसे इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि यानी हमारे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज गेस्ट के रूप में मौजूद हैं श्री तुलसी राम मौर्य जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, कैसे हैं आप
1: भैया? बहुत नमस्कार आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम तुलसी राम मौर्य है, मेरा गांव है जिले के पूर्वी साइड में एकदम सरहद के किनारे बभनान के पास पिपरा खुर्द
0: में आपका गांव है,
1: और विकास खंड जो है वो छपिया है
0: जी,
1: तहसील है मनकापुर का, जिला गोंडा का निवासी हूँ मैं। आप सभी श्रोता बंधुओं का सादर नमस्कार करता हूँ तथा अपने ज्ञानस्थली रेडियो सभी स्टाफ को मेरा नमस्कार, और अपने सभी किसान भाइयों बहनों को जय जवान जय किसान।
0: वाह क्या बात है, शुरुआत जब इतनी अपनेपन के साथ हो, इतनी मजबूत हो, तो कहते हैं कि सफर भी बड़ा अच्छा होता है और मंजिल मिल ही जाती है। आज हमारी मंजिल है धान की फसल में समसामयिक कार्य को कैसे समझा जाए, जिससे कि धान की ये फसल फायदेमंद सौदा साबित हो हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के इस अहम विषय पर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में आज हमारे को होस्ट की भूमिका निभा रहे इरफान शाह भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है
2: जी। सबसे पहले तो शुक्रिया सर, और किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न मेरा हमारे आज के गेस्ट से है, हमारे आज के अतिथि से है, कि अगस्त के अगर हम आखिर में देखें, जैसा कि इस वक्त महीना चल रहा है, धान की फसल ने जो है मुख्य बढ़वार इसका गोब में प्रवेश कर रही है, ऐसे में यूरिया का जो अंतिम किश्त है और जिंक है या पोटेशियम है, इसका सही समय और मात्रा इसके बारे में हमें बताएं क्या होना चाहिए?
1: देखिए ये किसानों की हमारी फसल धान की जो है ये इस समय लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच चल रही है, और इस समय यूरिया की दूसरी डोज और उसके साथ में जिंक तथा सल्फर
0: जी
1: का मिश्रण जो है बेहद अहम मायने रखता है, क्योंकि जिंक और सल्फर का मिश्रण यूरिया के साथ देने में हमारी फसल को एक तो इससे कोई भी रोग नहीं आएगा किनारे, और दूसरा फसल को हरा भरा भी रखेगा।
0: बिल्कुल।
1: और सल्फर जो है ये कहीं ना कहीं दाने को मजबूत और चमकदार तथा उत्पादन को बढ़ाने वाला साबित होता है।
0: तो आपने जिंक और सल्फर के बारे में बताया कि अगर इसका सही मिश्रण हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं फसल के दाने चमकदार होते हैं। अगर हम अनुपात की बात करें, कितनी मात्रा में इसको कैसे लेना है, तो क्या आप बीघे या एकड़ के हिसाब से बता सकते हैं
1: जी? किसानों को हमारे जो है धान के फसल में 1 एकड़ में लगभग समझिए कि 40 किलो यूरिया
0: जी,
1: 40 से 45 किलो यानी एक बोरी जो आजकल आ रही है, एक बोरी यूरिया के साथ में कम से कम तीन किलो जिंक और 3 किलो ही सल्फर

0: का मिश्रण बना करके और उसको खेत में यदि पानी भरा हुआ है तो भी बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा, और थोड़ा कीचड़ है तो भी ठीक है। यानी आज के समय में जो बारिश हो रहा है इस समय, वो धान की फसल के लिए बहुत ही समझे लाभदायक है,
1: एक तरह से वरदान कह सकते हैं।
0: हाँ, और इस समय इन उर्वरकों का प्रयोग बेहद अहम मायने रखता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम अपने किसान भाइयों से अपील करेंगे कि चैट बॉक्स पे हमने नंबर आपको ऑपरेटर के ज़रिए बता दिया गया है, तो अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 6393316429 6393316429 यानी 6393316429। अगर आप एप्लीकेशन से सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स पे ये नंबर है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी से या रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए 6393316429। और कुछ समय दीजिए, तब तक हम अपने एक्सपर्ट से लगातार बातचीत करते रहेंगे, और उस बीच अगर आपको कोई प्रश्न है या आपको प्रश्न करना है, आप भी धान की खेती कर रहे हैं और कोई समस्या आ रही है, तो उसको भी आप हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करके पूछ सकते हैं। अच्छा, फिलहाल आपने बताया जिंक और सल्फर की बात, 3-3 किलो के अनुपात में एक बोरी यूरिया, ये कितने एरिया के लिए बताया था आपने, कितने एरिया में पड़ जाएगा ये?
0: ये एक एकड़ के लिए,
1: एक एकड़ के लिए
0: पर्याप्त है।
1: अरे वाह, यानी बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, जो अनुपात आपने बताया है उससे धान की फसल अच्छी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छी बात बताई। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो दूसरा सवाल भी लगभग इसी से जुड़ता है कि कई बार किसान इस समय जो है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, जिसमें हम यूरिया का बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो ये बताइए कि इससे फसल पर नुकसान क्या हो सकता है, और अगर नुकसान सच में होता है तो इसका संतुलन किस तरह से बनाना है अगर कोई यूरिया का इस्तेमाल इस समय बहुत ज़्यादा करता है?
0: ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ यूरिया अगर आप डालते हैं और ज़्यादा डालते हैं तो फसल में पीलापन भी आ सकता है ज़्यादातर, और नुकसान होने का डर बना रहता है। विशेषकर कम पानी जहाँ हो, पानी की उपलब्धता कम हो, वहाँ ऐसी स्थिति आ सकती है, और जहाँ पानी खेतों में भरा हुआ है तो वहाँ तो विशेष नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन नुकसान है तब भी ज़्यादा यूरिया नहीं डालना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जिंक और सल्फर का प्रयोग बेहद ज़रूरी है, अहम है।
1: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और इसी के साथ साथ हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या नाम है आपका। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारे किसान भाइयों को जो भी समस्या आ रही है उन समस्या को लेकर आप प्रश्न कर सकते हैं। और चलिए, अब प्रश्न जो है वो हमारे को होस्ट इरफान शाह जी पूछने वाले हैं, और चलिए देखते हैं कौन है इस समय कॉल पर।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, अपना नाम बताइए।
3: हेलो सर, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, नमस्कार।
3: और जो आपके गेस्ट या हमारे गेस्ट आए हैं उनको हमारा राम राम।
0: बिल्कुल जी, राम राम
2: जी। अपना
3: मेरी समस्या ये, मेरा नाम है विजयपाल यादव, लंदौवा लखीमपुर खीरी से।
2: जी, अपना सवाल।
3: तो हम सर ये, जी सर
2: जी, अपना सवाल रखे सर जी।
3: हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे धान में एक बीज की पोंगी जो होती है वो एक आधी सूखने लगी है, धान गलेथा में है इस समय हमारा।
2: जी,
3: तो उसके बारे में हमको बताइए, और इसके बाद में ये बताइए धान गलेथा में है तो इस समय कोई खाद डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती?
0: जी बिल्कुल, खाद डाला जा सकता है। खेत में पानी भरा है क्या?
3: जी हाँ, पानी भरा है।
0: पानी भरा है तो आप जो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बताया
3: जी,
0: यूरिया के साथ में जिंक और सल्फर दोनों का मिश्रण यूरिया के साथ मिला करके, और इस समय सही समय है और आप उसमें डाल दें तो इससे कीट प्रबंधन भी हो जाता है इससे
3: जी।
0: हाँ, और जो है फसल के लिए,
3: और थोड़े दिनों के बाद में समस्या हो जाएगी गंदी वाली, जब बालियां निकलेंगी
0: हाँ,
3: तो समस्या गंदी वाली भी आती है, तो उसके लिए भी कुछ कोई उपाय बता दीजिए।
0: गंदी के लिए तो वही जो है आप मैलाथियन पाउडर का ही प्रयोग कर लें तो काफी है।
3: अच्छा सर।
2: जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: तो ये हमारे साथ में थे विजय पाल यादव जी, ललहुआ रखीम पे खीरी से कॉल किए। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि धान की फसल के बारे में समसामयिक विषय पर बातचीत कर रहे हैं। अब सर जानना चाहेंगे कि धान की उन्नत खेती जो है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल होगा कि धान की जो उन्नत खेती है वो कैसे करें, क्योंकि जो विधि है वो बोने की जो विधि है वो भी अलग होती है, और उन्नत खेती की जब बात होती है तो वो कैसे उन्नत खेती करें।
0: देखिए, हम अपने किसानों को ये बताना चाहेंगे कि जैसे जो हमारे बुजुर्ग थे पहले, वो ये कहा करते थे कि जिसके खेत का मेड़ मजबूत है
2: जी,
0: उसका खेत मजबूत है
2: जी।
0: तो अब खेत के अपने चारों ओर मेड़बंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है
2: जी।
0: और इसके बाद रही बात खेती की, तो धान या कोई भी फसल के पहले, जैसे धान के फसल को भी के लिए भी गहरी जुताई, यानी मई जून के महीने में जब बारिश हो जाए एक बार, या अगर मान लिया बारिश नहीं भी होती है तो अपने साधन से सिंचाई करके और खेत की जुताई, गहरी जुताई
2: जी,
0: कल्टीवेटर से या फिर ये जो डिस्क हैरो होता है इससे गहरी जुताई करके और छोड़ देना चाहिए गर्मी के महीने में, जिससे खेत के जो कीटाणु होते हैं नुकसान करने वाले फसल को
2: जी,
0: वो तेज धूप में वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं
2: जी।
0: इसके बाद फिर जो है आती है बात धान के नर्सरी की
2: जी।
0: तो नर्सरी के लिए भी देखिए, उसका सही बीजों का चुनाव, यानी हाइब्रिड बीजों का चुनाव अच्छी पैदावार लेने के लिए, और कीट पतंगों से बचाव के लिए फफूंद नाशक भी साथ में जो है धान के बीज को, उससे भी यानी ये संचालित कर लेना चाहिए बीजों को। और बीज डालने का समय जो है
2: जी,
0: वो लास्ट मई
2: जी
0: से शुरू होकर और 15 जून,
2: एक मिनट सर, एक कॉल आ रही है, देख रहे हैं।
0: हाँ,
2: हेलो हेलो
4: हेलो
2: जी, नमस्कार सर।
4: नमस्कार, कुशल पाल तिवारी, ग्राम उज्जैन
2: जी, नेटवर्क में आई। हेलो,
4: हाँ नेटवर्क में हूँ भैया, खेत में ही हूँ, और कहाँ पे चला जाऊँ।
2: जी जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, अपना सवाल रखे सर।
4: आवाज,
2: हाँ हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर।
4: चलिए ठीक है, सबसे पहले जैसा कि महोदय को हमारी तरफ से जय सियाराम, उसके बाद में आप और जो आपके तरफ से नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार भैया,
4: मैं मौलिया साहब से एक प्रश्न।
2: जी
4: हेलो।
2: हाँ सर, हाँ आवाज थोड़ा कट रही है, मतलब कुछ मेरा सिग्नल की प्रॉब्लम है।
4: हाँ हाँ कुछ हो सकता होगा।
2: जी जी सर,
4: तो जैसे अब आवाज साफ आ रही है।
2: हाँ सर, हाँ आवाज आ रही है सब। जी
4: मैं मौलिया जी से एक प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि अभी विजयपाल यादव के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया
2: जी
4: यूरिया और जिंक के संबंध में
2: जी,
4: तो उसमें बताया गया कि खेत में पानी रहे
2: जी,
4: लेकिन हमारे यहाँ जैसे बरसात भी कम हो रही है और खेत में पानी नहीं टिक रहा है, और विशेषज्ञ पहले बता रहे थे कि यूरिया को नमी की दशा में बोया जाए उसके बाद में पानी लगाया जाए, इन दोनों में धान के संबंध में क्लियर करना है कि क्या सही रहेगा। दूसरी चीज, जैसे गंधी के बारे में अभी अभी मौर्या जी ने बताया यादव जी को महिला थियान, तो खैर ठीक है वो प्रचलित दवा है बढ़िया है, लेकिन कोई देसी जुगाड़ भी बताएंगे कि जो ये जहर उसमें ना डाला जाए, कोई देसी तरीके से रोकने का भी प्रयास बताएंगे।
0: जी जी,
4: अब तो मौर्या जी से मैं अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ कि यूरिया के टॉप ड्रेसिंग की सही दशा क्या होनी चाहिए, पानी में कि नमी में, पहली चीज, और दूसरी चीज गंधी की रोकथाम के लिए ये मैला थियान के अलावा कोई देसी नुस्खा भी बताने का कष्ट करेंगे कि देसी तरीके से कैसे रोके।
0: जी मैं बताऊंगा। तो पहला प्रश्न आपका जो यूरिया के बारे में है, तो यूरिया का प्रयोग दोनों दशा में ही किया जा सकता है और सही है। यह है कि सूखा नहीं होना चाहिए, नमी बेहद जरूरी है।
4: अच्छा।
0: हाँ, नमी जो है धान के फसल में, नमी जैसे गेहूं के फसल में तो हल्की नमी पैर के सहने लायक रहे तभी डाला जाता है, लेकिन धान के फसल में तो कीचड़ या थोड़ा बहुत पानी या मैक्सिमम भी।
4: जैसे मौर्या जी,
0: जी
4: जैसे मान लिया कि अभी यूरिया डाली गई, यूरिया डालने के डेढ़ घंटे दो घंटे तीन घंटे के बाद में हल्की बरसात हो गई, तो उस दशा में यूरिया पूरा का पूरा प्रभावी होगा फसल पे कि कुछ क्षतिग्रस्त हो सक जाएगी?
0: देखिए, यदि आपके खेत का पानी बाहर निकल रहा है
4: जी जी,
0: तो नुकसान होगा
4: जी। और अगर खेत के बाहर पानी नहीं गया
0: हाँ, तो उसका भरपूर फायदा मिलेगा फसल को।
4: चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। और जैसे गंधी कीट के बारे में, जैसे आपने मैला थियान को बताया,
0: हाँ,
4: तो मैला थियान तो बड़ी प्रचलित दवा है, कई सालों से इसको किया जा रहा है, लेकिन कोई आप इसका देसी नुस्खा या कोई समझ लीजिए ये जो जैविक नुस्खा कोई भी बताएंगे?
0: देखिए, जैविक नुस्खा एक मैं बताता हूँ आपसे, वो ये है कि आप यदि कर सकें तो एक, वैसे कृषि विभाग दे रहा है ट्रैप, लाइट ट्रैप लाइट ट्रैप को जो है आप भाई अपने खेत के हिसाब से कि कितना आपका खेत है उस हिसाब से, जैसे एक बीघे में तो एक ट्रैप लगाया जा सकता है, और अगर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप ट्रैप बढ़ा लीजिए। यदि उस ट्रैप का आप सामर्थ्य नहीं है लाने का लगाने का, तो किसान भाई हमारे जो है कोई ऐसा वो एक स्टूल टाइप खेत में रख लें और उसमें से, अब तो
4: कोई कोई रोशनी जलाई जाए।
0: हाँ, चाहे मोमबत्ती
4: रोशनी, रोशनी को तसले, किसी तसले या किसी बर्तन में थोड़ा पानी जिससे जल जाए, या कोई केमिकल डाला जाए कि जिसके लाइट से आकर के उसमें मरे हैं। ये तरीका हम लोग गन्ने में अपनाते हैं भाई साहब, पायरेला के लिए।
0: हाँ, तो भाई साहब वही तरीका आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं।
4: चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ये एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए मौर्या जी।
0: जी बताइए।
4: जब अनाज तैयार हो जाता है हमारा, खास करके जब धान की दराई हो जाती है मशीनों से,
0: हाँ।
4: कुछ चावल जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ एक कुंटल चावल का एक महीने में खर्चा है, लेकिन किसी कारण बस हम 3 या 4 कुंटल दरवा लेते हैं, तो उसमें ये शिकायत आ जाती है 2-3 महीने के बाद में उसके उसमें कीड़े पड़ जाते हैं।
0: हाँ, ये सही बात कही आपने। तो इसलिए
4: अब ये थोड़ा विषय से हटकर है, क्योंकि आप की विषय तो ये है कि धान की जो वर्तमान खेती है, लेकिन अब आप अनुभवी हैं, आपका मैंने फोटो देखा है, तो आप अनुभवी हैं, तो थोड़ा आपसे ज्ञान लेना चाहिए।
0: नहीं,
4: तो जैसे उस चावल को कैसे सुरक्षित रखें, कीट मुक्त कैसे रखें?
0: हाँ, तो देखिए, ये इससे सवाल आपका फसल से हटकर नहीं है, ये उसी कड़ी में है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ भैया कि आप बोरिक एसिड,
4: अच्छा,
0: बोरिक एसिड नाम की एक 45-50 रुपया या इस तरह के पैकेट आते हैं 200 ग्राम के।
4: भाई साहब एक सेकंड, मैं आपसे थोड़ा निर्देश और लेना चाहूँगा।
0: हाँ बताइए।
4: बोरिक एसिड ये वही है जो मेडिकल स्टोरों पे एक पुड़िया 10 ग्राम की मिलती है, इसकी बात कर रहे हैं या कोई दूसरी है?
0: नहीं, वो 200 ग्राम, कम से कम 200 ग्राम की पैकेट।
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: हाँ,
4: ये जो मेडिकल स्टोर पे बिकती है या कोई दूसरी बोरी जैसी है?
0: नहीं, मेडिकल स्टोरों पर भी मिलता है, और वो
4: अच्छा।
0: जो बीज और दवा की दुकानें हैं वो भी रखते हैं।
4: हाँ,
0: तो उस पाउडर को आप जो है समझिए 2 कुंटल में लगभग 1 पैकेट मिक्स करके मिला करके आप भंडारण कर लें, तो कभी भी उसमें
4: 100 ग्राम प्रति कुंटल
0: 200 ग्राम। हाँ, वही।
4: अच्छा, जब 200।
0: हाँ, तो
4: जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा ज्ञान स्थली की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ में थे कुशल पाल तिवारी जी, और हमारे साथ में कॉल और भी आ रही है, और हम लोग बातचीत कर रहे थे सर कि धान की उन्नत खेती जो है। एक कॉल और आ गई है, रिसीव कर लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ में कौन किसान भाई जुड़ चुके हैं। हेलो।
5: नमस्कार
2: सर।
5: मैं विजय पांडे, थाना पछवाड़वा, जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ।
2: जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेत खलियान कार्यक्रम में। और सर अपना सवाल रखें सर।
5: मेरा ये सवाल है कि धान के खेत में लगा हुआ है घास
2: जी,
5: तो उसमें कौन सा दवा डालें
2: जी
5: कि घास सूख जाए? अभी तक तो नहीं डाले थे, कटवाई करवा दिए थे
2: जी। मतलब आपकी जो धान की फसल है उसमें मतलब घास जो है, मतलब कहने का मतलब है खार पतवार जो है वो
5: घास फिर से उगाया है
2: जी सर जी।
5: वही जो कट गया था, निराई हो गई थी
2: जी,
5: तो फिर से हो गया है।
2: चलिए ठीक है सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।
5: ठीक,
2: नमस्ते सर।
0: तो भैया पांडे जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके फसल में जो खरपतवार उग आए हैं।
2: एक सर कॉल और आ गई है, क्योंकि लगातार हमारे साथ में किसान भाई बहन जुड़ रहे हैं, और एक कॉल आ रही, रिसीव कर लेते हैं। हेलो। जी, अपना नाम बताएं।
5: नमस्ते,
2: अपना नाम बताएं सर।
5: इंद्रपाल मिश्रा, अमेरिका मोहली, सीतापुर।
2: जी इंद्रपाल जी, स्वागत है कार्यक्रम खेत खलियान में। नमस्कार।
6: नमस्कार।
2: अपना सवाल रखें और हमारे गेस्ट से अपना सवाल रखें सर।
6: धान में यहाँ पीली पत्ती हो रही है, खैरा रोग मालूम देते।
2: अच्छा, धान में जो है वो पीली पत्ती और खैरा रोग मतलब।
6: हाँ
2: जी। और कोई सवाल सर?
6: और नहीं
2: जी। ठीक सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।
6: अच्छा।
0: तो भैया आपके खेत में धान की फसल लगी हुई है, उसमें पीलापन आ गया है, खैरा रोग लगा है, तो उसमें आप यूरिया के साथ जिंक और सल्फर दोनों का मिश्रण करके यूरिया के साथ आप खेत में डाल दें, बुरकाव कर दें
2: जी,
0: इससे आपकी फसल पुनः हरी भरी हो जाएगी।
2: सर, इन्होंने कहा था कि खैरा रोग भी लग गया है।
0: हाँ, तो वही काम करेगा है।
2: जी। और सर, इससे पहले एक सवाल था, विजय कुमार पांडे जी पचपड़वा से कॉल किए थे, तो उनकी सर धान की जो फसल है उसमें जो है वो घास जो है ज़्यादा उगाई है, तो हम चाहेंगे अगर वो सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम तो उनको भी जवाब दे दीजिए सर।
0: जी जी। देखिए, खरपतवार अगर पुनः निकल आए हैं तो अगर अच्छी फसल है तो वो नीचे ही होंगे, नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छा फिर भी आप उसमें कई तरह के सिलेक्टिव दवाएं आती हैं मार्केट में
2: जी,
0: तो आप दुकानदार से जो है बात करके उस सिलेक्टिव दवा जो मिले उसका छिड़काव कर दें, या फिर इसके लिए प्रभावी इसे पेंडामेथिलीन है
2: जी,
0: लेकिन जो है आप दुकानदार से जो उपलब्ध हो उसके पास सिलेक्टिव दवाएं उससे जो है आप लेकर के और छिड़काव कर दें, जिससे खरपतवार जो है वो सूख जाएंगे
2: जी,
0: लेकिन उसके बाद फिर जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका उसको खुराक पुनः देना पड़ेगा हल्का फुल्का
2: जी। मतलब कहने का मतलब है कि दोबारा मतलब आपको फिर से छिड़काव जो है वो करना पड़ेगा।
0: हाँ
2: जी। सर, हम लोग बातचीत कर रहे थे धान की सर उन्नत खेती पर, और सर थोड़ी बात रह गई थी क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई बहन जो है वो टेलीफोन पे जुड़ गए थे, तो हम चाहेंगे सर थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए, क्योंकि मेढ़बंदी की बात हो रही थी।
0: हाँ।
2: उसके बाद में बीज की शोधन की बात हो रही थी।
0: हाँ।
2: तो हम चाहेंगे सर उसको थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए।
0: हाँ, तो यह बीज जो है वो आप अच्छे किस्म की बीज
2: जी,
0: जो हाइब्रिड कहें या अच्छी कंपनी का बीज जो है आप लेकर के और काबिंडा जिम से उसका जो है उपचार करके और नर्सरी डालें, और नर्सरी का समय भी हमने बताया था 15 मई और 15 जून, 15 से 20 जून के अंदर नर्सरी पड़ जानी चाहिए
2: जी,
0: और नर्सरी में भी जो है उसके पहले नर्सरी डालने के पहले खेत में DAP या फिर जो है SSP ने सिंगल सुपर फास्फेट, और या फिर सबसे अच्छा रहेगा यदि आप NPK 1919 का जो है प्रयोग कर लें नर्सरी डालने से पहले, और इसके बाद फिर जो है पलेवा करके जिस विधि से आप डालते हों नर्सरी वो डालिए, और नर्सरी 21 दिन से लेकर के 27, 28 या 30 दिन के अंदर की जो है नर्सरी अच्छी मानी जाती है, और इस बीच में रोपाई कर ही लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था। बहुत अच्छा है, फान शाह जी ने प्रश्न किया था। मैं पूछने वाला था कि रोपाई के लिए धान की नर्सरी आखिर कब डाली जाए, और आपने बता भी दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं नर्सरी से ही पूछूं आपको एक और सवाल, तो ये है कि धान की नर्सरी की रोपाई कितने दिन बाद किया जाए, अगर इसको थोड़ा सा और हमारे किसान भाई को समझा दें आप।
0: तो वो अभी मैं बताया
1: जी
0: 21 दिन से लेकर के
1: जी
0: और 30 दिन तक के नर्सरी को रोपाई के लिए अच्छा माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और रोपाई जो है बढ़िया पलेवा करके, पलेवा से पहले उसमें खेत में यानी जैविक खाद यानी गोबर की खाद
1: जी
0: खेत में जितना हो भरपूर मिला लेना चाहिए, इसके बाद फिर रासायनिक खादें तो बाद में, लेकिन पहले जैविक खाद यानी गोबर की खाद बेहद अहम बात है, ज़रूरी है डालना।
1: बिल्कुल, गोबर की खाद आपने कहा बहुत अहम ज़रूरी है।
0: हाँ, तभी बढ़िया पैदावार मिल सकता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है कि पैदावार अगर अच्छी चाहिए तो आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करना होगा।
0: हाँ।
1: अच्छा तुलसीराम मौर्य जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं। देखिए जब धान की बात आती है तो इसके बाद खरपतवार बड़ा हो जाता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे किसान भाई जब सरकार भी रोकती है कि खरपतवार नियंत्रण को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को ज़रा आप बताइए कि आप क्या करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए।
0: देखिए पहली बात तो जब आप रोपाई के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं तो पलेवा दो बार करावें। पहली बार जब पानी भर के पलेवा कर दिया आपने, उसको एक दिन छोड़ करके यानी तीसरे दिन पुनः फिर पलेवा करें और उसमें पानी बराबर भरा रखें, कम से कम 2 से 3 इंच भरा होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: जब दोबारा आप तीसरे दिन फिर पलेवा करें बढ़िया, जिससे मिट्टी एकदम लबलबी हो जाए, तो तब उसमें रोपाई करें और रोपाई 1 इंच की गहराई तक करना चाहिए
1: जी।
0: अच्छा, इससे आपका खरपतवार जो है उससे भी नियंत्रण में आ जाएगा। और दूसरी बात, जब आप पलेवा करके खेत तैयार कर लें तो पानी आप 2 इंच से 3 इंच तक पानी भर लें पलेवा करने के बाद, और उसमें आप तमाम तरह की दवाइयां आ रही हैं आजकल, तमाम तरह की दवाइयां कई कंपनियों की आ रही हैं
1: जी।
0: तो जैसे मसेटी भी कहा जाता है और दवाइयां हैं, तो उन दवाइयों को लेकर के आप उस पानी में छिड़काव कर दें, तो जिस प्रकार की दवा होगी जितने मानक की उस हिसाब से वो दुकानदार आपको बता देगा कि हाँ कितने खेत में कितनी मात्रा छिड़कनी है, तो उस हिसाब से आप छिड़क देंगे तो वो पूरे खेत में एक लेयर बना लेगा और खरपतवार का नियंत्रण एकदम बराबर से हो जाएगा।
1: क्या बात है, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से, कितने पानी में और कब कब पलेवा करना है, क्योंकि देखिए बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन यही फसल को कितना आगे तक जाएगी, कितनी ज़्यादा फलेगी, इस बात पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारे फान शाह जी आपसे पूछना चाह रहे हैं।
2: सर आप जानना चाहेंगे कि सर रोपाई के बाद जो है उर्वरक का जो प्रयोग है कब और कितनी बार किया जाए, मतलब क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं वो यही सोचते हैं, उनके मन में भी सवाल होगा कि जब रोपाई हम कर देते हैं धान की तो हमें कितने दिन के बाद में जो है उर्वरक का जो है वो प्रयोग करना चाहिए, मतलब और सही टाइम क्या है मतलब उसका।
0: देखिए भाई साहब, रोपाई के 7 दिन से लेकर के यानी 10 से 12 दिन के बीच में पहली खुराक उर्वरक की दे देनी चाहिए
2: जी,
0: और उसके बाद फिर उसके 20 से 25 दिन बाद दूसरी खुराक
2: जी,
0: और लास्ट खुराक जो है आप जब बाली निकलने की अवस्था हो, यानी कि बाल मुंह के अंदर आ जाए
2: जी
0: पौधे के उस समय, या बाल हल्का हल्का निकल रहा हो, तो उसमें 0-52-34
2: जी
0: और बोरान
2: जी
0: की मात्रा दुकानदार आपको बता देगा जिससे आप लेंगे, तो उसका आप छिड़काव कर दें
2: जी।
0: जब आप बाली निकलने की अवस्था में इन दोनों दवाइयों का, यानी बोरान और 0-52-34 का आप छिड़काव करेंगे, तो निश्चित है कि दाने एकदम सुडौल, एकदम बालियां भरी हुई और मजबूत दाने, चमकदार दाने मिलेंगे और पैदावार में 1.5 गुने की
2: जी
0: बढ़ जाएगी पैदावार
2: जी। अब सर आते हैं अगले सवाल पर, वो जानना चाहेंगे सर, धान की फसल जो है वो इस समय लगी हुई है, कुछ जो फसल है वो एकदम ग्रोथ भी कर रहे हैं काफ़ी, तो जंगली जो जानवर हैं उनसे कैसे बचाव करें, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं वो नुकसान करते हैं फसल को, मतलब तो उनसे जो है हमारे किसान भाई बहन जो है वो कैसे बचाव करें, मतलब।
0: देखिए, जंगली जानवरों से बचाव के लिए तो मार्केट में तमाम तरह के उत्पाद प्रोडक्ट कई कंपनियां बना के दे रही हैं
2: जी,
0: लेकिन प्रभावी नहीं हो पा रहा है
2: जी।
0: एक ही चारा है कि आप बैरिकेटिंग करें
2: जी,
0: तार लगवाएं, या आजकल अब तो ये जो है एक सोलर से संबंधित सोलर लगा के
2: जी,
0: और उसमें फेंसिंग कर रहे हैं तार लगा के
2: जी,
0: तो उससे क्या एक झटका लगता है जानवरों को, जब उसके करीब में उसमें टच करेंगे
2: जी,
0: तो उनको एक झटका लगता है
2: जी,
0: तो वो फिर दोबारा किसान के खेत में वो उस तरफ मुंह नहीं करेंगे
2: जी।
0: अगर ये आप चाहे इसको कर लें या तार का कटीले तारों का बाड़ बना लें, लेकिन कटीले तारों को भी ये नीलगाय जैसे जानवर फाँद जाते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन ये जो नया आया है
2: जी
0: झटका मशीन जिसको कहते हैं
2: जी,
0: तो ये विशेष रूप से प्रभावी मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इसके संपर्क में आने से जानवर को एक झटका लगता है और वो फिर वहाँ से बहुत दूर भाग जाता है, रुक नहीं सकता है वो
2: जी।
0: इसलिए इसका प्रयोग भी कर सकें तो करें, और किसान रात भर जाग करके पहरेदारी तो नहीं ही कर पाएगा
2: जी,
0: थोड़ी बहुत खेती है एक आध बीघे तो भी नहीं कर पाएगा
2: जी। सर ये झटका वाली जो मशीन है सर, अगर इसको किसान भाई बहन प्रयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि सर जैसे बरसात होता है तो उस समय भी कभी लाइट जो है इसमें या तार ऐसा तो नहीं कि करंट लग जाए, अपने अर्थ उतर जाए, ऐसा भी कुछ सावधानी है कि जिससे बच सकें, मतलब।
0: तो उसके लिए अब वो जो है बना रखे हैं वो लोग,
2: मतलब कटआउट होगा सर,
0: हाँ हाँ बना देते हैं, उससे सिर्फ जो है वो सोलर से चलता है
2: जी,
0: और बिजली से भी चलने वाली झटका मशीनें आ गई हैं मार्केट में
2: जी,
0: लेकिन वो डीसी बना करके वो भी जो है उसमें फैला रही हैं तारों में, तो वो भी झटके देती हैं
2: जी। मतलब कहने का मतलब है कि तार हैं और क्या नाम है बाउंड्री है, सबसे बढ़िया व्यवस्था जो है वो जाल है, जाल भी लगा देते हैं मतलब चारों तरफ से, तो उससे भी फसल की जो है सुरक्षा हो जाती है। अब सर आते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर जानना चाहेंगे कि सर जैसे धान की जो बालियां जब निकलती हैं उस अवस्था में हमारे किसान भाई बहन जो है वो किन बातों का ध्यान रखें, मतलब क्योंकि जब धान जो है इस समय अब ग्रोथ कर रहा है, मतलब ये ग्रोथ करने के बाद में अब ये उस अवस्था में आने वाला है जो 15 दिन बाद हमें लग रहा है बाली देखने को मिल जाएगी धान में। हाँ, क्योंकि सितंबर लग जाएगा, सितंबर से धान में जो है वो बालियां जो है वो पूर्ण रूप से निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगी, उस समय
0: वैरायटी के अनुसार जी जी जो शीघ्र पकने वाली हैं
2: जल्दी जो है कुछ अगेती जो वैरायटी हैं तो उसमें जो है वो बालियां निकलने लगती हैं, तो जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें सर?
0: इसमें जो तीसरी खुराक हमने बताया आपसे 052-34
2: जी
0: और बोरान
2: जी,
0: इनसे कीट नियंत्रण भी होता है और उनको जो है खुराक भी मिलता है, इससे कई फायदे हैं। तो और कोई विशेष ऐसी बात है नहीं
2: जी।
0: हाँ,
2: मतलब और कोई रोग सर जिसे मतलब
0: मैंने उस समय और कोई रोग की बात नहीं, उसके पहले ही आप जब अपने फसल की देख रेख करते हुए संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया है और कीटनाशक का प्रयोग किया है और जो है आप बीज को उपचारित करके डाले हैं, तो ऐसी संभावना बहुत कम रह जाता है
1: जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आपने उसका उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अगला प्रश्न ये है कि आप बालियों की बात कर रहे हैं, बालियां निकलने की अवस्था में क्या किया जाता है, हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: बालियां निकलने की अवस्था में अब कोई ऐसी बात नहीं है, वही जो हमने बताया आपको 052-34, उसके साथ में आप अगर कीड़े मकोड़े या कुछ कहीं दिखते हैं तो आप जो है कीटनाशक, कोई भी कीटनाशक आप उसमें मिला सकते हैं
1: जी, मतलब कोई भी कीटनाशक या जो दवा बताइए आपने उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ,
1: ये बालियां निकलने की अवस्था से जुड़ा प्रश्न था। अब बात आती है तुलसीराम जी की, देखिए हमने धान को समझ लिया, उसका सही समय देख करके बुआई कर दी और समसामयिक कार्य को देखते हुए उसके बाद कटाई आखिर कब की जाए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कब किसान की फसल तैयार है और कब काटने का सही समय है, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं और कैसे करते हैं आप खुद भी इसको?
0: देखिए कटाई के लिए जब फसल पक जाती है, पक जाती है यानी कि दाने पीले हो जाए और मजबूत हो जाए, पौधा भले ही उसमें हरापन हो और खड़ा हो, गिरना नहीं चाहिए।
1: अच्छा, गिरना नहीं चाहिए, ये एक शर्त है।
0: हाँ, जब पेड़ हरा मजबूत रहेगा और दाने पीले पड़ जाएंगे तो समझ लीजिए कि पक गया है,
1: पक गया तैयार है।
0: हाँ, और उसको आप कटाई कर लें और सुखा करके फिर मड़ाई, ने जैसे कटाई कर लिया, आज कटाई कर दिए तो उस समय धूप होने लगती है तो 2-3 दिन में सूख जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, तो उनको फिर जो है मड़ाई कर लेनी चाहिए। और ने जिस विधि से आप चाहे हाथ से पिटाई या मशीन से पिटाई या अब जो मशीन बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं उनसे जो है मड़ाई हो जाती है, तो मड़ाई करके इसके बाद फिर आप बीजों को यानी धान अपने दानों को सुखा लें धूप में, सुखाने के बाद फिर उसका भंडारण कर लें।
1: बिल्कुल। तो भंडारण से जुड़ा यही हमारा आखिरी प्रश्न भी था कि अच्छे भंडारण पर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आप कैसे करते हैं, अच्छा भंडारण कैसे मानते हैं आप?
0: अच्छा भंडारण आप के धान में एक मानक है कि नमी जो है नहीं रहनी चाहिए। जब आपके धान में नमी नहीं रहेगी, एक मानक के मुताबिक ही नमी रहेगी, तो उसमें आपके कोई कीट वगैरह लगने की संभावना नहीं रहती है।
1: जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई हमने बो दिया, सारा काम कर दिया, कटाई भी कर दी, लेकिन चूंकि भंडारण एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है और उसको सही से किया जाना बहुत अहम है। और हमारे गेस्ट श्री तुलसी राम मौर्य जी ने आज बहुत अच्छे से ये पूरे विषय को बताया, कवर किया कि भाई धान में समसामयिक कार्य क्या है और कैसे करना होगा, जिसको लेकर के आप में से कई लोगों ने कॉल्स भी किया और अपना प्रश्न पूछा। हर बृहस्पतिवार हम लाइव और कुछ ऐसे ही साधारण मुद्दों पर लेकर के हाजिर होते हैं अपने किसान भाइयों के लिए चर्चा। आज की चर्चा कैसी रही ये आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद श्री तुलसीराम मौर्य जी आपका कि इतना कीमती समय निकाल करके आप स्टूडियो में आए और इतना बेहतरीन विषय आपने बड़े ही सरलता से हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को और मेरा सभी श्रोताओं को, किसान भाई बहनों को नमस्कार। जय जवान जय किसान।
1: बिल्कुल, जय जवान जय किसान ये नारा जो दिया है अभी हमारे गेस्ट ने, ये हमेशा से सच्चा रहा है और हमेशा ही सच्चा रहने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसी बीच हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे को होस्ट इरफान शाह जी का, आपने भी बड़े ही अच्छे प्रश्न किए इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और चलिए भाई, अब कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम हमको कमेंट करके फटाफट से बताइए। और फिलहाल अगले सप्ताह हम किसी नए विषय के साथ इसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे, चलते रहेंगे। फिलहाल आप ज़रूर सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
7: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना दिल्ली को पार।

0: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
1: जी सर।
0: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
1: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे। और क्या,

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: जाऊंगा।
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.7।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉर्थ सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। अच्छा दोस्तों, जिंदगी भी एक रेलवे स्टेशन जैसी होती है ना, जहाँ हर रोज नए लोग आते हैं, कुछ देर हमारे प्लेटफॉर्म पर ठहरते हैं और फिर अपनी अपनी गाड़ी पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ तो सिर्फ साए बनकर गुजर जाते हैं, तो कुछ यादों की ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं कि सफर खत्म हो जाता है पर वो चेहरा कभी नहीं भूलता। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार करती है। कोई अपनी मंजिल की तलाश में चढ़ा है, तो कोई पुराने शहर की यादें छोड़कर आगे बढ़ रहा है। स्टेशन के इस कोलाहल में भी एक अलग तरह का सुकून छिपा है, जहां हर इंसान अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख रहा होता है। इसी सफर, इन अनगिनत रास्तों और खूबसूरत मुलाकातों का नाम है आज का हमारा शो। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। स्टेशन तो बस एक बहाना है साहब, असल सफर तो दिलों की बात होगी। सो एक बार फिर से नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में।

वेलकम बैक इन योर शो गोना मैसेज मसाला विद योर आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। तो क्या आप लोग तैयार हैं आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में इस सफरनामा पर चलने के लिए? सो गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में ये ट्रेन आ चुकी है, रेलगाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। जिन जिन को गोंडा मैसेज मसाला का सैर करना है वो फटाफट से आके अपनी गाड़ी में, अपनी बोगी पे, अपने सीट नंबर पर, अपने पसंदीदा सीट नंबर पर बैठ सकते हैं और इस गोंडा मैसेज मसाला की महफिल का आज भरपूर आनंद ले सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? दोस्तों, अगला स्टेशन अक्सर वो जगह होती है जहां हम बिल्कुल नए और अजनबी चेहरों से टकराते हैं। कभी ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठा वो अजनबी जो बिना कुछ कहे अपनी एक हल्की सी मुस्कान से आपका पूरा दिन बना देता है, तो कभी कभी अपने टिफिन से एक पूड़ी निकाल कर आपकी तरफ बढ़ा देता है। कभी चाय की टपरी पर कुल्हड़ थामे मिला वो शख्स जो 2 मिनट की बातचीत में जिंदगी का कितना बड़ा सबक दे जाता है जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा पाती। वो हमें बताता है कि मंजिल की चिंता में आज का मजा गवा देना कहाँ की समझदारी है। और हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते वही गहरे होते हैं जो बरसों पुराने हों, लेकिन सच तो यही है कि कभी कभी सफर में हुई छोटी सी मुलाकात दिल पर ता उम्र के लिए अपनी छाप छोड़ जाती है। वो अजनबी चेहरा शायद कभी नहीं मिलता, लेकिन उनकी कही बातें, उनका वो अपनापन और उनका हौसला जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर हमारे साथ चलता है। स्टेशन पर ट्रेन बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, पर उन मुलाकातों का एहसास हमेशा प्लेटफॉर्म पर ठहर जाता है। जरा सोचिए, अगर वो खिड़की वाली सीट पर बैठा अजनबी आपसे बात ना करता तो क्या आज आपके पास वो सुंदर किस्सा होता? शायद नहीं। इसलिए हर अजनबी में एक छिपी हुई कहानी देखने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि अनजाने चेहरे अजनबी रास्ते न जाने कौन किस घड़ी दिल में उतर जाए। एक पल की मुलाकात का असर तो देखिए, जिंदगी भर के लिए वो याद बन जाए। ऐसी ही मुलाकातें हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी सिर्फ रुकने का नाम नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहना और हर नए स्टेशन पर मिलने वाले अनुभवों, एक्सपीरियंसों और संघर्षों को समेटने का नाम है। तो आओ चलो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और ये है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो गोल्डा मैसेज मसाला में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की तरफ। दोस्तों, अगर सफर लंबा हो, अब जैसे कि हम सफर की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं, वक्त का बात की बात कर रहे हैं, तो सफर के साथी को हम कैसे मिस कर सकते हैं ना? एक लंबे सफर को पूरा करने के लिए अच्छे मन के साथ में, अच्छे दिल के साथ में, सुकून के साथ में हमें एक साथी की तो जरूरत पड़ती है। अगर सफर लंबा हो तो अकेले रास्ता काटना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर साथ में कोई ऐसा सफर का साथी हो जो कड़ी धूप में साया और घने अंधेरे में चिराग बन जाए, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी बेहद आसान और सुहाने लगने लगते हैं। जिंदगी के इस लंबे सफर में कई लोग, बहुत लोग आते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पर ही छूट जाते हैं, कुछ स्टेशन के बाद उतर जाते हैं, तो कुछ सिर्फ मौसम सुहाना होने पर आपकी खिड़की के पास आकर बैठते हैं। लेकिन सच्चे हमराही वही होते हैं दोस्तों, जो टिकट खत्म होने तक नहीं बल्कि आपकी अंतिम मंजिल तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जब रास्ते पथरीली हों, जब हिम्मत टूटने लगे, पैर थकने लगे और जब मंजिल धुंधली नजर आने लगे, तब एक सच्ची साथी का सिर्फ इतना कह देना ही काफी होता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और ये शब्द नहीं बल्कि वो अटूट विश्वास है जो डूबती हुई उम्मीदों को फिर से तिनके का सहारा देती है। ऐसे हमराही जिंदगी के सफर की हर थकान को एक पल में मिटा देते हैं। वो आपकी खामोशी को पढ़ते हैं, आपकी मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपी उलझन को बिना कहे समझते हैं और रास्ते का बोझ आधा कर देते हैं। साथ ही साथ चलने का मतलब सिर्फ एक ही ट्रेन में बैठना नहीं या एक ही पटरी पर दौड़ना नहीं, बल्कि एक ही लय में धड़कना भी होता है। जब एक को चोट लगे और दर्द दूसरे की आंखों में हो, महसूस हो, असली हमसफरी वही होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तूफानों में जो हाथ थामे रखे वही तो सच्चा हमराही होता है। तूफानों में जो हाथ थामे रखे वही तो सच्चा हमराही होता है। रिश्ते तो बहुत बनाते हैं दुनिया में, पर जो बुरे वक्त में साथ दे वही अपना होता है। वक्त बदलने के साथ लोग और उनके इरादे भी बदल जाते हैं, पर सच्चा साथी वही है जो हालात कैसे भी हों आपकी ताकत बनकर आपके पीछे नहीं बल्कि ढाल बनकर आपके आगे खड़े रहे। रिश्तों की खूबसूरत तासीर किसी को खोखले वादे या बड़े बड़े दावों में नहीं दे सकते, बल्कि उस मौन और साथ में होती है जो बिना किसी शर्त के हर मोड़ पर निभाया जाए। ऐसे सच्चे साथियों का संभाल कर रखिएगा, सहेज कर रखिएगा, क्योंकि भीड़ से भरी इस दुनिया में रास्ते तो हजार मिल जाएंगे, पर सच्चे हमसफर किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये आज का सफरनामा, मुझे जरूर बताना। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और ये गाना मैं डेडिकेट करती हूँ मेरे सभी फ्रेंड्स को जो इस रेडियो ज्ञानस्थली के मेंबर्स हैं, जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं और जो मेरे सच में कॉलेज के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, उन सबको डेडिकेट करती हूँ। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

सो वंस अगेन वेलकम बैक इन योर शो गुंडा मैसेज मसाला विद योर आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तक हमने सफर, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, इन सब की बात की है ना दोस्तों। तो चलिए आज गोंडा मैसेज मसाला के इस सफरनामा में अब रुक करते हैं मंजिल, रास्ते और सफर के नशे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन आएंगे और जाएंगे, साथी मिलेंगे और अपनी अपनी मंजिल पर बिछड़ जाएंगे। लेकिन ये सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। ये जिंदगी भी तो एक लंबी रेलगाड़ी की तरह ही है, जहां हर स्टेशन पर कुछ यादें उतरती हैं और कुछ नए चेहरे सवार होते हैं। रास्ते चाहे कितने भी पथरीले क्यों ना हो, सिग्नल लाल हो, मौसम का मिजाज सख्त हो, ना हवाएं कितनी भी विपरीत बह रही हो, मंजिल आखिरकार उन्हीं को गले लगाती है जो बिना थके, बिना रुके और बिना हिम्मत हारे लगातार आगे बढ़ते रहने का अटूट हौसला रखते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी मंजिल को पाने की इतनी अंधी दौड़ में होते हैं कि रास्ते की खूबसूरत नजारों को देखना ही भूल जाते हैं। उन पटरियों के किनारे खिले छोटे छोटे फूल, पेड़ों की सौंधी हरियाली, खिड़की से आती ठंडी हवा और उसके साथ में हवा के झोंके और क्षितिज पर ढलते हुए सूरज के रंगों को महसूस करने की फुर्सत कहाँ ही बचती है हमारे पास। कभी कभी सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ लगता है कि सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, आगे केवल गहराई और खाई है या कोई बंद दरवाजा, लेकिन हकीकत में तो वो किसी रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि एक नए लेसन का, एक नई दिशा का और एक नए मोड़ की खूबसूरत शुरुआत है। गिरना, गिरकर संभलना, कपड़ों से धूल झाड़ना, चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान सजाना और फिर से दोगुनी ताकत से आगे बढ़ जाना, यही एक सच्चे मुसाफिर की असली पहचान है। रास्ते की दुश्वारियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के उस हीरे को तराशने आई हैं, उसको, उस इंसान को बाहर निकालने आती है जो हर चुनौती से टकराने का मजा जानता है। मंजिल पर पहुंचकर मिलने वाली खुशी अपनी जगह बेहद खास होती है, लेकिन यकीन मानिए, सफर का असली नशा, असली सुकून तो उन अनदेखे रास्तों में ही छिपा होता है। और ये सफर ही तो है जो हमें रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा परिपक्व, थोड़ा संवेदनशील और थोड़ा और समझदार और अंदर से बेहद मजबूत बनाता है। हर मोड़ एक नया सबक है, हर कांटा एक नया अनुभव। जो रास्तों से इश्क कर ले, वही मंजिल का असली हकदार है। रुकना नहीं है तुझे, अभी मंजिल बहुत दूर है, रास्तों की दुश्वारियों से डरना कैसा, जो गिरकर भी संभलना जान ले, जिंदगी का असली मुसाफिर वही जरूर है। ताउम्र इस बात को याद रखिएगा कि मंजिल सिर्फ एक पड़ाव है, असली जिंदगी तो इस सफर की रवानी में है। इसलिए अपनी मंजिल की तरफ पूरे आत्मविश्वास से बढ़ते रहिए, हर छोटे बड़े रास्ते का आनंद लीजिए, ठोकरों को अपना उस्ताद मानिए और अपनी जिंदगी के इस बेहद खूबसूरत अनमोल सफर को पूरी शिद्दत और जुनून और जिंदा दिली के साथ जिए। चलिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। हरीशचंद सविता जी और धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, महेंद्र दीपेन राजस्थान से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, विजय पाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से, दादा यादव बजाजमेर गोंडा से, स्टे ट्यून्ड। अब एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा।

फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो नमस्ते मसाला में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, अभी तक तो हमने पता नहीं बहुत सारी बातें की, रास्ते की, यादों की, एवरीथिंग की। लेकिन अगर सफरनामे में हम आए हैं, वो भी गोंडा मैसेज मसाला की रेलगाड़ी में बैठ के, तब फिर भूली बिसरी यादें ना याद हो तो फिर ये महफिल सोना लगेगा ना। दोस्तों, सफर में कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन की पटरियां तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन किसी बहुत पीछे छूटे हुए छोटे से स्टेशन पर ही अटका रह जाता है। और इसे कहते हैं हमारी जिंदगी के सफर का लास्ट एंड, इसे कहते हैं हमारी जिंदगी के सफर का लॉस्ट एंड फाउंड डिब्बा, यानी हमारी वो भूली बिसरी यादें जिन्हें हम भाग दौड़ में कहीं पीछे भूल आए थे, पर वो कभी खोई नहीं थी। कभी कभी जब ट्रेन किसी दूर दराज की सुनसान पटरी पर धीमी होती है, खिड़की के बाहर घना अंधेरा छाया होता है और बस पटरियों की छुक छुक सुनाई देती है, तब खिड़की की दरार से आता वो ठंडा झोंका सीधे दिल को दस्तक देता है। वो झोंका हमें पुरानी यादों के उस धुंधले गलियारों में ले जाता है, जहाँ कुछ अधूरे खत, कुछ बिन कहे वादे, स्कूल के दिनों के वो पुराने दोस्त और किसी अपने के अपने का बीच राह में छूट जाना आज भी हमारा इंतजार कर रहा होता है। हम चाहे कितने भी तरक्की कर लें, कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी ज्यादा समझदार हो जाएं, पर बचपन के उस पहले रेल के सफर की यादें आज भी सबसे खास होती हैं। वो दौर याद कीजिएगा जहां 1 रुपए में मिलने वाली संतरे की गोली, लंच बॉक्स से आती पूरी अचार की खुशबू और लोअर बर्थ या खिड़की वाली सीट पर सीट पाने के लिए भाई बहनों से की गई वो मासूम लड़ाई, वो भले ही छोटी बातें थीं, लेकिन आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में वही यादें हमारे होठों पर एक सच्ची और हसीन मुस्कान लेके आती है। जिंदगी के इतने लंबे सफर में हर लम्हे को सहेज कर रख पाना तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ किस्से रास्ते को और बढ़िया बनाते हैं, कुछ किस्से रास्ते की धूल के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो कुछ चुनिंदा यादें दिल के किसी गहरे और महफूज कोने में ठहर जाती हैं, वही तो हमें एहसास दिलाती है ना कि तमाम मुश्किलों के बाद भी हम मुस्कुराना भूले नहीं हैं। वो यादें कोई बोझ नहीं है दोस्तों, बल्कि एक राह की थकान मिटाने वाली ठंडी छांव होती है। कुछ पन्ने पुराने कागज के आज भी महकते हैं। बीते दिनों के साए खामोशी में बहते हैं। ट्रेन तो निकल गई आगे कई मील दूर, पर हम आज भी उसी पुराने स्टेशन पर ठहरते हैं। अगर आपके पास भी आज ऐसी ही कोई भूली बिसरी याद, किसी अपने का छूटा हुआ पुराना किस्सा या बचपन का कोई हसीन सफर छुपा रखा है, तो आज का वक्त आ गया है। उसे दिल की उस पुरानी अटैची से बाहर निकालिए और जरा धूल झाड़िए और हमारे साथ इस सुहाने सफर का पूरा मजा लीजिए। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, आते हैं फिर से वापस आपके अपने गुंडा मैसेज मसाला के सफरनामा की महफिल में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ताला शो में आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आज हम गोंडा मैसेज मसाला के सफर में हैं रेलगाड़ी पर, और इस सफरनामे में हम चलते जाएंगे, भीगते जाएंगे बातों से, जज्बातों से और हालातों से। और दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं सफर के उस सबसे चुलबुले और खास पड़ाव पर, जिसके बिना कोई भी सफर, चाहे वो भारतीय रेल का हो या फिर इस लंबी जिंदगी का, कभी पूरा ही नहीं हो सकता। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब वक्त हो गया है चाय, चर्चा और चुस्की का। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब इंजन अपनी पूरी थकान के साथ जोरदार सीटी बजाकर रुकता है और कुल्हड़ की गर्मा गर्म और कड़क चाय हाथ में आती है, तो सच मानिए साहब, पूरे सफर की थकान एक अकेली चुस्की में हवा हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली वो मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय सिर्फ एक साधारण सी, एकदम सिंपल सी चाय, सिंपल सी पीने वाली कोई चीज पे पदार्थ नहीं होती। वो तो अजनबियों को

भर में पक्का दोस्त बनाने का और दुनिया का सबसे बड़ा जादुई जरिया है। जी हाँ, चाय। जरा सोचिए, ध्यान लगा के सोचिए, दो बिल्कुल अलग विचारों के लोग, दो अलग अलग शहरों के मुसाफिर, जो एक मिनट पहले एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, बस हाथ में एक एक कुल्हड़ चाय आते ही बात शुरू हो जाती है। फिर चाहे बात देश की गर्मा गर्म राजनीति की हो, क्रिकेट के आखिरी ओवर की हो, या फिर जिंदगी के गुल फलसफे की हो, ऐसी जबरदस्त चर्चा जमती है कि किलोमीटर बीत जाते हैं और कब मंजिल आ जाती है समय का पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, चाय सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, वो हमें सिखाती है कि जिंदगी की इस आपाधापी में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, थोड़ा सा ठहरना, एक लंबी सांस लेना और चाय की एक छोटी सी घोट के साथ उस लम्हे को जीना कितना जरूरी है। जब बातें दिल की दिल से निकलते हो और चाय एकदम कड़क हो, तो रास्ते की बड़ी से बड़ी मुश्किल और लंबा रास्ता भी बेहद आसान और सुहाना लगने लगता है। एक कुल्हड़ चाय और एक कुछ मीठी सी बातें, एक कुल्हड़ चाय और कुछ मीठी सी बातें, यूं ही कट जाती हैं सफर की लंबी रातें, ना शिकवा ना गिला किसी मोड़ पर, जब अपनों की चुस्की में घुल जाएं बरसातें, तो उठाइए अपना कुल्हड़, मारिए एक कड़क चुस्की और बताइए कि आज आपके स्टेशन की चाय आपके लिए क्या नया किस्सा लेकर आई है। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, मिलेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। लेकिन उसके पहले शिवम पांडे का कहना है कि उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। हर मत भेद विरोध के बाद आपको ही दिल बड़ा करना पड़े तो समझ ले कि आप छोटे दिल वालों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। वाह, बहुत खूब, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो इम्तियाज अहमद जी। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

again, welcome back in your show, Gonda Mess and Masala, with your artist Simple, who is not so simple. और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नाजिया अंसारी, आपका स्वागत है। और चलिए चलते हैं अपनी फरमाइश, अपनी गोंडा मैसेज मसाला की सफरनामा। के तरफ। जी हाँ दोस्तों, सफर कितना भी सुहाना हो, शाम ढलते ही ट्रेन को अपनी आखिरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर रुकना ही पड़ता है। आज की हमारी इस रेडियो की यात्रा का ये खूबसूरत कारवां भी अब अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका है। सो भूली बिसरी यादों के धुंधले गलियारों से गुजरते हुए, बचपन के संतरे वाली गोलियों को याद करते हुए और प्लेटफॉर्म की कड़क चाय के साथ अजनबियों को दोस्त बनाते हुए, समय कब पंख लगा कर उड़ गया पता ही नहीं चला। सो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि हम अपनी अपनी अटैचियां समेटें और खिड़की के शीशे नीचे करें और एक दूसरे से मुस्कुराकर विदा लें। लेकिन याद रखिएगा, ट्रेन का सफर खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि रास्ते रुक गए हैं। जिंदगी की पटरियां बहुत लंबी हैं और ये कल फिर किसी नए मोड़ पर, किसी नए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मुड़ेंगी जरूर। जो यादें हमने आज इस सफर में सहेजी हैं, वो आने वाले दिनों की थकान मिटाने का काम करेंगी। हम भले ही अपने अपने शहरों में उतर जाएं, अपने अपने कामों में उलझ जाएं, पर दिल के किसी कोने में इस सफर की खनक और कुल्हड़ की महक हमेशा ताजा रहेगी। सफर के इसी फलसफे, जुदाई के दर्द और फिर से मिलने की उस अटूट उम्मीद को पिरोते हुए महान शायर अहमद फराज साहब की ये बेमिसाल और मशहूर नज्म सीधे दिल पर दस्तक देती है। उनका कहना है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अगर वो शेरे चमन को निकले तो दिलकशी का गुमा ना हो कि फूल सारे झुका के सर को गुजरते खार देखते हैं। सुना है रात उस चांद सुना है रात उसे चांद तकता रहा, सितारे बामिये बाम उतर के देखते हैं। अगरचे शहर में उस जैसा कोई दूसरा नहीं, पर हम भी तो अपनी आंखों के हुनर देखते हैं। रवानी सफर में जो छूटे हम सफर तो नहीं, मगर जो दिल में रह गए वो बिछड़ के कहां देखते हैं। वो पास आए तो ठहर जाती हैं धड़कने अपनी, जो दूर जाए तो फिर हम पलट के देखते हैं। करीब आने की ख्वाहिश में जल रहे हैं चिराग, मिलेगी फिर कभी मंजिल ये सोच कर देखते हैं। फराज साहब की इन लाइनों की तरह भले ही आज हमारी ये राहें अलग हो रही हैं, लेकिन उम्मीद का वो चिराग जलता रहेगा जो हमें कल फिर इसी मोड़ पर ले आएगा। अपनी खिड़की से बाहर चमकते हुए तारों को देखते रहिए, पुरानी यादों की अटैची को सीने से लगाए रखिए और अपने होठों की मुस्कान को कभी भी फीका मत पड़ने दीजिए। मैं हूँ आपकी हमसफर, मैं हूँ आपकी दोस्त, मैं हूँ आपकी हमनवा। अब आपसे चाहती हूँ रुखसत, अपना, अपने सपनों का और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के इस हसीन सफर का हर लम्हा जी भर के मजा लेते रहिए। अलविदा, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए। आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के लिए।

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

सुनते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में आप सभी की फरमाइशी गीतों के।

कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

दौड़ जाते हो, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया उषा कश्यप जी की फरमाइश पर, जो हमको सुनती हैं गोंडा से, फिल्म का नाम खिलौना, और बहुत ही बेहतरीन अदायगी और बहुत ही प्यारा संगीत और गीत और एक

अब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले की ओर, जिसका नाम है बहराइच, और जहाँ से हमको सुनते हैं प्रीति शुक्ला जी। कल रक्षाबंधन का पर्व है और आज कहती हैं रखिया बंधा लो भैया।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
2: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
2: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
2: नहीं नहीं, तो आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
2: चलिए
0: चलिए चलिए।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199682919888 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9775131687 9770910 9100 और 9779810321617 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
3: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
4: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
3: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
6: Discussions are expected. दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी। स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल
1: रिलेशनशिप। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
7: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
8: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
1: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
9: रजनीभाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
1: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
11: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
12: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
14: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी

जी हाँ, और अब ये प्यारा सा गीत जो अरविंद मौर्या जी लेकर आए हैं और सोनिया तिवारी जी को डेडिकेट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत, ये सुनिए अरविंद मौर्या जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, ये बिल्कुल कोई बात नहीं है और ये बात होनी भी नहीं चाहिए। चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ। दिनेश धर दुबे जी हमारे साथ हैं और दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बहुत ही प्यारा सा गीत ये दिनेश धर दुबे जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, ये वास्तव में जादू करने वाला ही गीत है भाई। और अब चलते हैं भाई महेंद्र दीपेन जी, जो उनको सुनते हैं राजस्थान से। उनकी फरमाइश है, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, शराबी फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत। पर्दे पर है अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रदा।

अरे साहब, लोगों को कहने दीजिए कि आप शराबी हैं। वास्तव में नशा शराब में होता तो नास्ती बोतल चलते हैं भाई। अपनी बहुत ही प्यारी सी श्रोता श्रीमती सविता शास्त्री जी की तरफ, और कल रक्षाबंधन है और आज रक्षाबंधन गीत ये गाती भी हैं तो बहुत शानदार गाती हैं, चुनिंदा गीत गाती हैं, और चुनती भी हैं तो बहुत चुनिंदा गीत चुनती हैं। आज उन्होंने गीत चुना है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज़ न लूँ। काजल मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत, मुझे भी बहुत पसंद है।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत। अब चलते हैं भाई अनिल शास्त्री जी की तरफ, चरण स्पर्श आपको। और गीत है ये, दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। बहुत ही प्यारा सा गीत अनिल दादा की तरफ।

0: जी हाँ, और एक महत्वपूर्ण सूचना, एक खुशखबरी है आप सभी के लिए। अगर आप सुन रहे हैं तो कल रक्षाबंधन का बहुत ही विशेष पर्व है। इस दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, शायद उन सब नातों में सबसे पवित्रतम जो रिश्ते हैं वो भाई और बहन के भी होते हैं। तो वर्ष में एक दिन की प्रतीक्षा रहती है, और आज अगर कोई राखी का स्पेशल गीत गाना चाहता है रक्षाबंधन के इस विशेष मौके पर, क्योंकि कल मेरा विकाफ रहेगा, तो अगर आप चाहें तो रक्षाबंधन से डेडिकेटेड, रक्षाबंधन को समर्पित करता हुआ कोई भी गीत आप बहारे गज़ल में सुना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास है कोई गीत तो हम करेंगे आपकी प्रतीक्षा, हम गज़लें बजाएंगे। अगर आपका फ़ोन आ जाएगा तो रक्षाबंधन पर प्यारा सा गीत हम आपसे ज़रूर सुनेंगे आज रक्षाबंधन के विशेष पर्व पर। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अगर आप गीत सुनाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल ये प्यारे से गीत ने सुना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। और अब चलते हैं भाई अपने इम्तियाज भाई साहब की तरफ, और उनकी फरमाइश है कुछ ये।
1: आके मिलो डार्लिंग,

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी, बात करते हैं रिश्तों की। एक जिंदगी में शायद रिश्ते ही हैं जिसके लिए इंसान जीता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम चुनते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर वाला चुनकर भेजता है। तो आज के इस शो को हम करने जा रहे हैं कालीन का प्रोग्राम। कल रक्षाबंधन का पावन सा पर्व है। अगर आपके पास कोई गीत है जो बहन से बेटी से ऐसा कोई संबंधित है, तो रक्षाबंधन की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और अगर आप गाना चाहें तो आज के शो को हम कर सकते हैं कालीन, क्योंकि कल हमारा वीक ऑफ रहेगा। चाहते हैं रक्षाबंधन आज अपने परिवार के साथ मनाएं, और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 हमारा परिवार है। और आइए, हमको लगता है मैंने कहा नहीं तब तक फोन आ चुका, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: अरे अरे, क्या बात है क्या बात है, मतलब अगर मैं गलत नहीं, हाँ हाँ दे, मतलब ये जो आपकी प्यारी सी आवाज है ना, वो हमको बता देती है कि आप गोरखपुर से ही बोल रही हैं।
1: तो
0: कल रक्षा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और कल हमारा वीक ऑफ है।
1: जी जी।
0: तो भाई हम कैसे मना पाते, तो हमने कहा भाई हमारे श्रोता, कल हम रहेंगे नहीं रक्षाबंधन में, हमारा वीक ऑफ रहेगा, तो क्यों ना आज के ही दिन को मतलब रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कुछ बेहतर कर लिया जाए।
1: जी बिल्कुल, साल में एक बार ये त्योहार आता है।
0: और आपने गीत भी बहुत अच्छा सुना था आज की, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रकम।
1: जी जी
0: हाँ, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ तो कुछ खास है, क्योंकि अभी तक मेरे हाथ की जो पिछले साल की राखी बंधी हुई थी वो अभी भी बंधी हुई है। वो मैं साल भर राखी बांध कर रखता हूँ, मेरी बहन ही आती है फिर वही खोलती है और फिर बांधती है। लोग पूछते हैं, हाँ लोग पूछते हैं कि आपकी राखी साल भर कैसे चल जाती है, तो मैं कहता हूँ ये मोहब्बत का जादू है। तो मुझे लगता है भाई और बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होता है।
1: बहुत ही अच्छी, ये साल में एक बार मैंने, वो तो हमेशा ही रहता है भाई बहन का प्यार, लेकिन उसको इजहार करने के लिए समाज के सामने ये ऐसा दिन चुना गया है जिसमें मेरे ख्याल से शायद ही कोई बहन होगी जो अपने भाई को याद न करती हो।
0: जी सही बात है।
1: और मुझे ताजुब हो रहा कि आपकी मतलब ये प्रेम ही है आपका बहन के प्रति, कि आपकी कलाई में इतने दिनों तक राखी रहती है।
0: मतलब अभी ये अगर आप कहिए तो मैं इसको व्हाट्सएप भेज सकता हूँ।
1: नहीं मुझे आपकी बातों पे पूरा विश्वास है।
0: तो मतलब
1: और बहुत ही अच्छा है, मैं तो उस बहन की मतलब जो मन है उनका हृदय है ये सोच रही हूँ उनको कितना अच्छा लगता होगा ये देख कर।
0: नहीं तो हम दोनों भाई बहन कम दोस्त ज्यादा है।
1: हाँ ये तो ये ही रिश्ता ज्यादा टिकता है।
0: हाँ
1: भाई बहन कम दोस्त ज्यादा हो, ताकि अपने सुख दुख की बातें खुल कर उनसे बोले। मेरा भी कुछ ऐसा ही रिश्ता अपने भाइयों के साथ में है। और क्योंकि इस साल मैं नहीं जा पाई हूँ छत्तीसगढ़, तो भाइयों का भी फोन आया है मेरे पास में, और आपके कार्यक्रम के बारे में सुनी कि आप ऐसा प्रोग्राम रख रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगा मैं गा ही नहीं पाऊंगी, गाते समय ही रोती मुझे भाई को याद करके। अभी कुछ मिनट पहले उनसे बात की है भाइयों से
0: जी,
1: तो क्योंकि मेरे पांच पांच भाई हैं।
0: ओहो क्या बात है भाई।
1: और मैं छोटी हूँ तो मुझे बहुत प्यार करते हैं सभी भाई
0: जी।
1: तो अभी भी उनका फोन वगैरह है, तो मैं बताइए आज किसी कारण से मैं नहीं आ पा रही हूँ, दूर है, पास होता तो मैं चली आती। तो बड़े प्यार से उनसे मेरी राखी रखी है और बोले है कि हम कल बनवाएंगे इसे।
0: जी क्या बात है, आपने राखी बांधी है।
1: उसे मैं भी बहुत याद करी। और आज ये राखी में ये गाना मेरे को इतना अच्छा लगता है, ये काजल फिल्म का, कि वास्तव में अगर कोई चीज भगवान को देना चाहे तो मेरे ख्याल से शायद ही बहन कोई लेना चाहे।
0: जी जी
1: भाई के बच्चे। हाँ, तो आज मैं उसी गाने को थोड़ा गुनगुनाती हूँ। हाँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छे से ये पूरा हो जाए।
0: नहीं, अच्छा।
1: और आपके माध्यम से मेरे भाई अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी कल के लिए मैं मतलब बता दूँ कि मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। और अपने साथ ही मुझे आस पास पाएंगे कल, क्योंकि वहाँ पर मेरी एक और बहन है जो मेरे तरफ से बांधेगी।
0: अरे वाह, क्या बात।
1: जी, तो सुनाती हूँ लगाना।
0: जी जी
1: जी, शायद अभी कुछ
0: देर
1: पहले प्ले
0: भी
1: किया था।
0: जी
1: हाँ, जो अपनी आवाज
0: लेके जाती हूँ, आप कुछ भी गाएंगे तो बहुत अच्छा
1: गाएंगे। नहीं सर, ऐसी जो बात नहीं है, किसी किसी की आवाज एहसास जो होता है ना,
0: एहसास आपकी आवाज को अच्छा बना देता है।
1: नहीं, आपकी भी आवाज है, आपकी आवाज भी बहुत खींचती है।
0: अरे नहीं, हम तो बस आप लोगों से सीख रहे हैं।
1: नहीं, कल मैं सुन नहीं पाई हूँ आपका गाना, मैं सुनूंगी जरूर आपसे।
0: अरे नहीं, हम गाते ही नहीं, हम तो गुनगुनाते हैं।
1: आज तो आपको बहनों के लिए भी कुछ गाना पड़ेगा।
0: जी जी,
1: भले ही जो नहीं, लेकिन आप जरूर गाइएगा, शुरुआत मैं करती हूँ। ठीक है, गाएं सुनाएं।
0: जी जी जी
1: जी। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन,

वतन तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न ले, तेरे तेरे की महकती हुई लड़ियों के लिए

0: रतन तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज़। धन्यवाद सर।
1: क्या क्या क्या बात है, हमने कहा था आप जो गाएंगी वो बहुत अच्छा गाएंगी और आपने वास्तव में बहुत अच्छा गाया। बहुत जी। और पतिदेव के व्हाट्सएप पर मैंने अपनी राखी भेज दी है, आप देख लीजिए। तुरंत आपसे बात हो रही थी तो मतलब लोग ये कहते हैं कि ये साल भर राखी चलती कैसे है, तुम कहते हैं ये पता नहीं कैसे और ये मोहब्बत का असर है।
0: जी जी
1: तो वो चल जाती है।
0: ठीक है, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी बहनों को कल के लिए बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ और भगवान करे भाई बहन का प्यार आपकी ओर से भी आपकी बहन को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, शुभाशीर्वाद।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपने शुरुआत करके दिन अच्छा कर दिया।
0: थैंक यू।
1: चरण स्पर्श। जी हाँ भाई, तो ये श्रीमती सविता शास्त्री जी, और क्या बात है। देखते हैं फिर हमारे पास कोई और आ चुका है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: अरे नमस्कार, कैसी हैं आप? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हैं जो कल होंगी।
2: जी, जो कल हम उगेंगे ऐसा कह सकते हैं।
1: कल पूर्णिमा है तो मतलब हमको लगता है कि आप वही हैं।
2: जी जी, तो हमने अभी तो देख के दर्शन देना शुरू कर दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने।
2: जी कैसे हैं आप?
1: आशीर्वाद आपका।
2: चलिए मस्त, एकदम स्वस्थ,
1: एकदम एकदम।
2: जी तो कल जम के राखी का त्योहार जो एंजॉय करिएगा आप।
1: बिल्कुल, जम के राखी का त्योहार एंजॉय करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि आप भी आइए और बांध दीजिए।
2: सर मैं सच बताऊँ तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है आने की, क्योंकि वजह एक नहीं तीन है।
1: चलिए तो हम पहुँच जाएंगे।
2: अच्छा, लेकिन हम नहीं रहेंगे ना। अब मैं वजह बता देती हूँ पहले आपको।
1: जी।
2: तो पहली वजह तो ये है कि दीदी जो है आएंगी बच्चों को राखी बनवाने के लिए।
1: जी
2: ठीक है। फिर हम जो है भैया आएंगे मम्मी को लेने के लिए, मामा के घर की मैं बात कर रही हूँ।
1: जी।
2: तो कल हम भी मम्मी के साथ मामा के घर जा रहे हैं।
1: जी आप, कोई बात नहीं, भाई भाई का प्यार हमेशा बना रहता है, रक्षाबंधन के बाद किसी दिन बनवा लेंगे।
2: चलिए ठीक है, फिर पेंडिंग रहा। वैसे आपका गुजिया भी पेंडिंग है जो आपको मुझे खिलाना है।
1: जी बिल्कुल पेंडिंग है, जरूर खिलाएंगे आपको।
2: चलिए सर, तो हम राखी के मौके पर कल राखी को भी डेडिकेट करते हुए बहुत प्यारा गीत है, हम वो सुनाते हैं आपको।
1: जी।
2: और सुन के बताइएगा कैसा है।
1: अरे आप जो भी गाएंगे वो अच्छा गाएंगे।
2: चलिए धन्यवाद उसके लिए। तो शुरू करते हैं सर।
1: निसंदेह।
2: इसे समझो ना, हाँ इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, कल आप ही हैं लेकिन कल के बजाय आप आज ही छा गई मेरी राखी का मतलब।
0: जी सर, और दो लाइन उन बहनों और भाइयों के लिए जो बहुत लकी हैं जिनके पास भाई है, और वो भाई बहुत लकी हैं जिनके पास बहन है। क्योंकि मैं नहीं हूँ लकी, इसलिए वो मैं वो गीत सुनाना चाहती हूँ। जी तो जन्म

दिल की हर बाजी हम जीत लेंगे, आए जाए कोई मौसम खुशी हो या हो गम, आए जाए कोई मौसम खुशी हो या हो।

0: पता नहीं लम्हों का है ये वास्ता है रूह का राबता। थैंक यू सो मच सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला गीत गाया आपने। और आपको रक्षाबंधन की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा।
1: जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद।
0: जी सर, ओके सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार। जी भाई, तो ये पूर्णिमा जी हमारे साथ, और इसे समझो न रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। और वास्तव में अगर हम देखें तो सच्चाई देखें तो रिश्तों के लिए ही तो इंसान है साहब इस दुनिया में। एक रिश्ते ही तो हैं जो हमको ज़िंदा रखते हैं, हमको जिलाए रखते हैं, और एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं। वास्तव में कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। मतलब कितनी भी दरारें पड़े, कितने भी संबंध खराब हों, लेकिन दो भाइयों के बीच भी हों, लेकिन अगर खून अपने खून को पुकार लेता है तो वास्तव में ये सच है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं, अभी तक आपने सुनाया भाई हमको बहुत प्यारा सा गीत, अब हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी आपको कोई प्यारा सा गीत सुना दें। जी हाँ, तो आइए अब आपको ले चलते हैं। मूवी का नाम अनजाना है और गीत आपको पसंद आने वाला है, ऐसी हमको उम्मीद है। जी हाँ, तो रक्षाबंधन के इस विशेष उपलक्ष्य पर आपको सुनाते हैं रक्षाबंधन का आप ये प्यारा सा गीत। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहते हैं?
3: बेल आइकन को दबाना न भूलें।

जी हाँ, तो कल रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमने आधे घंटे का समय अपने कार्यक्रम का रक्षाबंधन को दिया और अब लौटते हैं भाई अपनी गजलों की दुनिया में, बहारों की दुनिया में। आज जिस शायर की बात करेंगे, उन्होंने रिश्तों के हर पहलू को छुआ और उनका नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। एक ऐसा नाम जो उर्दू जगत की दुनिया में बहुत ही प्यार से लिया जाता है, बहुत सम्मान के साथ। पता नहीं कितने शागिर्द हैं जो प्रोफेसर वसीम बरेलवी पर पीएचडी करते हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। उन्होंने कहा कि मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया छोड़कर, मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया छोड़कर, जब तलक रख दूं न सब टूटे हुए दिल जोड़कर। उन्होंने कहा कि लहराती बलखाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, लहराती बलखाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। दो दो पंक्तियों में बहुत आसान शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देने का हुनर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के पास है। उन्होंने कहा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, एक एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। उन्होंने कहा कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे। उन्होंने कहा कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चराग जला दूं जहां अंधेरा है। जी हाँ, बात करेंगे प्रोफेसर वसीम बरेलवी की, लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं ये प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। और जगजीत सिंह की जितनी भी गजलें हैं उन गजलों में ये गजल बहुत बेहतरीन रूप से शुमार होती है, आप सभी ने सुना होगा। आइए आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारी सी गजल, होठों से छू

0: जी हाँ भाई, हमको लगता है कालीन प्रोग्राम में हमारे साथ कोई और जुड़ चुका है। देखते हैं हमारे साथ कौन है, किसकी आवाज है। हेलो,
1: शुभ संध्या मनु जी।
0: हाँ अनूप जी, मैं गलत तो नहीं हूँ?
1: नहीं नहीं सर, सही है आप।
0: मतलब इतना सटीक शुभ संध्या बोलने वाले से काफी है।
1: जी।
0: और कैसे हैं आप? आपको रक्षाबंधन की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं।
1: आपको भी सर बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी जितनी बहनें हैं मैं सबका नाम लेना चाहूंगा, मंजू दीदी, रेणु दीदी, मीनाक्षी दीदी आवास विकास, और निशा बहनी, और मेरी एक साली है, मेरी वाइफ की बहन है, वो भी मेरे बहन तुल्य है, उसको भी रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं सर।
0: जी, तो मतलब कल आपकी पॉकेट काफी खाली होने वाली है।
1: जी।
0: चलिए, हमारा और आपका गम एक है।
1: जी जी।
0: तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और रक्षाबंधन।
1: जी।
0: तो
1: कम से कम सर इस बात का भी एक गर्व मिलता है कि हम लोग उस सनातन धर्म का हिस्सा है
0: जी,
1: जहाँ पर हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ है।
0: कुछ ना कुछ है, बिल्कुल सही कहा।
1: जी।
0: तो कौन सा गीत सुनने वाले हैं आज?
1: सर फूलों का तारों का सबका कहना।
0: हाँ, क्या बात है।
1: कल आरके जी ने सुनाया था
0: जी,
1: आज हमने कहा एक बार हम गुनगुना दें।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैं शुरू कर रहा हूँ सर।
0: जी।
2: ला ला ला,
1: फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है,

में प्यार की है प्यार, ला ला ला ला ला ला ला ला, ये ना जाना दुनिया ने क्यों है तू उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यार, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000ों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर तब

बांधना मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, देखो।

बस कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है।

0: सच से गुजरते नहीं है, सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जानी चाहिए आपके लिए, क्या बात है। बहुत ही शानदार ढंग से आपने ये गीत पिरोया है, मतलब निभाया है। फूलों का
0: गाना मुझे पसंद बहुत है, बहुत पसंद है मुझे
1: भी बहुत पसंद है ये, और एक मोहन बहनों के लिए मेरे भैया, बहुत अच्छा गीत
0: जी सर, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, और शुरू से मतलब जब से मतलब बहुत संभाला, बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं ये गाना, हरे रामा हरे कृष्णा मूवी का
1: जी जी,
0: और छोटा था तब सुनता था, तब भी एक इमोशनल टच होता था, अब तो खैर बड़ा हूँ तो हाँ, जाहिर सी बात तो है कि इमोशंस बढ़े ही हैं।
1: सही कहा
0: जी।
1: एक बार पुनः आपको राखी की, रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी सर बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान संसार की समस्त बहनों को खुश रखे, सुखी रखे, उनकी मुस्कुराहट कभी उनके होंठों से गायब ना हो, और कभी किसी आक्रांता, किसी नकिस्ट व्यक्ति की निगाह उन पर ना पड़े।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: हेलो हेलो,
2: हाँ नमस्ते मनु भाई।
1: अरे क्या बात है, कल आपकी कमी खल गई थी लेकिन आज आपने पूरी कर दी।
2: चलो
1: कल आप,
2: चलो मौके से आज
1: कल आप कहाँ गायब थे पहले ये बताइए।
2: अरे बस बिजी था बस।
1: अच्छा मतलब फोन लग नहीं पाया भाई, क्षमा प्रार्थी।
2: अरे कोई बात नहीं, वो तो भाई अच्छा प्रोग्राम हुआ इसके लिए क्या होता है।
1: नहीं अच्छा प्रोग्राम हुआ लेकिन आपकी उपस्थिति नहीं हो पाई।
2: अच्छा चलो भैया, एक छोटा सा गीत है
1: जी,
2: आपको शुभ रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, हमारी सभी माताएं बहनों को मेरा प्यार भरा राखी का शुभकामनाएं
1: जी।
2: तो शुरू कर रहे हैं भैया।
1: जी निसंदेह निसंदेह।
2: हम बहनों के मेरे भैया, आता है हर एक साल में, आता है हर साल में, आज के दिन में क्या भी रहूं चले आना वहाँ, हर हाल में चले आना वहाँ, हर हाल में। हम बहनों के मेरे भैया, आता है अरी एक साल में, चले आना वहाँ, हर हाल में। मैं हूँ भोली बैरी जमाना, मैं हूँ भोली बैरी जमाना, भैया मेरी लाज बचाना, ऐसा न हो के मैं तड़पूं बुलबुल जैसे जाल में, चले आना वो हर हाल में, आज के दिन में जा भी रहूं चले आना हर हाल में, चले आना वो
1: भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, आपको रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: जितना आगे भी थोड़ा याद है लेकिन अब कहा चलो समय कम है थोड़ा, भैया को कोई कुछ समय मिल जाए।
1: वास्तव में भाई बहुत प्यारा गीत गाया आपने।
2: अब एक तो छोटा सा लोरी है बच्चों के लिए तो बहुत होगा।
1: अरे बिल्कुल लोरी, क्या बात है भाई, दादा है तो लोरी तो बनती है।

0: जागू तुम सो जाओ, मैं जागू तुम सो जाओ। सुख सपनों में खो जाओ, मैं जागू तुम सो जाओ। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदले के एक दिन तक दीर हमारी। उस दिन का ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। सो जाओ ना, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। थैंक यू।
1: क्या बात है, क्या बात है। लेकिन लोरी आपके मुंह से जो अच्छी लगती है सुरेश कुमार जी, तो यही अच्छी लगती है। अगर आप बुरा न माने तो हम आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अरे भैया, ये भी इत्तेफाक से रफी जी ने कहा था, वो ब्रह्मचारी मूवी में शम्मी कपूर,
1: लेकिन मतलब
0: बच्चों को सुना रहे।
1: वो लोरी जो माताएं गाती हैं, पिता गाते हैं बच्चों के लिए, आप पिता हैं और हम सभी आपके लिए बच्चे जैसे हैं, तो
0: हमारे लिए तो सब बच्चे हैं ही भाई।
1: तो इस खूबसूरत मौके पर आप चाहें तो वो आप ही के कंठ से अच्छा भी लगता है।
0: अब ये है कि भगवान की कृपा है, इनका आशीर्वाद है कि इसी तरह अगर निकल जाता है हमारे सभी लिस्टर भाइयों को अगर अच्छा लगता है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, बाकी सब ऊपर वाले का खेल है मेरे भैया।
1: बस हम चाहते हैं कि इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उसकी पूर्व संध्या पर आपसे वो प्यारी सी लोरी सुन ले।
0: ठीक मेरे भाई, कल तो आपका रेस्ट रहेगा।
1: जी जी, इसलिए तो मैं सुनना चाहता हूँ।
0: चलो फिर, बाकी जो बचेगा शनिवार वाले दिन भी,
1: लेकिन वो लोग सुना दीजिए, आज कल में ढल गया।
0: और तो सुनाए या छोड़े?
1: वही आज कल में ढल गया।
0: अच्छा चलो, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तो भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। आज कल ढल गया दिन।

चमन चमन सो गई गली गली सो गए सब नगर सो गई कली कली सो गया चमन चमन सो गई गली गली सो गए सब नगर सो गई कली कली नींद कह रही है चल मेरी बाह तू भी सो जा सो गई रंग परेशान आज कल निधल गया दिन हुआ तमाम है बुझा सगिल वो सांस सांस पर जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर है बुझा सदिल बोझ सांस सांस पर जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर पहन रही है चांदनी दे।

गई रंग भरी संग, आज कल मिटल गया दिन हुआ तम, कौन आएगा इधर इस किराह देखे हम जिनकी आहटे सुन, जान किस के थे कदम, कौन आएगा इधर किस किराह देखे हम जिनकी आहटे सुन, जान किस के थे कदम, अपना कोई नहीं अपने तो है राम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी सो, आज कल निधल गया दिन हुआ तमाम।

0: पेंची सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। आपका नाम हमने यूं ही दर्द कुमार नहीं रखा, वास्तव में आप गाते हैं तो निखरता है।
0: आवाज शीर से नहीं गा पाए लेकिन चलो
1: बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा गाया
0: है,
1: बहुत
0: एक बैग गाया हमने,
1: बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा
0: निभ गया है।
1: ये लोधी केवल आपके ही मुझसे में अच्छी लगती है, तो रफी जी के मुझसे या तो फिर मेरे दर्द कुमार के मुझसे
0: कोई चीजा गलत तो नहीं कर सकता।
1: अरे अरे सपने में आप गलत नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा, कल की कमी आज आपने पूरी कर दी।
0: हाँ कल की कमी पूरी हो गई, चलो
1: अच्छा,
0: बहुत सही
1: कहा आपने, कल की कमी पूरी। आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
0: शुभकामनाएं क्या आपको भी है।
1: बहुत
0: अच्छा, नमस्कार।
1: बहुत बहुत जी हाँ, रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता भाई बहन का कहलाता है। रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता भाई बहन का कहलाता है। स्नेह दुआ और विश्वास से हर पल और गहरा होता जाता है। न कोई शर्त न कोई हिसाब, बस दिल का सच्चा प्यार रहे। भाई बहन के इस पवित्र बंधन में सदा अपनापन और दुलार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं अनुमति। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहारी गजल में। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं।
2: चिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी दूसरी माँ। शिवानी जानती थी कि उसके पिता ने सिर्फ उसी के खातिर दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इतने सालों बाद उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर अरुणिमा के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती देख उसके मन में उनके लिए नफरत पनपने लगी। उसने उस दिन वो सब देखा जिसे देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज से घर लौटते समय उसे डैडी अपनी कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वो औरत डैडी से बात कर रही थी उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो डैडी के बेहद करीब थी। 10 साल पहले जब शिवानी की माँ की मृत्यु हुई थी तब सारे रिश्तेदारों ने डैडी को दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, लेकिन डैडी ने सख्ती से मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी शिवानी के लिए दूसरी माँ किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा, और डैडी अपने वादे पर अब तक कायम थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो एक औरत के करीब होकर शिवानी के वजूद को अपेक्षा की गर्म सलाखों से भेद रहे थे। शिवानी को अच्छी तरह याद था कि उसके मम्मी और पापा के बीच कभी बहुत ज्यादा नहीं बनी थी। मम्मी के खानदान के मुकाबले डैडी के खानदान की हैसियत कम थी, इसीलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयां करके डैडी को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थी। शिवानी की समझ में आज तक ये बात नहीं आई थी कि जब डैडी और मम्मी के विचार आपस में नहीं मिलते थे तो डैडी ने उन्हें अपनी जीवन संगनी क्यों बनाया था। कॉलेज से घर आते ही काकी माँ ने शिवानी से चाय के लिए पूछा तो शिवानी ने मना कर दिया और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। 5 बजे के आसपास डैडी का फोन आया तो उसने अपने गुस्से पर जबरन काबू करते हुए बोला, डैडी आप इस वक्त कहाँ हैं? बेटे मैं इस वक्त अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ, डैडी ने बड़े प्यार से बोला। आपके साथ कोई और भी है? शिवानी ने शक भरे अंदाज में पूछा। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ कोई और भी है? क्या तुम्हें फोन पर किसी की खुशबू आ गई थी? डैडी ने हंसते हुए बोला। हाँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखा तुमने अरुणिमा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। शिवानी को समझते देर नहीं लगी कि डैडी के साथ कार में बैठी औरत का नाम अरुणिमा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना, शिवानी की माँ काफी साल पहले गुजर गई थी, पर रिश्तेदारों के बहुत समझाने के बावजूद उसके डैडी ने दूसरी शादी नहीं की। उनका साफ कहना था कि वो शिवानी के लिए दूसरी माँ कभी नहीं लाएंगे। पर उस दिन इतने सालों बाद अरुणिमा नाम की महिला को उसने अपने डैडी के साथ बड़े ही सहज भाव से बातें करते देखा। वो बहुत परेशान हो गई। अब आगे, डैडी के मोबाइल से शिवानी को एक औरत की खनकती आवाज सुनाई दी। अब वो आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। उस औरत का ये जुमला जहरीले तीर की तरह शिवानी के सीने में लगा। एकाएक उसके दिमाग की नसें तनने लगीं और उसका जी चाहा कि वो सारी दुनिया को आग लगा दे। शिवानी बेटे, तुम लाइन पर हो ना? उसे डैडी का बेफिक्री से भरा स्वर सुनाई दिया। हाँ, वो बेजान स्वर में बोली, डैडी ये सब क्या हो रहा है? आपके साथ कौन है? बेटे मैं तुम्हें घर आकर सब बताता हूँ। इसी के साथ डैडी ने फोन काट दिया और शिवानी सोचती रह गई कि ये अरुणिमा कौन है, कि डैडी के जीवन में कब और कैसे आ गई। डैडी और अरुणिमा के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। 7 बजे शाम को काकी माँ ने उसे उठाया और चिंतित स्वर में बोली, बेटी शिवानी क्या बात है, आज तुमने चाय नहीं पी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी माँ, मेरी तबीयत ठीक है, डैडी आ गए? शिवानी ने पूछा। हाँ, और वो तुम्हें बुला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। इतना कहकर काकी माँ कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद शिवानी ड्राइंग रूम में आई तो उसे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज उसने डैडी के साथ उनकी कार में देखा था। अरु, यह है मेरी बेटी शिवानी। डैडी उस औरत से शिवानी का परिचय कराते हुए बोले। ना चाहते हुए भी शिवानी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना पड़ा। जीती रहो। वो खुद उठकर शिवानी के करीब आई और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसने उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन अंकित कर दिया। अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो। अरु, ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है ना? डैडी हंसते हुए बोले। डैडी के ये शब्द पिघले शीशे की तरह शिवानी के कानों में उतरते चले गए। उसका जी चाहा कि वो अपने कमरे में जाए और खूब फूट फूट कर रोए। आखिर डैडी ने उसके विश्वास का खून जो कर दिया था। बेटी तुम क्या करती हो? अरुणिमा ने उसे अपने साथ बैठाते हुए पूछा। उस वक्त शिवानी की हालत बड़ी अजीब सी थी। जिस औरत से उसे नफरत करनी चाहिए थी वो औरत उसके वजूद पर अपने आप छाती जा रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना, शिवानी के पापा ने उसकी माँ के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करी। उन्होंने शिवानी की बहुत अच्छी परवरिश अकेले ही की, पर उस दिन शिवानी के इतने बड़े हो जाने के बाद जब शिवानी ने उन्हें एक औरत के साथ देखा तो उसका दिल रोने को हो आया। और शाम को डैडी उस औरत को लेकर घर पहुंच गए और उन्होंने अरुणिमा से उसका परिचय कराया। अब आगे वो उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगी। उन दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। काकी माँ, देखो तो कौन आया है, डैडी ने काकी माँ को आवाज दी। मैं जानती हूँ कौन आया है, काकी माँ ने वहां चाय की ट्रॉली के साथ कदम रखा। अरे काकी माँ, आप! अरुणिमा उन्हें देखते ही खड़ी हो गई। चाय की ट्रॉली मेज पर रख कर काकी माँ उनकी तरफ बढ़ी, फिर दोनों प्यार से गले मिली तो शिवानी दोनों को उलझन भरी नजरों से देखने लगी। अरुणिमा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था, ये बात तो शिवानी को समझ आ गई थी, लेकिन कोई सिरा उसके हाथों में नहीं आ रहा था। काकी माँ, आप इन्हें जानती हैं, शिवानी ने हैरत भरे स्वर में काकी माँ से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही डैडी बोल पड़े, बेटी अरुणिमा जी का इस घर से गहरा संबंध रहा है, हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तभी अरुणिमा जी ने डैडी की ओर इशारा किया तो डैडी ने फौरन अपनी बात पलटी और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब शिवानी के समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि मम्मी डैडी के बीच ऐसा क्या था जो वो एक दूसरे से बात करना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते थे। निसंदेह डैडी शादी से पहले इसी अरुणिमा जी से प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान शिवानी ने अरुणिमा जी से काफी बातें की। वो बहुत जहीन थीं। वो हर विषय पर खुलकर बोल सकती थीं। उनके नॉलेज को देखकर शिवानी के मन में उनके प्रति कुछ देर पहले तक जमी नफरत की बर्फ तेजी से पिघलने लगी थी। उनकी बातों से शिवानी को ये भी पता चला कि वो एक प्रोफेसर थी। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका अपना कहने को इकलौता बेटा नितिन था जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। डिनर करने के बाद जब अरुणिमा जी गईं तो शिवानी अपने कमरे में आ गई। शिवानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस उम्र में डैडी अरुणिमा जी से शादी करके दीन दुनिया की नजरों में उपहास का पात्र बने। सुबह टेलीफोन की घंटी से शिवानी की नींद खुली। उसने फोन उठाया तो उसे अरुणिमा जी की मधुर आवाज सुनाई दी।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना शिवानी के पापा, जो इतने सालों से माँ के जाने के बाद अकेले थे और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। शिवानी के इतने बड़े होने के बाद अरुणिमा जी को लेकर एक दिन घर पहुंचे और शिवानी को ये पता चला कि वो उसके डैडी की कॉलेज टाइम की फ्रेंड हैं। ये सारी बातें शिवानी के दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थीं और उसे बहुत परेशान कर रही थीं। अब आगे, स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया?
1: नहीं आंटी जी,
0: वो जरा संभल कर बोली। कहिए, कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है तो तुम मेरे घर आ जाओ, खूब बातें करेंगे। सच कहूँ तो बेटे, कल तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बोली। लेकिन आंटी, डैडी की इजाजत के बिना शिवानी ने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे डैडी से मैं बात कर लूंगी, वो बड़े हक से बोली, वो मना नहीं करेंगे। उस पल जहन में एक ही सवाल परेशान कर रहा था जिससे उसे बेहद नफरत होनी चाहिए, वो धीरे धीरे उनके करीब क्यों होती जा रही थी। एक घंटे बाद वो अरुणिमा जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो उसे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से सोफे पर बैठाया। इसके बाद वो उसके लिए नाश्ता बना लाई। नाश्ते के दौरान शिवानी ने उनसे पूछा, आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मिले हुए मुझे अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। सच कहूं तो मैं कल से आपके बारे में ही सोचे जा रही हूं। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ये कहकर शिवानी उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका और हुनर ड्राइंग रूम से बेडरूम तक हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि वो उसे मोहब्बतों का आईना जान पड़ रहा था। उनके सलीके और हुनर को देखकर शिवानी के दिल में एक होक सी उठ रही थी। वो सोच रही थी, काश उनके जैसी उसकी भी माँ होती। शाम होते ही डैडी शिवानी को लेने आ गए। रास्ते में उसने डैडी से पूछा, डैडी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? डैडी ने बड़ी हैरानी से उसे देखा, फिर आहत भाव से बोले, बेटे, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो तुम आज ऐसी बात कर रही हो? तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप अरुणिमा जी से प्यार करते हैं ना? शिवानी ने बिना किसी भूमिका के कहा। डैडी पहले काफी देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ये सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। ऐसी बात थी तो आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? शिवानी बोली, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मुझे अरुणिमा से शादी करने के लिए मना कर दिया। मैं तो उनके खिलाफ जाकर भी अरुणिमा से शादी करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से शादी करने से अरुणिमा ने मना कर दिया और इसीलिए हमारी शादी नहीं हो पाई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना, शिवानी के डैडी ने उसे एक औरत से मिलवाया जो उनकी कॉलेज की दोस्त थी। शिवानी की माँ को ख़त्म हुए बहुत साल हो गए थे और अब इस तरह अपने पापा की दोस्त से मिलना उसे बहुत उलझन में डाले हुए था। लेकिन न जाने क्यों वो खुद उनसे करीब होती चली जा रही थी। अब आगे, कुछ दिन पहले वो मुझे एक पार्टी में नहीं मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता। आज की तारीख में उसका एक लड़का है। अरुणिमा के तुम्हारी मम्मी बनने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन डैडी, मुझे एतराज है, शिवानी कड़े स्वर में बोली। क्यों? डैडी की भवें तन गई। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जगह साई हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, डैडी सख्ती से बोले। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा। तुम अपने को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी मम्मी बनने जा रही है। उस वक्त शिवानी को अपने डैडी इतने बेकार इंसान लग रहे थे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दो दिन पहले ही अरुणिमा जी का इकलौता बेटा नितिन लंदन से वापस लौटा। नितिन के बारे में शिवानी सिर्फ इतना ही कह सकती थी कि वो तो जैसे उसके सपनों का राजकुमार था, जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने की कल्पना करती थी। कितनी अजीब बात थी, जिस पिता को शादी की उम्र की दहलीज पर खड़ी अपनी औलाद के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए था, वो अपने बारे में सोच रहे थे। उस दिन अरुणिमा जी खरीदारी के लिए शिवानी को भी अपने साथ ले गईं। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन डैडी के कहने पर उसे जाना पड़ा। शॉपिंग के दौरान जब अरुणिमा जी ने एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े और जेवर खरीदे तो शिवानी को उनसे नफरत होने लगी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर ये सब हुआ तो वो सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाएगी। ये बात उसे पता चल गई थी कि डैडी को अरुणिमा आंटी को उसकी माँ बनाने का फैसला लेने वाला दिन 28 नवंबर तय हुआ था और ये शादी बहुत ही सादगी से गिने चुने लोगों के बीच में होनी थी। 28 नवंबर को सुबह होते ही वो सबको

ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहां काफी मेहमान बैठे थे। मेहमानों की गहमा गहमी देखकर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो सोफे पर बैठी ही थी कि अरुणिमा जी आ गईं। उनके साथ नितिन नहीं था। शिशिर, हमें इजाजत है? उन्होंने डैडी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखना, डैडी भावुक स्वर में बोले। तभी वहां नितिन ने कदम रखा जो दूल्हा बना हुआ था। शिवानी का सिर घूम गया। उसने उलझन भरी निगाहों से डैडी की तरफ देखा तो वो उसके करीब आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अरुणिमा आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से अरुणिमा आंटी तुम्हारी मम्मी है, इन्हें हमेशा खुश रखना बेटा। एकाएक शिवानी की रोलाई फूट पड़ी। वो डैडी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर नितिन की हमसफर बनकर वो अरुणिमा जी की बेटी बन गई।

हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी दूसरी माँ। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। Yes, of course. मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चनाय का, क्योंकि अलीशा चनाय का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चनाय। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चनाय के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चनाय का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चनाय। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चनाय। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चनाय के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाय ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाय की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाय भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाय को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती हैं। वे बॉलीवुड में प्लेक्स तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ। तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं